0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। तदनुसार 16 अगस्त 2026 आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सार।
2: चंपक वन में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। सभी एक दूसरे की मदद करते थे और शाम को एक साथ बैठकर हंसी ठिठोलियां करते। इसी जंगल में एक मोर भी रहता था जो बेहद ही खूबसूरत था। उसके रंग बिरंगे पंख, उसकी नीली सुराहीदार गर्दन किसी का भी मन मोह लेती थी। जंगल में हर कोई जानवर मोर की सुंदरता की तारीफ करता, जिससे धीरे धीरे मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। वो अपने आप को जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी बताता और दूसरे जानवरों का मजाक बनाता। एक दिन जंगल में एक महफिल सजी जहां सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा हुए। मोर भी इस कार्यक्रम में आया जहां उसने एक सुंदर सा डांस परफॉर्मेंस दिया। ये देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगे। तभी स्टेज पर कोयल ने गाना सुनाया। कोयल की आवाज सुनकर सभी जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। तभी मोर बोला, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है कोयल बहन, पर तुम्हारा रंग बहुत ही काला है। अगर तुम चुपचाप किसी डाल पर बैठी रहो तो कोई बता ही नहीं सकता कि तुम कोयल हो या कौवा। मुझे देखो, मैं तुम सबसे कितना अलग और सुंदर हूँ। मेरी आवाज में भी एक कशिश है। मोर की बात सुनकर कोयल और कौवे दोनों उदास हो गए। ये देखकर बंदर बोला, अपनी सुंदरता पर इतना भी घमंड करना ठीक नहीं। तभी मोर बोला, देखो ये बात बोल भी कौन रहा है जिसमें सुंदरता का सा भी नहीं है। पूरा दिन बस पेड़ों पर उछल कूद करते रहते हो। तुम मुझे ज्ञान ना ही दो तो अच्छा है। मोर की बातें सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। वो उसे जवाब देने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अब बारिश से बचने के लिए पेड़ की छाया ढूंढने लगे। तभी मोर बारिश में पंख फैलाकर नाचने लगा और बोला, बारिश में मेरा रंग और भी खिलकर सामने आता है। देखो इतनी बारिश में भी मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। ये देखकर सभी जानवर आपस में बात करने लगे, ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा बस अपनी सुंदरता के झंडे गाड़ता रहता है, इसे कोई और काम है ही नहीं। मोर बारिश में नाचता रहा। तभी उसे एक शिकारी ने देख लिया। मोर को देखकर उसने मन ही मन सोचा, कितनी सुंदर पंख, आज तो इसी का शिकार करूंगा। इसके सुंदर पंख देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। ये सोचकर उसने मोर पर निशाना साधा, लेकिन बंदर ने पहले ही शिकारी को देख लिया था। ऐसे में जैसे ही वो बंदूक चलाने वाला था, बंदर ने उस पर हमला कर दिया और शिकारी का निशाना चूक गया। शिकारी को देखकर ढेर सारे कौवे वहां आ गए और काव काव करने लगे। कौवे की काव काव से शिकारी चिड़चिड़ा हो गया और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में मोर वहां आया और बंदर को धन्यवाद करने लगा। मोर बोला, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। मोर ने बाकी सभी जानवरों से भी माफी मांगी और बोला, आज मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन बन गई। आज मुझे समझ आ गया है कि तन की सुंदरता सब कुछ नहीं होती। आप सभी मन से बहुत सुंदर हैं और अब से मैं भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए।
1: जीवन सारा।
0: पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम है वैदिक सूक्तों पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम आज समर्पित होगा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर। सुबह 8:30 पर स्वतंत्रता दिवस विशेष बाल सभा का प्रसारण होगा और सुबह 9 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में सुबह 9 बजे प्रकृति की पुकार कार्यक्रम में आज का विषय है बादल। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा भारतीय सशस्त्र सेनाएं अब तक का सफर। इस विषय पर जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। सुबह 10 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान जिसमें आज हम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा जिसमें आज रानी अवंतीबाई के जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित होगा। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन जिसमें आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का 9वां भाग सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 190 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं बृहस्पति और छंद है त्रिष्टुप।
4: अनर्वाणम वृषभम मंद्र जिह्वम बृहस्पतिम वर्धया नव्यमर्कैहि गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आश्रण्वन्ति नवमानस्य मर्ताः। हे मनुष्यो, जिन द्वेष रहित बलशाली मधुरभाषी स्तुति के योग्य बृहस्पति देव के मधुर तेजस्वी एवं प्रशंसा के योग्य वचनों को मनुष्य तथा देवगण सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं, उनका गुणगान करो। तमृत्वया उपवाचः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसर्जि बृहस्पतिः सह्यंजो वरांसि विभवा भवत समृते मातरिश्वा। समयानुकूल की गई स्तुतियां बृहस्पति देव ग्रहण करते हैं। जिन बृहस्पति देव ने नई सृष्टि की रचना के समान देव बनने की कामना करने वाले मनुष्य को उत्पन्न किया, ऐसे वायु के समान प्रगतिशील बृहस्पति देव उत्तम वस्तुओं के साथ अपनी प्रचंड शक्ति से उत्पन्न हुए। उपस्तुतिम नमस उद्यतिम च श्लोकम यम सत सवितेव प्रबाहु अस्य कृत्वा हन्यो यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्षा सस्तु विष्मान। जैसे सूर्य देव अपनी भुजाएं किरणों की तरह फैलाते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति देव याजकों की स्तुतियां अन्नादि एवं मंत्रों को स्वीकार करते हैं। बृहस्पति देव के क्रूरता रहित कर्तव्य से ही सूर्य देव भयंकर मृग सिंह जैसे की तरह ही बल संपन्न होते हैं। अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्या मत्यो न यं सद्यक्ष भृद्विचेताः मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पते रहिमायां अभिद्युन। इन बृहस्पति देव की कीर्ति द्युलोक और पृथ्वीलोक में सर्वत्र व्याप्त है। शीघ्रगामी अश्व के समान ज्ञानियों के भरण पोषण करता विशिष्ट ज्ञान संपन्न ये बृहस्पति देव सभी लोकों के सहयोग के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरिणों के संहारक शस्त्रों के समान बृहस्पति देव के ये शस्त्र दिन में छल करने वाले कपटी असुरों को मारते हैं। ये त्वा देवो श्रीकम मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पज्राः न ढूढ्ये अनुददासि वामं बृहस्पते चयस इत्पियारुम। हे देव, जो धन का अहंकार करने वाले पापी वृद्ध बैल के समान जीवित हैं, आप उन दुर्बुद्धि ग्रस्तों को ऐश्वर्य नहीं देते हैं। हे बृहस्पति देव, आप सोमपान करने वालों पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। सुप्रैतुः सूयवसो न पंथा दुर्नियंतुः परिप्रीतो न मित्रः अनर्वाणो अभिये चक्षते नोपी वृता अपोर्णुवंतो अस्थुः। हे बृहस्पति देव, सन्मार्गगामी तथा उत्तम अन्न वाले मनुष्य के लिए श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक रूप है तथा दुष्टों का नियंत्रण करने वालों के लिए मित्र के समान है। निष्पाप होकर जो मनुष्य हमारी ओर देखते हैं वे अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत होने पर भी अज्ञान को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर बढ़ते हैं। संयम स्तुभो वनयो नयन्ति समुद्रम न स्रवतो रोधचक्राः सविद्वाम उभयम चष्टे अंतर बृहस्पतिस्तर आपश्च गृध्रः। स्वामी को उत्तम भूमि प्राप्त होने तथा समुद्र को भवरों से युक्त नदियों का जल प्राप्त होने के समान ही बृहस्पति देव को स्तोत्र रूप वाणियां प्राप्त होती हैं। सुखों के अभिलाषी ज्ञानवान बृहस्पति देव दोनों के मध्य विराजमान होकर तट और जल दोनों को देखते हैं। एवा महस्तु विजातस्तु विश्मान बृहस्पतिर वृषभो धाई देवः स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हम सभी अति प्रख्यात शक्तिशाली महिमायुक्त सुखवर्षक बृहस्पति देव की प्रार्थना करते हैं। वे हमें वीर संतान युक्त गवादि धन प्रदान करें। हम सभी प्राप्त करने योग्य शक्ति संपन्न तथा तेजस्वी देव के ज्ञान से युक्त हो।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 190 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। आइए शुरुआत करते हैं भक्ति गीतों के क्रम की।

कुछ लोग उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो उनके पास नहीं है या उनकी नहीं है। ऐसी स्थिति में तनाव बना रहता है। जो चीज हमारी नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए।

किसी काम से डरना नहीं चाहिए। डर की वजह से जब तक हम किसी काम से बचने की कोशिश करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती।

दूसरों के बारे में सोच विचार करने से बेहतर है कि हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने काम पर दें। सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो सफलता मिलेगी और जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। दूसरों के लिए गलत विचार रखने से अपना तनाव बढ़ता है।

बड़े लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो ज्ञान, अनुशासन, संयम और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। इनकी वजह से बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है और इन गुणों के अभाव में हमारा मन लगातार इधर उधर की बातों में उलझा रहता है और हम सफलता से दूर रह जाते हैं।

हमारे आसपास कुछ लोग शुभचिंतक हैं, तो कुछ लोग आलोचक भी हैं। हम काम करेंगे तो आलोचना तो होगी ही, इसीलिए आलोचनाओं से डरे नहीं। आलोचनाओं में छिपी सलाह को समझकर अपने काम में सुधार कर लेंगे तो मुश्किल लक्ष्य भी पूरा हो सकता है।

समस्या के बारे में सोच विचार करते रहेंगे तो परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। समाधान के बारे में सोचेंगे तो समस्याओं के हल भी आसानी से मिलते जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सांध्यकालीन सभा में भक्ति संगीत शाम 5:10 से आप एक बार फिर सुन पाएंगे।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज के कार्यक्रम में हम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

0: टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ दीप नया खाता, दीप नया खाता।
1: हर बाधा को हराकर काल के कपाल पर नए गीत के सृजन का उद्घोष करती ये आवाज है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अद्भुत जीवन यात्रा थी उनकी, एक महानदी सी यात्रा जिसके चलने की निशानियां जीवन रेखा बन जाती हैं, जिसके तट पर पीढ़ियां पहुंचती रहेंगी और इस अटल जल आचमन से जीवन पनपता खिलता और महकता रहेगा। कितने ही आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के, एक कवि जिसकी पंक्तियां गहरी संवेदना से उपजी, एक पत्रकार जिसकी लेखनी सदा निर्भीक रही, एक राजनेता जिसने सिद्धांतों के साथ सत्ता को साधा, एक अद्भुत वक्ता कि जब किंचित लंबे अंतरालों के साथ वो अपने अंदाज में बोलते तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अध्यापक तथा संस्कृत के विद्वान होने के साथ ही एक उच्च कोटि के कवि भी थे। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी को कविता विरासत में मिली। उनके दादाजी पंडित श्यामलाल वाजपेयी एक प्रख्यात कथावाचक थे, अतः बोलने की कला में भी अटल जी निष्णात हुए। आगरा के पास स्थित बटेश्वर नामक गांव उनका पैतृक गांव था, लेकिन उनके पिता ग्वालियर में आ बसे थे। उनकी मां का नाम कृष्णा वाजपेयी था, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं और रामायण समेत कई धर्म ग्रंथ उन्हें कंठस्थ थे। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित कृति विजय पताका ने अटल जी के जीवन की दिशा बदल दी थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही वो आर्य कुमार सभा से जुड़ गए और जगह जगह होने वाले कार्यक्रमों में वो भाग लेने लगे। अटल जी शुरू से ही एक प्रखर वक्ता थे। उनकी इस कला से प्रभावित होकर ही श्री भूदेव शास्त्री ने उन्हें शाखा में बुलाया। इस तरह अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की। कानपुर के डीएवी कॉलेज से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने यहीं एलएलबी की पढ़ाई आरंभ की। रोचक तथ्य ये है कि उनके पिता ने भी उनके साथ ही एलएलबी की पढ़ाई शुरू की थी और पिता ने ये डिग्री हासिल भी की, लेकिन अटल जी ने बीच में ही इस पढ़ाई को विराम दिया और संघ के कार्य में जुट गए। देश और समाज की आवाज पर वो चल पड़े एक अटल यात्रा पर।

अटल जी को जैसे नियति ने पुकार लिया था और वो चल पड़े थे उस यात्रा पर जहां राष्ट्र सेवा ही उनका अनंतिम लक्ष्य था। कुछ समय बाद वो लखनऊ में राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक नियुक्त किए गए। उनकी उपस्थिति ने बहुत जल्द राष्ट्र धर्म की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना दी। कुछ ही समय में उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। इसी समय पांचजन्य का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संपादन का दायित्व भी अटल जी को ही सौंपा गया। इसके साथ ही उन्होंने दैनिक स्वदेश का संपादन भी आरंभ किया, जिसके मात्र कुछ अंक ही निकल पाए। इसके बाद वो काशी चले गए और चेतना साप्ताहिक का संपादन करने लगे। उन्होंने वीर अर्जुन का संपादन भी किया। इस समय तक अटल जी की कीर्ति पूरे देश में फैल चुकी थी। सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद इसके संरक्षक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक कर्मठ, निष्ठावान और भारतीय संस्कृति के ज्ञाता व्यक्ति की आवश्यकता थी। अनेक लोगों को परखने के बाद उन्होंने अटल जी का चयन किया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी। अटल जी भी इन सभाओं को संबोधित किया करते थे। इस तरह अब अटल जी की पहचान एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में हो गई। अटल जी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। साधनों की कमी की वजह से वो ये चुनाव ठीक से लड़ नहीं पाए और हार गए, लेकिन इससे उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। चुनावी रैलियों में उनके भाषण पर लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, उसने उनके आत्मविश्वास को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। सन 1957 में बलरामपुर से उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। अपने पहले ही लोकसभा भाषण में अटल जी ने कहा था, बोलने के लिए वाणी चाहिए, किंतु चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। उनके इस वक्तव्य पर सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। अटल जी जब संसद में बोलने के लिए उठे तो उन्होंने हिंदी में बोलना आरंभ किया। सभी सांसद उन्हें हिंदी में सुनना नहीं चाह रहे थे। कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया और सदन से बाहर भी चले गए। लेकिन अटल जी हिंदी को राष्ट्र का गौरव मानते थे, इसलिए उन्होंने तय कर रखा था कि वो हिंदी में ही भाषण देंगे। उन्होंने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। उन्होंने अंग्रेजी में न बोलने का संकल्प ले लिया था और फिर धीरे धीरे उनकी बोलने की शैली की प्रशंसा होने लगी। एक समय तो ऐसा भी आया कि अटल जी के भाषण सुनने के लिए सांसद विशेष रूप से सत्र में उपस्थित रहने लगे। भारत, भारतीयता और भारतीय भाषाओं से उनका विशेष प्रेम था। संयुक्त राष्ट्र में भी हमारी हिंदी पहली बार अटल जी की वाणी से ही गूंजी थी। 4 अक्टूबर सन 1977 को विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देते हुए उन्होंने आतंकवाद और विश्व शांति जैसे मुद्दों पर बात की थी। भारत ने पहली बार मानसिक और भाषाई दासता को तोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में गर्जना की। ये केवल भाषण नहीं था, बल्कि भारत के स्वाभिमान की वैश्विक घोषणा थी।

0: श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राष्ट्रनायक थे जिनके जीवन में कविता, संघर्ष, सहनशीलता, कर्तव्य और देशप्रेम एक साथ प्रवाहित रहे। बचपन में बटेश्वर में हो रहे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और 24 दिन बच्चा बैरक में रखे गए थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और आपातकाल के दौरान भी वो बहुत मुखर रहे और जेल भी गए। जीवन की हर परिस्थिति में कविता हमेशा उनके साथ रही। लगातार संघर्षों में वो तपते रहे और कुंदन बनते रहे। 4 दशकों तक वो भारतीय संसद के सदस्य रहे। वो 10 बार लोकसभा से तथा 2 बार राज्यसभा से चुने गए थे। वो एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा थे। एक ऐसी विचारधारा जो लोकतंत्र में संवाद सिखाती है, विपक्ष में मर्यादा सिखाती है, जहां मतभेद थे पर कटुता नहीं थी, दृढ़ता थी पर अहंकार नहीं था। इसीलिए राजनीति में वो अजात शत्रु कहलाए। पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनका अत्यंत सम्मान करते थे। अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार लगभग 13 महीने और तीसरी बार कार्यकाल पूरा किया। उनका कार्यकाल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके उनकी सरकार ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। उनके कार्यकाल में ही पड़ोसी देश से संबंध सुधारने के उद्देश्य से सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। लेकिन हमेशा की तरह भारत के साथ विश्वासघात हुआ और कारगिल युद्ध छिड़ गया और फिर भारतीय सेना का गौरव दुनिया ने देखा। अटल जी के कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ। ये नए भारत का नया उदय था। अटल जी ने अनेक कविताएं लिखीं जो अत्यंत लोकप्रिय भी हुईं। उनकी कविताएं अपने ओज से हारते हुए मन में भी आशा का संचार कर देती है। वो कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मानवता का आह्वान करते हुए वो अपनी कविता ऊंचाई में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रूखाई कभी मत देना। अटल जी का संघर्ष हर अंधेरे से रहा, इसीलिए उन्होंने कहा, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। जीवन की नश्वरता का उद्घोष करते हुए वो कहते हैं, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। अटल जी की प्रमुख रचनाएं हैं मेरी 51 कविताएं, संसद में 3 दशक, अमर बलिदान, रग रग हिंदू मेरा परिचय, बिंदु बिंदु विचार आदि। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। देश को ही सोचने और देश को ही जीने वाले श्रद्धेय अटल जी ने 16 अगस्त सन 2018 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे राष्ट्रनायक को।
1: मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, नापनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए, आज झकझोर का तेज तूफान है, नाव खबरों की बाहों में मेहमान है, देख तूफान का तेवर डरी टल गई, मौत से ढल गई, मौत से ढल गई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे वतन का राग कार्यक्रम का विशेष अंक, जो कि समर्पित था भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा कार्यक्रम का हमारा आज का अंक स्वतंत्रता दिवस विशेष है।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है स्वतंत्रता दिवस विशेष।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। अच्छा, जरा आते ही तुम्हें एक छोटी सी एक्सरसाइज दूं। जरा सोचो कि जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला होता है तो आप क्या क्या करने लगते हो? आप बाजार जाते हो, तैयारी करते हो कि कितना सज धज के स्कूल जाओगे। बहुत दिनों से आपके स्कूल में प्रैक्टिस होने लगती है, आप देशभक्ति के गीत गुनगुनाने लगते हो, स्वतंत्रता सेनानियों की यादें ताज़ा करने लगते हो, स्कूल में झंडारोहण के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, आप सोचने लगते हो कि इस बार जब लड्डू मिलेंगे तो हम किसके साथ बांटेंगे, या एक बार में सारे ख़त्म कर जाएंगे, या फिर हम स्कूल से लड्डू या टॉफ़ी या कुछ और जो मिलेगा मम्मा पापा के लिए बचा कर लाएंगे, है ना। और आपके हाथों में वो जो छोटे छोटे से बैंड होते हैं ना, जो बताते हैं कि हमारे तिरंगे के रंग कितने खूबसूरत हैं, आप सब इतने अच्छे लगते हो बच्चों। छोटे छोटे से तिरंगे हाथ में लेकर आप जब बहुत सरल भाव से इधर उधर आज़ादी का जश्न मनाते हुए घूमते हो ना, तो सच मानिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज वैसे ही मन बहुत खुश है, क्योंकि जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो सड़कों पर हाथ में तिरंगा लेकर इतने सारे बच्चे मुझे मिले, इतने बच्चे मिले। एक जगह एक गाना वहाँ चल रहा था, ये मिट्टी के बेटे, और ये गाना इतना गहरा है ना कि वो वीर जवान बच्चों जो अपने घर लौट कर नहीं आते, हमारे धरती की, हमारी देश की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और वो जो कभी लौट कर नहीं आते, उनका बलिदान याद करने का दिन होता है, है ना। और आप भी बहुत सारे गाने याद करते हो, गाते हो, स्टेज पे परफॉर्म करते हो, और इस तरीके से हंसी खुशी आप हम सभी लोग अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि जब मैं इस देशभक्ति गीत के बाद लौटूंगी तब आपसे स्वतंत्रता पर बात जरूर करूंगी, है ना। तो पहले सुनते हैं ये बहुत ही अच्छा सा एक देशभक्ति गीत, और फिर मैं और आप फिर से बातें करेंगे।

तो बच्चों मैं फिर से लौट आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। और गीत के पहले जो सवाल छोड़ा था मैंने कि आपसे स्वतंत्रता के मायनों की बात करनी है, तो अब शुरू करें अपनी बातें। अच्छा बच्चों चलो बताओ, क्या स्वतंत्रता का मतलब यही है कि हमें जो मन में आए वही करना है? क्या स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमें कोई रोके नहीं? क्या स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमें किसी भी बात की मनाही ना हो? या फिर स्वतंत्रता का अर्थ इससे कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है? बच्चों आज हम स्वतंत्रता को केवल इतिहास की एक दिन के रूप में याद नहीं रखें, बल्कि अपने जीवन के एक अनुभव के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, है ना? स्वतंत्रता दिवस को हम सब राष्ट्र के गौरव के दिन के रूप में मनाते हैं, और आज इस दिन के साथ साथ हम आपसे स्वतंत्रता के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। ये जो शब्द है ना स्वतंत्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। स्व यानी स्वयं, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने भीतर की आवाज जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या सही है, क्या गलत है और हमें किस दिशा में आगे जाना है। और तंत्र यानी व्यवस्था, तो आपकी स्वयं की व्यवस्था को थोड़ा बहुत तो आपको भी देखना होगा, है ना बच्चों? तो स्वतंत्रता का अर्थ कितना सुंदर निकलता है कि अपने भीतर की समझ और विवेक के आधार पर अपने जीवन को सही दिशा में चलाना। अब इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना बच्चों कि हम जो चाहें वो करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम इतने समझदार बने कि हमें हर बात के लिए कोई बाहर से आदेश देने की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए कि आप अपने कमरे में अकेले हैं, मम्मी पापा आसपास नहीं है, कोई आपको ये देखने वाला नहीं है कि आपने कमरा साफ किया है या नहीं, कोई ये पूछने वाला भी नहीं है कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, कोई देख नहीं रहा इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा रास्ता, कोई देख नहीं रहा फिर भी मैं स्व के बोध के साथ अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाऊंगा। बच्चों यही अंतर है, यही अंतर है स्व के बोध में, है ना? जब हमें स्व का यानी स्वयं का बोध हो जाता है तब हम किसी के आदेश की इंतजार नहीं करते, तब हम किसी के ऑर्डर का वेट नहीं करते, है ना? कि कोई कुछ कहेगा तब मैं बात मानूंगा। स्वतंत्रता ये भी कहती है कि मैं वही करूंगा जो मेरे लिए सही है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी सही है। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। लंबे संघर्ष के बाद भारत ने विदेशी ताकतों से, विदेशी शासन से मुक्ति पाई थी। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हमें अपने स्वयं की स्वतंत्रता को समझना बहुत जरूरी है। आज इतने सालों बाद हम इस शब्द के अर्थ को समझ रहे हैं, लेकिन पहले क्या आपको वो पंक्तियां याद हैं? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, याद है? बच्चों हर भारतीय के मन में ये ख्वाहिश है कि हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहराए। याद है पिछली बाल सभा में जब मैं आपसे बात कर रही थी खेलों की, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जब कोई खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन करता है और कहीं भारत का राष्ट्रगान गूंजता है तो सच मानिए आप कितनी भी दूर बैठे हों आप खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं, आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो देश का सम्मान आपके भीतर उतर आता है, आपके भीतर उतर आता है उस देश गान का मान। तो अब आप ये बताइए कि जब हम इतने गौरवशाली देश के वासी हैं बच्चों, तो क्या हम आलस्य से स्वतंत्र हैं? क्या हम झूठ से आजाद हैं? क्या हम डर से स्वतंत्र हैं बच्चों? कहीं हम क्रोध के गुलाम तो नहीं हैं? क्या हम मोबाइल के गुलाम तो नहीं हैं? क्या हम दूसरों की नकल किए बिना अपनी पहचान बना सकते हैं? हर बार मैं जब आप लोगों से मिलती हूँ ना बच्चों, तब कोई ना कोई बात मैं ऐसी जरूर करना चाहती हूँ जो
मैं भले ही चली जाऊं, ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, उसके बाद भी वो बात आपके भीतर उतर जाए। आप खुद से ये सवाल करें कि आज मनीषा दी ने इस विषय में बात की थी तो बात तो सही है, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। तभी तो इस कार्यक्रम के कोई मायने हैं बच्चों, वरना प्रोग्राम सुनने के बाद आप तुरंत भूल जाएं, कहीं दूसरी जगह स्विच कर जाएं, क्या मतलब निकलेगा। तो मैं बहुत बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ लिखती हूँ और सोचती हूँ कि जब प्रोग्राम होगा तब मैं आपसे ये सारी बातें करूँगी। जैसे एक बात और अभी मैंने आपसे कही थी बाल सभा में कि बच्चों, हमें दूसरों की नकल करके अपशब्द या बुरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पता है क्यों? क्योंकि कई बार हम दूसरों को देखकर ऐसे काम कर जाते हैं बच्चों कि हमारा स्वतंत्र, मतलब हमारे स्वयं का तंत्र बिगड़ जाता है बच्चों, है ना। हम अपने नहीं बल्कि दूसरों के गुलाम हो जाते हैं, हम अपनी सोच पे नहीं बल्कि दूसरों की सोच पे चलने लगते हैं, है ना। जैसे हमें पता होता है कि हमारा पसंदीदा खाना क्या है, हमें पता होता है कि हमारा पसंदीदा खेल क्या है, हमारा कार्टून कौन सा पसंद है, हमें सब कुछ पता होता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन हमारे साथ में जो कमजोरियां हैं, जैसे हमें जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जैसे कि हम किसी की मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, यहीं पे तो समझना है कि सिर्फ अधिकार को पहचानना ही स्वतंत्रता नहीं है बच्चों, अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान बहुत जरूरी है, अपने कर्तव्यों का बोध बहुत जरूरी है। कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हम इसे ऐसे ही जाया तो नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। अब आप सोचोगे बच्चे इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये गीत सुनते हैं, उसके बाद लौटकर बताऊंगी कि बच्चे अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपने वो गाना सुना है ना, नन्न

लौट आई हूँ मैं बच्चों फिर से, और अब कर रहे हैं हम आपसे बाल सभा में बातें। और आज हम स्वतंत्रता के असली मायने, बच्चों के लिए क्या हो सकते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। बच्चों, हम एक आज़ाद देश के वासी हैं और इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए कोई नहीं है। हमें इतनी सारी चीज़ों का अधिकार मिला है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन, अपने कर्तव्यों को कैसे निभा रहे हैं, इस पर हमें आपसे गाने के बाद बात करनी थी। बच्चों, एक बात बताइए, क्या आप भी ये सोचते हैं कि मैं इस देश की मदद कैसे कर सकता हूँ? चलिए मैं आपको बताती हूँ। छोटे छोटे बच्चे ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनका, उनकी उम्र के हिसाब से जो उनको काम दिए गए हैं, जो कर्तव्य हैं, अगर वो भी अच्छे से निभाएंगे तो बच्चों अनजाने में वो देश की सेवा ही कहलाएगी। अब आपको बताते हैं कैसे। जैसे आपका काम है उठकर पढ़ना, सही समय पर अपना हर काम पूरा करना, क्योंकि बच्चों आप देश का भविष्य हो। अगर आप आलस करोगे, आप अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से चीज़ें नहीं समझोगे, तो पता है क्या होगा, आप में जो संभावनाएं हैं कि कोई बड़ा होकर देश का वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा होकर देश की सेना में जाएगा, कोई बड़ा होकर बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और देश का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखेगा, तो ये बताइए कि उसके लिए आपको कदम तो अभी बढ़ाना है ना, बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना? तो फिर ये देश की सेवा नहीं हुई कि आप अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से चलें बच्चों? अब दूसरी बात, एक सेवा और है। आपने देखा है, जब आप सड़क पर निकलते हैं तो कहीं भी कोई थूक देता है, कहीं भी आप देखिए गंदगी कर देते हैं। बच्चों, अगर ऐसा करते आप किसी को देखें तो बहुत आदर के साथ उसे टोकें। कैसे? अंकल, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्लीज इसे गंदा मत कीजिए। कहीं घूमने जाएं, जैसे देश में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत ऐतिहासिक इमारतें हैं, बहुत अच्छी नदियां हैं, बहुत अच्छे जंगल हैं। अब आप सोचिए कि बच्चे देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले जिम कॉर्बेट गई थी, क्योंकि मुझे भी जंगल के राजा से मिलना था, पर जंगल के राजा तो मुझे नज़र नहीं आ पाए, लेकिन हाँ मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे नज़र आए जो उस जंगल में गाड़ी में चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया पता है? धीरे से अपना पैकेट लिया और जंगल में फेंक दिया। अब उन्हीं में से एक बच्चे ने ड्राइवर से बोला, भैया गाड़ी रोकिए। ड्राइवर ने कहा, नहीं यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते बीच जंगल में। तो उसने कहा, नहीं भैया प्लीज़ कुछ करिए, क्योंकि एक बच्चे ने चिप्स का पैकेट फेंक दिया है, अगर वो पैकेट किसी जानवर के मुंह में आया तो हो सकता है उसे नुकसान हो। ड्राइवर को बात समझ में आई, उसने कहा, बच्चों आप में से कोई नीचे नहीं उतरेगा, मैं ये काम करता हूँ। कोई बच्चा नीचे नहीं उतरा, ड्राइवर जल्दी से फुर्ती से नीचे उतरे, उन्होंने वो पैकेट उठाया और सबको समझाया कि देखिए बच्चा कितना अच्छा है, इसने जंगल आकर ये ख्याल रखा कि हम अगर जंगल घूमने आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर कचरा नहीं करना है। क्यों बच्चों, ये देश की सेवा हुई कि नहीं हुई? उसको स्व का बोध है ना बच्चों को? बताइए, वो जो बच्चा है वो आपसे थोड़ा अलग है या नहीं? है ना, वो देश का एक बहुत अच्छा नागरिक बनेगा बड़ा होके, और वो अभी भी बहुत अच्छा नागरिक है, वो देश का भविष्य उज्जवल करेगा, क्योंकि कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जब भी आप कोई भी ऐसा काम करें जो आपको लगता है इस पर डांट पड़ेगी, तो सोचिएगा कि वो काम पर डांट क्यों पड़ेगी, कहीं वो काम गलत तो नहीं, कहीं वो काम आप किसी से छुपा कर तो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे एक और छोटी सी बात सुनिए, अभी क्या हुआ, थोड़े दिनों पहले मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर बहुत सारी कोचिंग भी हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो मैं देख रही थी कि एक बुज़ुर्ग दंपत्ति सड़क पार कर रहे थे, तो वहाँ लगभग 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा आगे बढ़ा और उसने उस बुज़ुर्ग दंपत्ति से पूछा, मैं आपकी कोई मदद करूं? जो 2-3 बच्चे और थे वो हंसने लगे,
क्या है, किसी के भी पास जाकर मैं मदद करूं पूछने लगते हो, उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि वो बच्चा कितने प्यार से पूछ रहा है मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति हैं, हाँ, और उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन ये जो बाकी बच्चे जो उसके दोस्त थे, वो उसकी हंसी क्यों उड़ा रहे थे? पता है क्यों उड़ा रहे थे? मैं बताऊं? क्योंकि उनके स्वतंत्र यानी खुद का तंत्र बिगड़ा हुआ है जो खुद की व्यवस्था है ना कहीं गड़बड़ाई हुई है। क्योंकि हम सब बच्चों किसी ना किसी व्यवस्था से, अनुशासन से अपना जीवन जीते हैं, है ना। जैसे हमको सिखाया जाता है कि बच्चों दूसरे की मदद करनी है, हो सकता है उन बच्चों को भी सिखाया गया हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन बच्चों का साथ पकड़ा जो कहीं ना कहीं इस बात को अच्छा नहीं समझते थे, और उन्होंने यही सीख लिया कि नहीं

0: फिर से अलमारी में रखती है, तो बच्चों यकीन कीजिए कि जब आप हॉस्टल जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हॉस्टल में मम्मी नहीं होगी बच्चों। आप देखते हैं सेना में जो लोग भर्ती होते हैं उनको कितने कड़ी मेहनत करवाई जाती है। उनको उस दिन के लिए तैयार किया जाता है कि जब देश की सीमा पर आपकी जरूरत हो तब आप ये ना कहें कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा। उन्हें हर विपरीत स्थिति से जूझने का, लड़ने का तरीका सिखाया जाता है बच्चों। उन्हें दिमागी रूप से इतना मजबूत कर दिया जाता है कि जहां हम लोग खड़े नहीं हो सकते, माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां वो लोग दिन रात खड़े होकर हमारी देश की सीमा की रक्षा करते हैं बच्चों। तो ये एक दिन में नहीं होता, ये कई सालों की कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद होता है। तो एक बार जरा सोचिए कि जरा सी बारिश होते ही, जरा सी धूप तेज होते ही अगर हम घर के अंदर छिपकर ये बोल देते हैं कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, मौसम ठीक नहीं है, तो क्या आप आने वाले कल के लिए तैयार हैं? पूछिए खुद से। जो बार बार आज के पूरे बाल सभा में आपको मैं याद दिलाऊंगी वो है स्व का बोध, है ना। हमें स्वयं का ज्ञान होना बच्चों बहुत जरूरी है, और यही सच्ची स्वतंत्रता भी है बच्चों, कि आप अपना खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रखें। आप हर बार खुद से ये प्रश्न करें कि मुझे अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य याद हैं क्या। अब आप सोचोगे इतने से बच्चों के क्या कर्तव्य, तो बच्चों बहुत सारे काम हैं। अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, आप जहाँ रहते हैं आसपास सफाई रखिए, वो भी अनजाने में, सच मानिए आप देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई पालतू जीव अगर परेशान हो रहा है उसको कभी पानी रख दीजिए, गाय कभी निकले उसको पानी रख दीजिए, ध्यान रखिए कि उसको रोटी दी गई है या नहीं दी गई, ये भी अनजाने में आपके कर्तव्य हैं। कि जो लोग बोलते नहीं हैं उनका ख्याल हम कैसे रखें, है ना। कई बच्चे आपने देखा होगा कोई गाय निकल रही है, कोई बछड़ा निकल रहा है, तो उसको अनजाने में ही खेल खेल में पत्थर मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। यही तो हर दिन हम जो निखर रहे हैं, हम जो बिगड़ रहे हैं, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छी आदतें सीखेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और नहीं तो एक बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी कि बूंदों का आखिर क्या था दोष। एक बूंद समुद्र में गिरेगी और मोती बन जाएगी, एक बूंद नाली में गिरेगी और कीचड़ कहलाएगी, तो बूंदों का आखिर क्या था दोष। बच्चों यही संगत की बात आ जाती है कि आप कैसे लोगों के संग रह रहे हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है, इस पर आपका जीवन बहुत निर्भर करता है। बच्चों अब हम आपसे बात करने वाले हैं उन वीर जवानों की जिन्हें आज हमें सिर्फ याद नहीं करना है, हमें हर दिन उनके लिए सोचना है कि वो किस तरह हर परिस्थिति में हमारे देश की सीमा पर खड़े हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं। बच्चों जब हम अपने घरों में परिवारों के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्कूल में तिरंगा लहरा रहे हैं, हम देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उसी समय हमारे देश का कोई जवान किसी बर्फीली सीमा पर खड़ा है, कोई तपते रेगिस्तान में देश की निगरानी कर रहा है, और कोई घने जंगल में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हमारे सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? उनकी सबसे बड़ी ताकत है कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण। वो जानते हैं कि सीमा पर उनकी एक छोटी सी लापरवाही देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, इसलिए वो मौसम, सुविधा, नींद कुछ नहीं देखते, बस देखते हैं तो अपना कर्तव्य। हम जो रात को चैन की नींद लेते हैं ना बच्चों, वो इसीलिए ले पाते हैं कि कोई जवान सीमा पर जाग रहा होता है। जब हम फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, तब कोई जवान पूरा परिवार छोड़कर हजारों हजारों किलोमीटर दूर बैठा होता है। तो आज हम सब अपने बहुत सारे सैनिकों से गर्व से ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो उसके पीछे आप जैसे वीर जवानों का साहस, अनुशासन और त्याग शामिल है। हम सब अपनी अपनी जगहों पर एक बार खड़े होकर दिल से अपने सभी सैनिकों को सैल्यूट करते हैं। आप हैं इसलिए हम हैं। तो बच्चों, बस अब बाल सभा में चलते चलते आपका और हमारा, हम सबका संकल्प लेने का समय आ गया है। आंखें बंद कर लीजिए। आज जबकि हम स्वतंत्रता दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति कर रहे हैं, तब पहला संकल्प यही है कि मैं असली मायने में स्वतंत्रता का अर्थ समझूंगा या समझूंगी। अधिकारों के साथ मैं अपने कर्तव्यों का भी निर्वाहन करने में पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी। मैं अपने देश की विरासतों को, अपनी ऐतिहासिक इमारतों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वहां हमेशा साफ सफाई रखूंगा या रखूंगी। प्रकृति की रक्षा करूंगा। किसी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा आगे हाथ बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो बच्चों, आंखें खोल लीजिए। इन्हीं संकल्पों के साथ आपसे विदा लेने का भी समय आ गया है। तो बस चलते चलते कुछ बातें कि हम अपने वीर जवानों की कुर्बानियों को हमेशा हमेशा याद रखेंगे। हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, अपने कर्तव्य निभाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे और हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे पेरेंट्स को कभी भी जरा सा भी सिर झुकाना पड़े, है ना? तो चलो, अपना ख्याल रखिए और अगली बार मिलने के वादे के साथ चलती हूँ। चलते चलते एक बार अपनी जगह खड़े होकर जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा। कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ मैं मनीषा चतुर्वेदी। अब अनुमति दीजिए, चलती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस विशेष था। इसे प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। हमारा अगला कार्यक्रम है प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज का विषय है बादल। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे वर्षा सिंह और दीपक नेमा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ वर्षा सिंह।
3: और मैं हूँ दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: मैं हूँ धरा।
1: मैं हूँ बादल। ये तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए हमें अब अपने उन स्थायी चीजों को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: और ये भी तो है कि पृथ्वी के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका है, इसे भी पहचानना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग देना हम सभी का कर्तव्य है, तभी हम एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर पाएंगे।
0: बादल, तो आज हम श्रोताओं को क्या जानकारी देने जा रहे हैं?
1: धरा, आज तो हम बात करने से पहले एक बहुत ही सुंदर पंक्तियों को सुनाना चाहेंगे, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि चर्चा किसकी होगी। ये कविता हमने बचपन में सुनी थी।
0: ऐसी बात है तो सुनाओ भाई, हम भी सुनने को तैयार हैं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर जैसे तोंद फुलाए, कुछ हाथी जैसे सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहकर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके चुपके उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल।
0: अब मैं भी बता दूं कि ये पहले तो सागर की लहरों पर होते हैं, फिर भाप बनकर आकाश की यात्रा करते हैं और फिर आसमान के राजा बन जाते हैं, है ना?
1: अरे वाह, आपने तो कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कह दी।
0: श्रोताओं, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो खिड़की के बाहर देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम बड़े बड़े रुई के गुच्छों के बीच से गुजर रहे हैं।
1: हाँ, और जब आसमान की ओर धरती पर खड़े होकर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूल गोभी के टुकड़े कर आसमान में फैला दिए हों।
0: सही है, और कभी कभी ये बादल हमें विभिन्न आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं।
1: हाँ हाँ, बचपन में तो हम इन आकृतियों को देखकर भाई बहनों और मित्रों के साथ प्रश्नोत्तरे भी करते थे।
0: तो आज हम बात करते हैं बादलों की। ये बादल क्यों है, क्या है, क्या अब पता चला आपको?
1: दरअसल बादल पानी की भाप से बनी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के समूह होते हैं।
0: हाँ, और जैसा आपने कही बचपन की बात, तो अक्सर आसमान को देखकर हम कल्पना करते हैं, या कहानी कविताओं में भी हम पढ़ते हैं और कल्पना करने लगते हैं।
1: हाँ, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पार भी कोई जादुई संसार है, जहाँ शांति और खूबसूरती है, और वो जगह दुख और चिंता से परे है।
0: बिल्कुल सही कहा, बचपन में हमें कुछ ऐसा ही लगता था ना? पर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो बादल वायुमंडल का एक भाग है, जो सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर अद्भुत रंग और बनावट में दिखाई देते हैं।
1: सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी के स्रोतों, नदियों, जलाशय आदि में मौजूद पानी की बूंदें भाप में बदल जाती है।
0: हाँ, इसके साथ ही पेड़ पौधे भी भाप के रूप में कुछ मात्रा में पानी छोड़ते हैं।
1: ये भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जाने से ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है,
0: और फिर ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये बूंदें इतनी हल्की होती है कि ये हवा में तैरती रहती है। बस इन तैरती बूंदों के समूह को ही बादल कहते हैं।
1: यानी वायुमंडल में जब पानी की छोटी छोटी बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तब बादल बनते हैं।
0: और हाँ, जब बादल छाते हैं तो हमें कितनी ठंडक का एहसास कराते हैं, गर्मी से राहत देते हैं।
1: धरा, क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों होता है?
0: आप बताइए ना।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और पृथ्वी के नजदीक होने से ये हमें दिखाई भी देते हैं और अंतरिक्ष की तरफ से रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है।
0: बादलों के बनने का एक तरीका ये भी है कि पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है, इस कारण हवा ऊपर की ओर उठती है, पानी की बूंद एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है।
1: जो हम पहले बात कर रहे थे फूल गोभी के आकार के बादलों की, इस तरह के बादल हमें तब दिखाई देते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है।
0: और ये बादल सूर्य की रोशनी के कारण अधिक साफ, सफेद और चमकीले रूप में हमें दिखाई देते हैं, जबकि ये होते भी गहरे ही हैं।
1: इन बादलों को क्यूमुलस बादल कहते हैं और अगर मौसम और अधिक साफ होता है तो ये ऊंचाई और आकार में बड़े होते जाते हैं।
0: ऐसे बादल ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय बनते हैं, क्योंकि समुद्री हवा नम होती है और फिर सतह गर्म हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये बात रात में उलट जाती है, क्योंकि तब समुद्र भूमि के मुकाबले गर्म हो जाता है और समुद्र के ऊपर ऐसे बादल बनते हैं।
0: इस तरह के बादल हल्की वर्षा करने में भी सक्षम होते हैं। ये तो हुई साफ मौसम की बातें, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि धुंध छा जाती है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता।
1: जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और वो ऊपर इकट्ठे होकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाती है।
0: हाँ, पर कभी कभी परिस्थितिवश ये हवा के बिना उठे ही भाप पानी की बूंदों में बदलकर कोहरे का रूप ले लेता है और वायुमंडल में जमीन की सतह से थोड़ा ही ऊपर फैलता रहता है।
1: हाँ हाँ, हमने सर्दी के दिनों में देखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही है, पर इस कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है और हम अधिक लंबी दूरी पर नहीं देख पाते। ऐसे में हमें सड़क पर गाड़ी चलाते समय बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि ये दृश्यता कभी कभी कुछ मीटर की ही रहती है।
1: हाँ धरा, ऐसा इसलिए होता है कि आर्द्रता 100% होने के कारण भाप की मात्रा स्थिर हो जाती है। इससे ज्यादा भाप के शामिल होने के कारण या तापमान से कम होने से मौजूद सघन पानी की जो बूंदें हैं वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं।
0: अपने आकार, आकृति और रंग के अनुसार बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, घन के आकार के, कोमल रेशेदार, भूसे के ढेर के समान, काले, हल्के सुरमई, सफेद आदि। ये वायुमंडल के अलग अलग स्तरों पर पाए जाते हैं।
1: ये तो हम जान गए कि जब हवा नम होती है और उसके अंदर भाप होती है तब बादलों का निर्माण होता है। यदि हवा गर्म है तो उसमें अधिक मात्रा में भाप होती है।
0: हाँ, और जब हवा में मौजूद नमी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब भाप और बर्फ एक साथ मिलकर बादल बन जाते हैं और तब बारिश, बर्फबारी, ओलों की वर्षा होती है।
1: हाँ धरा, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था।
0: कोई बात नहीं, इस विषय पर आगे और अधिक विस्तार से बात करेंगे, अभी तो बात सिर्फ बादलों की करते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: आपको पता है बादल, बादलों को उनकी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है।
1: हाँ हाँ, मैंने सुना है सबसे ऊंचे बादल लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये पतले और पूरी तरह से बर्फ से बने होते हैं।
0: हाँ, पर ये वर्षा वाले बादल नहीं होते, बल्कि जब ये आसमान में नजर आते हैं तो सही अनुमान होता है कि मौसम अच्छा और साफ रहेगा।
1: जो बादल लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पानी की बूंदें ठंडी होने के बाद जब जमने लगती हैं, तब उन ठंडी पानी की बूंदों के समूह से इन बादलों का निर्माण होता है।
0: और ऊंचाई पर ही पाए जाने वाले पतले और एक जैसी परत वाले बादल भी होते हैं, जिसके अंदर बर्फ के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, परंतु इनको खोजना मुश्किल होता है।
1: और छोटे छोटे आकार के भी बादल होते हैं जो आकाश में हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बह रहे हों। ये होते तो सफेद हैं, परंतु हमें ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ बादलों की ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर की होती है। जब ये आसमान में नजर आते हैं तब ये तूफान या भारी वर्षा होने का संकेत देते हैं।
0: इस तरह के बादल हमेशा समूह में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन दो बादलों के बीच से सूर्य हल्का हल्का दिखाई देता है।
1: और जब तूफान आने वाला होता है या तेज बारिश या फिर बर्फ वाली बारिश होने वाली होती है, तब इस प्रकार के बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं।
0: बादल फट गया, ये भी आपने सुना होगा।
1: हाँ हाँ धरा, बिल्कुल सुना है, पर ये होता कैसे है ये हम नहीं जानते।
0: पर ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण झील, तालाब, समुद्र, नदी आदि का पानी सूखता है। पानी के ये छोटे छोटे कण आसमान में इकट्ठे होकर बादलों का रूप ले लेते हैं।
1: बिल्कुल जानते हैं।
0: तो ये बादल पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जन के साथ ही इनमें प्रकाश होता है और बिजली चमकती है।
1: हाँ हाँ, ये तो अक्सर बारिश के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती है तब तो ऐसा होता ही है।
0: हाँ, जब ये बूंद बूंद करके गिरने वाला पानी इसी तरह तेजी के साथ इकट्ठा आकर धरती पर गिरता है तो उसे ही बादल फटना कहते हैं।
1: इसे हम आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बलून में बारीक बारीक छेद करें और फिर उसमें पूरा पानी भर दें, तो पहले तो पानी बारिश के हल्की बूंदों की तरह धीरे धीरे उन छेदों से बाहर आकर नीचे गिरेगा, है ना?
0: हाँ, पर अगर इन बारीक छेदों को अचानक से झटके से तोड़ दो तो एकदम सारा पानी पूरे वेग से बाहर आकर नीचे गिरेगा, और इसे ही कहा जाता है बादल फटना, या ये स्थिति बादल फटने जैसी होती है।
1: ये बादल हवाओं के दबाव और रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकराकर एकदम फट जाते हैं और अपने अंदर भरा सारा पानी उंडेल देते हैं, और बादल फटने से बारिश इतनी तेज होती है कि उसे मापना भी मुश्किल होता है।
0: बादल फटने को वैज्ञानिक जो वजह मानते हैं उसमें जब एक आवेग के बादल आसमान में किसी ऐसी जगह मिलते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों एक तरफ से उन पर दबाव डालती हैं, या जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे इन बादलों से टकराता है तो ये बादल फट जाते हैं।
1: और इसी के बीच बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ बारिश होती है। ऐसे में एक सीमित इलाके में ही कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है, जिसकी रफ्तार लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
0: हाँ, और कुछ ही मिनटों में 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, यानी कुछ ही पलों में आसमान से नीचे उतरकर एक पूरी नदी धरती पर आ गिरती है।
1: इससे उस इलाके में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा अक्सर पहाड़ों और नदी वाले इलाकों में ज्यादा होता है।
0: हाँ, क्योंकि उस इलाके में गर्म और ठंडी दोनों हवाएं चलती हैं, और वहाँ से गुजरने वाले बादल इनकी चपेट में आ जाते हैं।
1: तब वहाँ भारी बारिश के कारण ग्लेशियर टूटकर गिरने लगते हैं, जमीन खिसकने लगती है और घर देखते ही देखते टूटकर जमीन पर आकर धसने लगते हैं।
0: बादल फटने की एक वजह और भी है, वैज्ञानिक इसको बताते हैं। वे ये बताते हैं कि बादल काफी मात्रा में नमी या पानी लेकर आसमान में चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तब उससे टकरा कर ये फट जाते हैं।
1: वैज्ञानिक जो भी बादलों के लिए अनुमान लगाएं या शोध कर बताएं, पर बादलों को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाना सदियों से प्रचलित है।
0: हाँ, ऋग्वेद में बादलों को वर्षा का अश्व माना गया है, और मौसम का अनुमान पूरी दुनिया में बादलों के आधार पर ही लगाया जाता है।
1: हाँ धरा, और हिंदी साहित्य के कवि घाघ और भड्डरी ने क्या खूब ही कहा है, कारा बादल जी डर पावे, भूरा बादल पानी लावे, शुक्रवार की बदरी बिन बरसे ना जाए, जैसी पंक्तियाँ बादलों को लेकर कही हैं।
0: हाँ, और महाकवि कालिदास ने तो अपनी एक पूरी कृति को ही इन्हीं बादलों को समर्पित कर दिया है। ये कृति है मेघदूतम।
1: वाह, हमारे पुराण सैकड़ों सालों से इन्हीं बादलों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें देखकर, इनकी टोह लेकर, इनकी तह तक पहुंचकर बादलों के रूप रंग और इनके ठौर ठिकानों के आधार पर ही अपने अनुभव को मौसम के अनुमान में ढाला है।
0: पता है बादल इसी आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया गया है, जैसे बादलों में सफेद धागों के गुच्छे जैसे दिखाई देने वाले जिनमें रेशम सी चमक होती है, ऐसे बादलों को पक्षाभ मेघ कहा जाता है।
1: अच्छा, इसी तरह ये मेघ सफेद या भूरे रंग के भी होते हैं। हम जब इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे बादलों के छोटे छोटे ढेर इकट्ठा हो गए हैं। रुई के ढेर जैसे नजर आने वाले इन बादलों को कपासी मेघ कहते हैं।
0: बादल चाहे काले हों या सफेद, हमें ये सदा सम्मोहित करते हैं। जब तेज गर्मी से हम हलकान होने लगते हैं, तब आसमान में इन मेघों के आने की प्रतीक्षा करते हैं।
1: हाँ धरा, बिल्कुल सही कहा। और सबसे अधिक कौतूहल तो हमें बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने पर होता है। और जब ये बहुत अधिक जोर से गरजते हैं या बिजली कड़कती है तो मन में अजीब सा भय भी पैदा हो जाता है।
0: आपकी बात सही है। एक लंबे समय तक तो बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना सुनकर इसे दिव्य प्रकोप से भी जोड़ा गया।
1: हाँ धरा, जबकि सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग से सिद्ध किया था। उन्होंने बादलों से बिजली भी इकट्ठा की और बताया कि ज्यादातर बादलों में नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव चार्ज वाले बादलों की संख्या कम होती है।
0: पर बादलों से दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और दोनों तरह के बादल जब आमने सामने होते हैं तो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उनके बीच की हवा में बिजली उत्पन्न होती है।
1: हाँ, और यही बिजली गर्जना पैदा करती है। तब हमें आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी गर्जना बाद में सुनाई देती है।
0: और वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति और ध्वनि की गति में फर्क होता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, इसीलिए हमें चमक पहले और बिजली के कड़कने की आवाज बाद में सुनाई देती है।
1: बादल हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, वो भी दो तरीकों से। पहला तो ये कि बादल हमारे जल चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।
0: ये बादल बारिश और बर्फ, महासागरों और झीलों तथा पौधों और जानवरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हैं। यानी बादल हमारी इस पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि बादलों का पृथ्वी के तापमान पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये पृथ्वी के तापमान को ठंडा और गर्म दोनों करने में सक्षम होते हैं।
0: वो इस तरह के बादल सूर्य से मिलने वाली किरणों की गर्मी और रोशनी दोनों को रोक सकते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान ठंडा हो जाता है। हम सभी जब बादल छा जाते हैं तो इस तरह की ठंडक को महसूस करते हैं।
1: रात में बादल इसी तरह अपना काम करते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये बादल पृथ्वी को एक बड़े कम्बल में लपेट कर उसके तापमान को प्रभावित करते हैं।
0: हाँ, इस तरह हम कह सकते हैं कि बादलों के द्वारा ठंडा और गर्म दोनों प्रभाव होता है। यानी ये भी साबित होता है कि बादल इस कार्य में शक्तिशाली कारक है जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ धरा, हम ये भी कह सकते हैं कि बादल हमें धरती पर एक ठंडी जलवायु देते हैं जिसका आनंद हम बादलों के बिना नहीं ले सकते।
0: जी हाँ, ये बादल जहाँ अकाल या सूखा पड़ता है वहाँ बरसते हैं, तो मानव नहीं समस्त प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा करते हैं।
1: जहाँ नदियाँ, तालाब, कुएं, जलाशय आदि पानी के स्रोत सूखने की कगार पर आ जाते हैं, तब ये बादल वहाँ बरसकर उनका भी जीर्णोद्धार करते हैं।
0: किसान तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघ देखकर खुश हो जाते हैं और बादल बरसने पर उनकी फसलें लहलहा उठती हैं, पृथ्वी हरी भरी दिखाई देने लगती है।
1: हाँ धरा, बिल्कुल। अच्छी फसलें पैदा होने से धन धान्य और संपन्नता आती है। इससे केवल हम मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की प्यास मिट जाती है।
0: तो आज के कार्यक्रम में हमने बादलों के महत्व को जाना। अगले कार्यक्रम में हम फिर अपनी धरती को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी,
0: और मैं थी धरा यानी वर्षा,
2: और मैं था आपका दोस्त बादल यानी दीपक।
0: तो इस कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM। दी
2: पुकार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम जिसमें आज हमने बादल विषय पर जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम को स्वर दिया वर्षा सिंह और दीपक नेमा ने। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
0: का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारतीय सशस्त्र सेनाएं अब तक का सफर। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओं, ये दुनिया आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध के मैदानों की कोई तय सीमाएं नहीं होती और विजय के लिए केवल शक्तिशाली राष्ट्र का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि विजय के लिए शक्ति के साथ ही हमेशा ही मुस्तैद और तत्पर राष्ट्र का होना भी उतना ही जरूरी है। श्रोताओं, अपनी सदियों की परंपराओं से प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार हिमालय से लेकर थार मरुस्थल तक भारतीय सशस्त्र सेना का हर कदम उभरते हुए भारत की नियति को आज आकार देता हुआ दिखाई देता है। सम्मान में निहित और नवाचारों से प्रेरित एक सशक्त और सुदृढ़ भारत के लिए आज हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों से भारतीय सेना नए कलेवर में अपना रूप ले रही है, एक अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में, जहां ज्ञान, डेटा, ड्रोन्स और नई तकनीकें सैनिकों के साथ समान गति से चलती हैं। कभी आयात पर निर्भर भारतीय सेना के हथियार अब स्वदेशी हैं और हमारा देश इनका निर्माता ही नहीं निर्यातक है। थार से लेकर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर अंडमान तक हर प्रणाली पर स्वदेशी छाप है। ये कहना ना होगा कि इस नए स्वरूप में पहुंचने के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। देश की आजादी के बाद लगभग 8 दशकों में हमारी भारतीय सेना ने जिन महत्वपूर्ण पायदानों को पार किया है, इसका जिक्र हम इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में करते हुए चले आ रहे हैं और इसका हमने पूरा प्रयास भी किया है और इस प्रयास का श्रेय हमारे कार्यक्रम विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर को है, जो हर कड़ी में बड़ी ही शिद्दत और गहन अध्ययन के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं से संबंधित जानकारी हमारे लिए संजोते रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय सेना को जानते समझते अब इस कार्यक्रम की हम अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। आइए आज की इस कड़ी में हम पुनरावलोकन करें, फिर से दृष्टि डालें हमारी सेनाओं की भूमिका पर, जिनके कारण आज हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें लगभग 20 वर्षों का सेना में अपनी सेवाओं का अनुभव है। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं,
2: जी,
3: आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: दिस ईयर वी आर 79th ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस,
2: जी,
3: एंड आई मस्ट से दैट द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट
2: बिल्कुल
3: इन दिस वर्ल्ड।
2: जी, परिवर्तन हमेशा का नियम रहा है संसार का सर।
3: एग्जैक्टली,
2: जी,
3: उसी हिसाब से देखें,
2: जी,
3: there are a lot of changes which has taken place, development has taken place, upgradation has taken place in our country,
2: जी,
3: और उसी के साथ साथ जो है हमारी जो सेनाएं हैं वो भी निरंतर जो है अपग्रेडेड हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं।
2: बिल्कुल,
3: हमने सीरीज जब शुरू करी थी तो हमने 47 से शुरू करी थी,
2: जी,
3: और हमने देखा था कि 47 से लेके अभी तक हमारी सेना निरंतर जो है वॉर्स में इन्वॉल्व रही हैं।
2: बिल्कुल।
3: 47 में, 65 में, 71 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा
2: जी।
3: और चाइना के साथ हमने 62 में युद्ध लड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। कारगिल में रहा, सियाचिन में रहा, इंडियन आर्म फोर्सेस ने IPKF में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत श्रीलंका में जो है इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट किया था।
2: बिल्कुल।
3: अभी भी अगर हम देखते हैं जो आर्म फोर्सेस हैं वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है टेररिज्म रोल में J&K में जो है यहाँ पे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है, उससे लड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो है काफी जगह पे इंसर्जेंसी से लड़ रही है। इसके अलावा भी जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को तो देखते ही हैं
2: जी, बिल्कुल।
3: एंड एड टू सेवर अथॉरिटी के लिए भी जो है आप देखते हैं कि जो सेनाएं हैं हमेशा जो है तत्पर रहती हैं, हमेशा जो है उनका प्रयास रहता है, हर जगह जो है सपोर्ट करती
2: जी।
3: तो ओवरऑल इफ यू सी द आर्म फोर्सेस हैज बीन इन्वॉल्वड थ्रू आउट सिंस इंडिपेंडेंस गार्डिंग अवर नेशंस इंटरेस्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड सपोर्टिंग
2: जी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है।
3: तो ये सब हमने जो है हमारी जो पूरी सीरीज में हमने जो है देखा था
2: जी।
3: तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है वैसे वैसे जो है आर्म फोर्सेस भी कॉन्स्टेंटली जो है अपग्रेडेड हुई
2: जी। देश के विकास के साथ सेना का भी विकास
3: जी, सेना का भी विकास हुआ
2: जी।
3: और जो ये चेंजेस हैं, अपग्रेडेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ये मतलब हर तरह से हर जगह पाए जाते हैं। जैसे की पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं
2: जी,
3: ट्रेनिंग में चेंजेस है, जो हमारे पास वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं
2: जी,
3: वो उनका मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन रेगुलरली हुआ है।
2: बिल्कुल।
3: तो इससे जो है हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील करने की कैपेबिलिटी हमारी जो बढ़ती है,
2: बढ़ती गई।
3: आपका दुश्मन जो कर सकता है तो आपको वो अपग्रेडेशन होना चाहिए
2: कि आप मुकाबला कर पाए,
3: उसका आप मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है, ओके, रादर आप उससे आगे रहें,
2: ठीक
3: है। हमने 47 के वॉर में जो देखा था, जब शुरू हुआ था 47 में, जो श्रीनगर में जब शुरू हुआ था, इफ यू सी वी वर इन अ काइंड ऑफ अ रिएक्टिव रोल। हमारे पर अटैक हुआ, कबाइलीज का अटैक हुआ, उसके बाद वो संधि साइन हुई थी एंड देन वी एंटर्ड, ठीक है। तो इट वाज अ रिएक्टिव एक्शन बिकॉज उस समय जो पॉलिसीज थी 47 में, क्योंकि हमने जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसी समय हम आजाद हुए थे, तो जस्ट फॉलोइंग द ब्रिटिश आर्मी, उसी तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, उसी तरह से हमारी पॉलिसीज थी, उसी तरह से हमारे बैटल फॉर्मेशंस थे। ब्रिटिशर्स के लिए तो हम तो इट वाज मोर ऑफ अ पुलिसिंग, ठीक है, डिफेंसिव रोल वाला
2: था।
3: तो उस समय जो हमारा रिस्पॉन्स था एंड वो पॉलिसी के हिसाब से डिफेंसिव होता था,
2: केवल प्रतिक्रिया स्वरूप था,
3: प्रतिक्रिया स्वरूप। अभी अगर मैं सीधे जंप करूं 2025
2: में,
3: जब हम ऑफ सिंदूर देखते हैं, ऑफ बंदर देखते हैं, तो यू फाइंड एब्सोल्युटली
2: पूरी तरह से विपरीत हो गई है वो हमारी जो नीतियां हैं।
3: वी आर एक्चुअली प्रोएक्टिव
2: जी, बिल्कुल सर।
3: अब हम मतलब वो है कि आप कुछ करोगे तो हम पूरी हिम्मत रखते हैं और हम करके दिखाते हैं
2: जी।
3: तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा मतलब आई विल से अपग्रेडेशन है। एंड ये एक माइंडसेट चेंज होता है, और जब ये माइंडसेट ऐसा चेंज होता है तो इसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीजें बदलती हैं
2: जी, बिल्कुल सर।
3: जो ये मॉडर्नाइजेशन है या अपग्रेडेशन है वो किस कारण से आता है? पहले तो जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनसे हमें सबक मिले
2: जी, बिल्कुल सही।
3: हर लड़ाई ने हमें कुछ ना कुछ
2: सिखाया है,
3: हर युद्ध में हमें कुछ सीखा है, हर कॉन्फ्लिक्ट में, सियाचिन हो, कारगिल हो, कहीं पे भी
2: जी,
3: IPKF हो, हर जगह हमने कुछ सीखा है। तो वो जो हमें सिखलाई मिली उसने हमको प्रेरित किया कि हम ये चेंजेस लेकर आए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो, चाहे वो इक्विपमेंट में चेंजेस हो, चाहे हमारे बैटल फॉर्मेशंस में हो, हमारी डॉक्ट्रिन्स में हो, ये ट्रेनिंग में है
2: जी।
3: तो ये चेंजेस उसके कारण है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है द चेंजिंग एंड द प्रेजेंट सिनेरियो, रीजनल इंटरनेशनल सिनेरियो,
2: आसपास क्या चल रहा है,
3: आसपास क्या चल रहा है, आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, मतलब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस
2: क्या है,
3: उनका जो इम्पैक्ट होता है। देन अगर हम देखें हमारी जो सीमाएं हैं
2: जी,
3: उसपे हमें एक साथ दोनों सीमाओं पे, यानी कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ
2: जी,
3: लड़ने की हमारी काबिलियत कैपेबिलिटी होनी चाहिए।
2: बिल्कुल सर,
3: तो वो एक और फैक्टर है। तो
2: सर ये हमारे पारंपरिक दुश्मन है, समझ लीजिए, इस तरह से कहा जा सकता है।
3: कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो ये एक और फैक्टर होता है विच इज द की ड्राइविंग फैक्टर, जो कि चेंजेस में अपग्रेडेशन में
2: जी हमें हमारे सेना में हमेशा परिवर्तन बनाए रखना इनके लिए जरूरी है।
3: इनके लिए जरूरी, करेक्ट है जी। देन गार्डिंग अवर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर देखें तो हमारा 90% जो ट्रेड होता है थ्रू सी लेन्स,
2: समुद्र के द्वारा,
3: समुद्र के द्वारा है। तो उसमें हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सेफगार्ड करने का, देन लाइक द एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री, सर्विलेंस एंड एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री, सो दैट हमारे ऊपर जो है कहीं मतलब स्पेस कुछ ना हो। तो ये सब जो है की ड्राइवर्स होते हैं जिनके तहत जो है हम नई पॉलिसीज आती हैं, नए ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, नए डॉक्ट्रिन्स बनते हैं नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होता है। तो अगर हम अपने देश की बात करें
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि जो हमारी प्रगति है इस समय
2: जी,
3: उसमें निसंदेह अगले 25 साल में 20 साल में जो है हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो जाएंगे। उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हमारी आर्म फोर्सेस भी
2: उसी के हिसाब से तैयार हों जी, बिल्कुल।
3: क्योंकि अगर एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है
2: जी,
3: ठीक है, पीसफुल एग्जिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए उसके पास फोर्सेस हो
2: जी, बिल्कुल,
3: और वो फोर्सेस की कैपेबिलिटी भी उस हिसाब से हो। ये जो है एक बहुत जरूरी फैक्टर है, ठीक है
2: जी।
3: टुडे अवर फोर्सेस, अगर हम अपने फोर्सेस की आज बात करें तो वर्ल्ड में इसको ऑलमोस्ट फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स कहा जाता है। रिपोर्ट्स जो होती हैं उससे बेस पे कि व्हाट इज अवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज अवर इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, सबको
2: मिलाकर जी जी।
3: एंड आपको पता ही है कि हमारी भारतीय सेना में ये वॉलंटियर फोर्स है
2: जी, स्वैच्छिक संगठन है,
3: बिल्कुल
2: जी।
3: एंड इट इज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वॉलंटियर फोर्स है,
2: बिल्कुल सर।
3: इसके अलावा जो है अगर आप देखें हमारी फौज को, वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन मिशन। ये सब जो चीजें हैं इसको देखते हुए ये जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसी तरह से जो है हमारा प्रोग्रेस भी रहा है। ये है भी इसीलिए क्योंकि हमने जो है अपने आप को मॉडर्नाइज किया है। और ये जो मॉडर्नाइजेशन है, एडवांसमेंट है
2: जी,
3: अगर आप देखेंगे पिछले 2 दशकों में
2: बहुत
3: तेजी से हुआ है
2: जी, बिल्कुल सर।
3: और उसका कारण भी बहुत ही ज्यादा विदित है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्द तेज हुआ है। 2009-2007 में ड्रोन्स यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग, मतलब जो है आज ड्रोन्स हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग
2: जी, बच्चा जानता है सर
3: जी उसके बारे में जो है। तो डिफेंस फोर्सेस ने जो ये अडॉप्शन किया है टेक्नोलॉजी का, इससे देखिए कम्बैट एफिशिएंसी बढ़ी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। एक और जो बात है
2: जी,
3: जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, उनकी जो जॉइंटमैनशिप है, उनकी जो काबिलियत है इकट्ठे काम करने की
2: जी,
3: उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। क्योंकि इससे क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली द कम्युनिकेशन
2: जी,
3: ठीक है, द ट्रांसपेरेंसी। आज क्या है कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी से भी बात करने के लिए रहते हैं, द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है हमें सबको मिलता है, एक साथ मिलता है,
2: सूचनाएं तुरंत मिल जाती
3: है, बिल्कुल, और समय पे जो है बिल्कुल जो रियल टाइम होता है वो मिलता है।
2: हमने इसे सर ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छे से देखा,
3: एग्जैक्टली
2: जो चल रहा था हमने उसको लाइव देखा कि क्या हो रहा है,
3: क्या हो रहा है,
2: मतलब हर व्यक्ति ने, देश के हर नागरिक ने इसे देखा।
3: ये ऑफ कारगिल वॉर के बाद शुरू हुआ है, जो है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
2: जी,
3: नॉट ओनली आई विल से कि अमंग द फोर्सेस, इवन जो और भी एजेंसीज हैं
2: जी,
3: जो डिसाइसिव एजेंसीज हैं वो भी जो है जुड़ती हैं, उनसे भी मदद मिलती है
2: जी, बिल्कुल।
3: और अगर हम जिक्र करें जो हमारी एडवांसमेंट है उसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं
2: जी,
3: नेचुरल है उनका तो सबसे बड़ा योगदान रहता ही
2: जी,
3: है
2: सर,
3: और उनके कारण जो है बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने 2019-20 में जो है आप देखा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अपॉइंटमेंट,
2: हाँ जी, ये नया पद बनाया गया
3: था
2: जी,
3: जिसकी डिमांड काफी टाइम से हो रही है, ऑलमोस्ट कारगिल के बाद से भी चल रहा था
2: जी।
3: ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, एंड जो सीडीएस होते हैं ये तो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है
2: सर, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इनकी काबिलियत क्या होती है, इनको किस तरह से चयन किया जाता है सर?
3: ठीक है, इनके चयन प्रक्रिया ये रहती है कि ये मतलब लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के रैंक के होते हैं
2: जी,
3: एंड पॉलिसीज के हिसाब से होता है कि उनकी कितनी एज होगी, क्या
2: अच्छा,
3: होगा, और तीनों सेनाओं में से कोई भी हो सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आर्मी नेवी एयरफोर्स में से कोई भी जो है जो सीनियर होते हैं
2: अच्छा,
3: वो इसमें मतलब जो है बन सकते हैं।
2: अच्छा,
3: अब उनका अगर रोल देखें तो ही इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर ऑल द थ्री सर्विसेज। स्पेसिफिकली वो एक सर्विस के नहीं होते, वो तीनों के लिए देखते हैं, तो उसके कारण जो है ज्वाइंटमैनशिप जो है बढ़ता है। देन ही इज एबल टू मतलब दिस इज हिज प्राइम जॉब रादर कि जो एक्विजिशन है मतलब डिफेंस के लिए
2: जी,
3: उसको प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है उनका बहुत बड़ा काम रहता है
2: जी। यानी किस तरह से बांटा जाएगा सोर्सेज को तीनों सेनाओं में।
3: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ही कैन हैव ए होलिस्टिक व्यू कैसे किसको क्या जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली ही कैन एडवाइज द गवर्नमेंट, ही कैन एडवाइज सब जो है डिफेंस मिनिस्टर।
2: यानी इस तरह से वो सरकार और सेना के बीच की कड़ी है।
3: बिल्कुल
2: जी,
3: बिल्कुल सही बोला आपने, जो है वो एक कड़ी है जो कि मिसिंग थी।
2: बिल्कुल सर,
3: अभी एक और पॉलिसी आने हुए है जिसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड।
2: अच्छा,
3: अभी क्या है जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑल्दो जॉइंटमैनशिप में भी काम करते हैं
2: जी, जी।
3: लेकिन उनका अपना अपना एक रोल होता है, वॉर में भी अपना एक रोल होता है
2: जी,
3: वो अपने हिसाब से होता है। अभी एक नया कंसेप्ट ये आने वाला है कि थिएटर कमांड होगा।
2: अच्छा,
3: थिएटर कमांड का मतलब होगा कि जैसे एक एरिया है तो उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है, आर्मी एयरफोर्स जैसे भी है,
2: जैसा भी कॉम्बिनेशन
3: कॉम्बिनेशन है, वो एक ही कमांडर के अंडर में होंगे।
2: अच्छा,
3: नेचुरल है कि उसमें जो है रिएक्टिवेशन अच्छा रहेगा, रिएक्टिव टाइम कम होगा ठीक है
2: जी,
3: तो उसके लिए जो है इवन कॉमन लॉजिस्टिक्स नोट्स रहेंगे ठीक है, और मतलब यू कैन से कि जो थ्रेट है उसको डील करने की हमारी क्षमता जो है बहुत
2: बढ़ जाएगी
3: जी,
2: बिल्कुल सर।
3: तो वेरी सून वी विल फाइंड दिस कमिंग अप ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया फंक्शनिंग के हिसाब से
2: जी बनाए
3: जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो ज्वाइंट ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेस हैं, सेमिनार्स, एक्सरसाइज हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं।
2: बढ़ गई।
3: टेक्निकल इंटीग्रेशन जो है वो काफी हाई है। अभी जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि तीनों सर्विसेज को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है,
2: जोड़ता है।
3: आप भी जानती हैं एक और चीज है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा जो एक कंसेप्ट है
2: जी,
3: सेल्फ रिलायंस, उसने डिफेंस के ऊपर जो है उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आपने अपने अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम एक
2: निरातक की भूमिका में आ गए हैं सर।
3: बिल्कुल है ना,
2: तो कहां तो हम हथियार आयात करते थे सेना के लिए, आज हम यूज तो कर ही रहे, उनका निर्यात भी कर रहे हैं।
3: तो इंपोर्ट डिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स से जो है हम बिकम सेल्फ रिलायंस
2: जी, सेल्फ
3: रिलायंस, इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है हमारा बहुत बड़ा है
2: जी जी।
3: तो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है इसके तहत जो है हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं
2: जी,
3: उसमें जो है आत्मनिर्भरता का जो है फैक्टर जो है इमर्ज हुआ है। एंड जो हमारा नेशन है नाउ इट इज इमर्जिंग एज ए हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट
2: जी,
3: जहाँ हम बाहर से जो है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि मतलब इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
2: जी,
3: उसको अलाउ कर रहे हैं ठीक है। देन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनीज काफी आ गई हैं। एक और चीज है वो है जैसे डीआरडीओ जो हमारा है।
2: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि अंतरिक्ष में अनुसंधान जो है वो एक एक नया आयाम है। आकाश, धरती और जल तो था ही, अब एक अंतरिक्ष भी एक नया आयाम है जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
3: स्पेस
2: जी,
3: स्पेस
2: कमांड। हाँ जी, स्पेस के लिए
3: जिसके ऊपर आईएसआरओ काम करते
2: जी, इसरो काम करते हैं। तो सर इसका क्या उसमें भूमिका है हमारे सेना के लिए?
3: इसकी जो भूमिका है मतलब इन द सेंस यू सी द सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं
2: जी,
3: एंड नाउ वी हैव गॉट द डिफेंस सैटेलाइट्स
2: जी,
3: ठीक है, जो कि हमारे को डिफेंस पे मदद मिलती है
2: जी,
3: हमारे ऑपरेशन प्लानिंग्स पे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मदद मिलती है। एंड स्पेस इज गोइंग टू बी द न्यू एरिया
2: जी, वही
3: इन फ्यूचर
2: जी,
3: फ्यूचर वॉर का एरिया, एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी डोमिनेट दैट। ओके
2: जी,
3: उसी तरह इसमें भी काफी जो है प्रगति हुई है और चल रही है, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे डीआरडीओ से,
2: हाँ जी जी,
3: तो इसमें जो है काफी गवर्नमेंट ने एनकरेजमेंट दिया है, एनहांस फैसिलिटीज बढ़ाई है, एंड इवन दे प्रमोटेड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो क्षेत्र में काफी जो है प्रमोशन है। इवन अगर आप देखेंगे कि इनोवेशन जो होती है, आपने देखा होगा आजकल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा
2: प्रोत्साहन
3: दिया जाता है,
2: बिल्कुल।
3: तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस बोलते हैं, आईडेक्स बोलते हैं, जिसमें कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि डिफेंस से कनेक्टेड जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
2: जी,
3: और उनके लिए जितने नई टेक्नोलॉजीज हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देते हैं, और उसके कारण जो है काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है
2: जी।
3: जाहिर है कि इन सबसे जो है हमें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है,
2: बिल्कुल सर,
3: हमारे को मॉडर्नाइजेशन में मदद मिल रही है। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसके कारण अगर आप देखें तो आज काफी जो है इक्विपमेंट जो हम बाहर से लगवाते थे, जैसे अभी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट हुए हैं, कम्बैट हैप्टर्स हैं हमारे पास, मिसाइल सिस्टम्स तो खैर हमारा मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे है। रिसेंटली वी हैव टेस्टेड द अग्नि 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को, ICBM को हमने टेस्ट किया है, एंड नाउ वी आर गनिंग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के 5000 किलोमीटर रेंज में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच इज न्यूक्लियर केपेबल, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मारक क्षमता जो है
2: बहुत बढ़ जाएगी।
3: हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जो है इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, जिसका कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें मिसाइल सिस्टम्स को देखेंगे तो वी हैव डन अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। सिमिलरली लाइक इंडिजिनियसली बिल्ट सबमरीन्स हैं जो है इस समय, देन आवर केपेबिलिटीज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉरफेयर में काफी हद तक बढ़ गई है। ड्रोन्स के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, अभी तो इस टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है, हम देख भी रहे हैं यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा
2: जी,
3: है
2: बिल्कुल।
3: तो इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा अभी बढ़ा है
2: जी,
3: ये टेक्नोलॉजी को इतना जो है प्रमोट किया गया है कि इवन एट द बटालियन लेवल वी आर हैविंग
2: जी। ऑफ सिंदूर में तो हमने देखा सर इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ,
3: एंड मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बहुत अच्छी आई है जो मुझे लगती है कि जो हमारा स्मॉल आर्म्स एंड इक्विपमेंट है सोल्जर्स का,
2: हाँ जी,
3: उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। अभी लाइक हम AK-203 राइफल्स हमारे यहाँ बननी शुरू हुई, एंड बाकी भी जो है हमने जो इक्विपमेंट में जो बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है, जैसे जो रिमोट एरियाज हैं जैसे सियाचिन हो गया, कारगिल हो गया
2: जी,
3: वहाँ के लिए जैसे स्पेशल इक्विपमेंट है वो तैयार करना मौसम के अनुकूल, वहाँ पे रहने के लिए जो है शेल्टर्स जो है
2: जी,
3: वो हमने खुद
2: आधुनिक बनाना
3: जी, उसको किया है। और सिमिलरली लाइक कम्युनिकेशन एस्पेक्ट इट हैज टू चेंज्ड अ लॉट,
2: बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आए, आमूलचूल परिवर्तन है सर, संचार के कारण, मोबाइल के कारण।
3: आप कह सकते हैं मैं अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पे रहा हूँ मतलब जहाँ 6-6 महीने मेरी घर से कभी बात नहीं होती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि वो लोग अपने घर से रोज बात कर लेते हैं,
2: क्या बात है।
3: तो इट्स अ मेजर चेंज, एंड इससे क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन ने एक बहुत बड़ा बदलाव ये लाया है, नाउ इट हैज गॉट द वीडियो फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, तो कमांड एंड कंट्रोल एस्पेक्ट हैज गॉन अप वेरी हाई।
2: सूचना तेजी से मिल जाती है तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही भी उतनी ही तेजी से होती है,
3: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है तो रियल टाइम डिसीजंस जो है वो काफी जल्दी लिए जा सकते हैं, और उसी तरह से जो है हमारा एक्शन टाइम जो है हमारा काफी अच्छा है। We had done a major improvement, you see, in the transport also, जो पुरानी गाड़ियों के हिसाब से अभी जो है व्हीकल्स जो है FPV Caspian जैसे व्हीकल्स हैं जो कि माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स हैं एंड ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं अभी हमारे पास, तो there's a lot of improvement in this।
2: एक कार्य सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, रेल और सड़क, इसके निर्माण में भी सेना का, विशेष रूप से सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर,
3: बल्कि रादर सेना का डेवलपमेंट के लिए
2: जी
3: इनका होना बहुत बड़ा योगदान होगा,
2: बिल्कुल सर।
3: और उसमें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं कि हम जो बॉर्डर एरियाज को डेवलप करेंगे, जैसे सेला में टनल बनी है, सेला पास
2: जी, सेला पास।
3: तो जिसे तवांग जो है अरुणाचल वाला जो है वो एरिया वेस्ट कमांड का, वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया
2: जी, बहुत आसान।
3: अभी जोजिला में जो है टनल बन रही है, देन उसके बाद जो है रोहतांग पास के ऊपर जो है टनल, जिसने की मतलब बहुत ही मेजर चेंज लाया,
2: बिल्कुल।
3: नहीं तो लद्दाख यूज्ड टू गेट कट ऑफ फॉर सिक्स मंथ्स,
2: ठीक है,
3: ऐसी तवांग जो है मुश्किल हो जाता था एक वक्त में. एंड जैसे जो ब्रिजेस आए हैं, जो रोड डेवलपमेंट हुआ है, हमारा इवन ट्रेन्स जो है अभी श्रीनगर तक जा रहे हैं, उसके आगे तक जा रही है, तो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट विच हैड टेकन प्लेस.
2: तो सर, युद्ध और सीमा की सुरक्षा के अलावा जो सेना ये कार्य कर रही है उसका योगदान तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, सड़कों के रूप में या पुलों के रूप में या रेलवे के रूप में. खुद स्वयं सेना का योगदान है.
3: सेना को इससे फायदा हुआ है कि बनने से जो है हमारी जो मोबिलिटी बढ़ गई है
2: ना, जी,
3: तो उससे हमें फायदा हुआ है. जो सेना का एक अंग है, दैट इज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच इज BRO, ग्रेफ एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आती है, यस, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में.
2: जी,
3: जो है ऑफकोर्स उसमें जो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो फौज के होते हैं.
2: हाँ,
3: उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में, पुल्स बनाने में, दैट इज राइट. इन चीजों को अगर आप देखेंगे जो है, लाइक अभी बॉर्डर एरियाज पे यू फाइंड के जो एयरफील्ड्स हैं वो डेवलप हुए हैं, एडवांस एयर बेसिस हैं जो बॉर्डर एरियाज में है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इम्प्रूव है, रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा इम्प्रूव है. तो आई विल से कि जब हम 47 से देखा है और 2025 पे जब हम आते हैं तो हमें सिनेरियो पूरी तरह से चेंज
2: बदलाव मिलता है.
3: और ये सिर्फ आर्मी में नहीं है, जब हम नेवी की कभी जिक्र करते हैं या एयरफोर्स का भी जिक्र करते हैं तो उनका भी एडवांसमेंट उतना ही उस लेवल से बड़ा है. आज एयर डिफेंस, सर्विलेंस सिस्टम, आवर डोमिनेशन इन द सी, ठीक है, Our capabilities have gone up to very high level.
2: बहुत उच्च स्तर की है.
3: उच्च स्तर की है.
2: जी.
3: हमारे जो इतने फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर

0: जी,
1: जब से हम देखते आ रहे हैं, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। एंड आज भी जो ये इंडियन सोल्जर है, हमारे जो सोल्जर हैं, जो मतलब सतत खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए जो है, वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है,
0: बिल्कुल
1: सबसे महत्व रखते हैं। ये उनकी स्पिरिट है, देश प्रेम है जो है, मतलब दे आर द ड्राइविंग फोर्स जिसके कारण जो है देश की जो है सुरक्षा।
0: जी सर, तकनीक और हथियार अपनी जगह है, लेकिन सैनिक का जब तक साहस नहीं होगा तब तक तकनीक और हथियार भी कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, और उनका जो जज्बा है बलिदान का,
0: बिल्कुल
1: जो है
0: मातृभूमि के प्रति समर्पण,
1: मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण है वो मतलब ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माय कंट्री, ठीक है, देन कम्स एनीथिंग एल्स। वो जो जज्बा है, जब तक वो है तब तक कोई हमें हाथ नहीं लगा।
0: स्वयं से पहले सेवा,
1: बिल्कुल स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। आज जो भी कुछ हम है, I must say it is because of the bravest of the braves, all those people who had contributed so much to for the country, people like Major Somnath Sharma, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekho, Captain Mahendra Mula, and Captain Vikram Batra, bravest of the braves, and aur bhi bahut jitne hain का हमने इन सब का जिक्र भी किया था अपनी पूरी सीरीज में।
0: हम पिछली कड़ियों में इन सबको हमने कभी भी भुलाया नहीं है, और हर एक को याद करने का अपने इस कार्यक्रम में प्रयास किया
1: जी। और इसके अलावा भी जो हर वो जवान जिसने जो है इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए तो उनके सामने हम नतमस्तक हैं।
0: बिल्कुल सर, ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी ये जो सोल्जर्स हैं, इन्हीं के कारण जो है हमारा देश हमेशा जो है स्ट्रांग रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
0: बस सर, यही भावना हमारी भी है, और इसी भावना से प्रेरित एक गीत है, कुछ पंक्तियां हैं सर, वो मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगी कार्यक्रम में अंत में। मन समर्पित, तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, इस आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। तो श्रोताओं, हम भी अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धांजलि देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को सर्वप्रथम रखकर अपना सर्वस्व बलिदान दिया, और हम आभारी हैं हमारी सेना और हमारे सैनिकों को जो हमें हमारी स्वतंत्रता का हमेशा आभास कराते रहते हैं। आज की कड़ी और इस कार्यक्रम को भी अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने भारतीय सेना के बारे में, हम जैसे आम नागरिकों को इतनी अच्छे से सेना के बारे में समझाया और बताया कि हमारे जीवन में सेना का क्या महत्व है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वेलकम, एंड इनफैक्ट आई मस्ट से थैंक्स टू यू दैट एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू शेयर द व्यूज। थैंक यू वेरी मच, एंड सैल्यूटिंग ऑल द सोल्जर्स। जय हिंद।
0: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन रहा अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज हमने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, और इनसे बातचीत कर रही थी पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL यानी एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले दो एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे माझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे संस्थान भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत बना रहे हैं। माझगांव डॉक ने हमें विशाल युद्धपोतों और पनडुब्बियों की दुनिया दिखाई, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने ये बताया कि कैसे एक छोटे कारखाने से शुरू होकर कोई संस्था देश के अग्रणी शिपयार्डों में स्थान बना सकती है।
1: लेकिन भारत की समुद्री सुरक्षा की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। आज दादू और रुचि पहुंच रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर, जहां जुआरी नदी की शांत लहरों के किनारे खड़ा है एक ऐसा शिपयार्ड जिसने छोटे बार्ज निर्माण यार्ड से शुरू होकर आधुनिक युद्धपोत निर्माण की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं गोवा और जानते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की कहानी। दादू।
0: हाँ बेटा।
1: कितनी सारी छुट्टियां हमने गोवा में बिता ली है ना। और कितनी सारी जानकारी आपने मुझे दी है अब तक।
0: हाँ बिल्कुल दी है
1: दादू, थैंक यू सो मच आप जो मेरे साथ हैं।
0: वो तो मैं हमेशा साथ हूँ बेटा।
1: अच्छा दादू, अब तक आपने दो बड़े शिपयार्डों के बारे में मुझे बताया, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है दादाजी, कि इन दोनों में अंतर क्या है।
0: देखो रुचि बेटा, माझगांव डॉक मुख्य रूप से बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पूर्वी भारत का प्रमुख शिपयार्ड है, जिसने अनेक युद्धपोत, गश्तीपोत और इंजीनियरिंग समाधान विकसित किए हैं। और एक है गोवा शिपयार्ड, ये तेज आधुनिक और अत्याधुनिक गश्तीपोतों और खास नौकाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
1: मतलब तीनों संस्थान अलग अलग प्रकार से भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल की शक्ति बढ़ाते हैं दादू। इसका तो ये मतलब हुआ कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, उनके पीछे हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक भी देश के रक्षक होते हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बिटिया, और गोवा शिपयार्ड जैसी संस्थाएं हमें सिखाती हैं कि यदि दृष्टि बड़ी हो और प्रयास निरंतर हो, तो एक छोटा सा यार्ड भी राष्ट्र की तरक्की में अहम योगदान दे सकता है।
1: सही कहा आपने दादाजी, किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ये यार्ड दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा।
0: सोचो बेटा कि समय का पहिया पीछे घूम रहा है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले यहाँ कोई विशाल शिपयार्ड नहीं था, ना आधुनिक मशीनें थी, ना विशाल क्रेन, ना कंप्यूटर, केवल एक छोटा सा यार्ड था जहाँ कुछ लोग साधारण नावों और बार्जों पर काम करते थे।
1: कितनी अलग दुनिया होती होगी ना तब दादाजी, इतने बरस पहले। अच्छा ये बताइए ना, क्या कोई प्रेरणादायक कहानी आपको याद आ रही है।
0: हाँ बिल्कुल, चलो आज वही सुनाता हूँ। एक नदी जुआरी जो सदियों से बह रही है।
1: जुआरी नदी?
0: हाँ हाँ, पहले सुन तो लो बच्चे। उसने व्यापारियों को आते जाते देखा।
1: अच्छा।
0: जाने कितनी नावों, जहाजों को देखा, लेकिन एक दिन उसके किनारे एक छोटा सा यार्ड बना। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहीं से भारत की समुद्री शक्ति के नए अध्याय लिखे जाएंगे। आज ये नदी देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उसी यार्ड की कहानी की गवाह है।
1: शांत जल, ठंडी हवा और सामने दूर तक फैला हुआ शिपयार्ड, और पास ही आपकी जुआरी नदी।
0: हाँ बेटा, ये जुआरी नदी गोवा की जीवन रेखा है, और इसी नदी के किनारे खड़े इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हम संक्षेप में GSL कहते हैं।
1: अच्छा दादू, ये बार्ज क्या होता है?
0: बार्ज बेटा एक प्रकार का जलयान होता है, जिसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा यार्ड एक दिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्डों में गिना जाएगा।
1: अच्छा दादू, आपने मुझे पहले बताया था कि गोवा कभी पुर्तगाल के अधीन था, अब ये बताइए कि ये भारत का हिस्सा कब बना?
0: ये बना बेटा सन 1961 में, जब गोवा मुक्ति अभियान सफल हुआ और गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। ये केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बच्चे, ये विकास की नई शुरुआत भी थी।
1: विकास की नई शुरुआत? वो भला कैसे?
0: देखो बेटा, देश की नीति निर्माताओं ने समझ लिया था कि अब भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उस समय बेटा पश्चिमी तट पर एक सक्षम शिपयार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तभी गोवा में मौजूद छोटे यार्ड की क्षमता को पहचाना गया और यहीं से भविष्य के गोवा शिपयार्ड की नींव मजबूत होने लगी।
1: दादू, क्या तब भी इसका नाम गोवा शिपयार्ड ही था?
0: नहीं नहीं बेटा, उस समय इसका नाम था एस्टेलेरोस नावाइस डी गोवा।
1: दादू, ये नाम तो काफी अलग लगता है।
0: हाँ हाँ, ये नाम बेटा पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाता था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप भी बदला और नाम भी। भारत सरकार ने इसे विकसित किया, आधुनिक बनाया और धीरे धीरे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बन गया।
1: दादू, किसी भी संस्था का विकास केवल इमारतों से नहीं होता होगा, उसके पीछे कई लोगों के सपने होते होंगे ना?
0: हाँ बेटा, ये बात पूरी तरह सही है। किसी भी संस्था का विकास किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कई लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। अगर शिपयार्ड की बात करें तो इसके विकास के पीछे कई इंजीनियरों की मेहनत होती है, तकनीशियनों की मेहनत होती है, उनका कौशल होता है और भविष्य की स्पष्ट योजना होती है।
1: यानी गोवा शिपयार्ड का विकास धीरे धीरे हुआ होगा। हर साल इसमें नई सुविधाएं जुड़ती गईं, नई नई मशीनें आईं, नई नई तकनीकें अपनाई गईं और यार्ड का आकार बढ़ता गया।
0: हाँ बेटा, और यही स्थायी विकास का सही तरीका होता है।
1: दादू, ये बार बार जुआरी नदी का नाम आ रहा है, क्या इस नदी ने भी शिपयार्ड के विकास में कुछ भूमिका निभाई है?
0: बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बेटा। देखो, जहाज निर्माण केवल फैक्ट्री के अंदर होने वाला काम नहीं है, जहाज को पानी तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ज्वारी नदी ने ये सुविधा प्रदान की। ये नदी अरब सागर से जुड़ती है, इसलिए यहाँ बने जहाज आसानी से समुद्र तक पहुँचते हैं।
1: मतलब ये नदी शिपयार्ड के लिए एक प्राकृतिक जल मार्ग जैसी है, जैसे हुगली नदी थी।
0: बिल्कुल, इसलिए किसी भी शिपयार्ड का स्थान चुनते समय जल मार्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन केवल स्थान ही नहीं, समय के साथ जहाज निर्माण की तकनीक भी बदलती गई और गोवा शिपयार्ड ने खुद को उसी के अनुरूप उसके मुताबिक विकसित किया।
1: दादू, आधुनिक शिपयार्ड बनाने के लिए क्या बदलाव किए गए थे?
0: बहुत कुछ बदलाव किए गए बेटा। पहले जहां हाथ से ड्राइंग बनती थी, वहां अब CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग होने लगा। जहां उत्पादन में अधिक समय लगता था, वहां आधुनिक मशीनें आ गईं। और जहां सारी जानकारी कागजों पर रखी जाती थी, वहां अब ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया।
1: सो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए, ये ERP क्या करता है?
0: मान लो किसी जहाज के निर्माण में हजारों पुर्जे लगने,
1: ठीक है,
0: किस पुर्जे की जरूरत कब होगी, कहां से आएगा, किस विभाग से जाएगा, कब उपयोग होगा, इन सब का प्रबंधन ERP सिस्टम आसानी से कर सकता है।
1: अच्छा दादू, मैंने अक्सर कंपनियों के नाम के साथ ISO प्रमाणन लिखा देखा है, इसका क्या महत्व होता है?
0: बहुत महत्व होता है। गोवा शिपयार्ड ने गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया है।
1: इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे कई महत्वपूर्ण ISO प्रमाणन प्राप्त हुए होंगे।
0: हाँ हाँ बेटा, एक संस्था केवल उत्पाद बनाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि काम की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।
1: अच्छा दादू, ये बताइए ना, आज के समय में GSL की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
0: बेटा, इसकी आधुनिक सुविधाएं, विश्व स्तरीय CAD CAM प्रणाली, उन्नत डिजाइन सेंटर, स्टील और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता और लगातार अनुसंधान एवं विकास पर दिया जाने वाला ध्यान।
1: मतलब यहाँ केवल जहाज नहीं बनते, नई नई तकनीकें भी विकसित होती हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि GSL भारत के उन चुनिंदा शिपयार्डों में शामिल है जिनके पास अपनी इन हाउस डिजाइन क्षमता है, यानी कई जहाजों की रूपरेखा और डिजाइन तैयार करने का काम भी यहीं किया जाता है।
1: अब समझ में आ रहा है दादू मुझे कि GSL समय के साथ केवल बड़ा ही नहीं हुआ बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ता गया है।
0: बिल्कुल बेटा, यही निरंतर विकास किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान होता है।
1: दादू, जितना मैं सुनती जा रही हूँ ना, उतना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए ना, एक छोटा बार्जियार्ड, फिर गोवा मुक्ति, फिर विकास, फिर आधुनिक तकनीक और आज राष्ट्रीय महत्व का शिपयार्ड। ये यात्रा सचमुच बहुत प्रेरणादायक सी लगती है दादाजी।
0: बिल्कुल प्रेरणादायक यात्रा है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। कोई भी संस्था जन्म से महान नहीं होती, वो अपने निरंतर प्रयासों, सीखने की इच्छा और दूरदर्शिता से महान बनती है।
1: अच्छा दादू, एक छोटे से यार्ड ने ऐसे कौन कौन से जहाज बनाए जिनसे उसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में हो गई?
0: बेटा, किसी भी शिपयार्ड की सफलता को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक जहाज बनता कैसे है। जब हम ये प्रक्रिया समझ लेंगे तब GSL की उपलब्धियाँ भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी।
1: हाँ दादू, सही कहा आपने। ये भी एक रोचक बात है कि आखिर एक जहाज का निर्माण कहाँ से शुरू होता है।
0: बिटिया, अधिकतर लोग जब किसी युद्धपोत को देखते हैं तो उन्हें केवल उसका विशाल आकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में किसी भी जहाज का निर्माण स्टील से पहले अभियंताओं के दिमाग में शुरू होता है।
1: दिमाग में?
0: और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, याद करो। हर जहाज पहले एक विचार होता है। क्या होता है?
1: सही कहा दादाजी।
0: फिर वो कागज पर उतरता है, उसके बाद कंप्यूटर पर उसका डिजाइन तैयार होता है और अंत में वो वास्तविक रूप लेकर शिपयार्ड में बनता है।
1: तो दादाजी, क्या यही इसका सबसे पहला चरण होता है?
0: नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले नौसेना, तटरक्षक बल या ग्राहक इसे अपनी जरूरत बताता है, यानी जहाज कितनी गति से चलेगा, कितने दिन समुद्र में रह सकेगा, उस पर कितने लोग कार्य करेंगे, कौन कौन से उपकरण लगाए जाएंगे, उसका उपयोग गश्त, बचाव अभियान या युद्ध के लिए होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद डिजाइन प्रक्रिया शुरू होती है
1: और यहीं पर CAD काम आता है।
0: बिल्कुल, शाबाश। हाँ, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करना। सालों पहले हाथ से बड़ी बड़ी ड्राइंग बनती थी बेटा, लेकिन आज कंप्यूटर पर जहाज का पूरा त्री आयामी मॉडल तैयार किया जाता है।
1: हाँ दादू, जिसे हम लोग 2D 3D कहते हैं।
0: हाँ हाँ, जिसमें दिखाई देता है उसका हर कमरा, हर पाइप, हर केबल, हर इंजन, यहाँ तक कि किसी तकनीशियन के चलने की जगह भी दिखाई दे जाती है।
1: अच्छा दादाजी, और ये CAM ये क्या है?
0: CAM का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से निर्माण करना।
1: सो तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है?
0: जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब वही जानकारी आधुनिक मशीनों को भेज दी जाती है। मशीनें उसी के अनुसार स्टील काटती है, छेद बनाती है, भागों को आकार देती है। इससे समय भी बचता है और सटीकता भी बढ़ती है।
1: दादू, क्या इसके लिए वाकई में इतनी सटीकता आवश्यक होती है?
0: तुम्हारी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बेटा। कल्पना करो कि हजारों स्टील प्लेटें आपस में जुड़कर एक युद्धपोत बनाती हैं। यदि किसी एक

0: स्तर और नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दादाजी, क्या इन्हीं सब से जहाज कंट्रोल होता है?
1: एक तरह से हाँ बेटा, आधुनिक जहाजों में एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम होता है। ये जहाज का नियंत्रण केंद्र होता है, यहीं से जहाज की दिशा, गति, मार्ग और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।
0: मतलब ये बिल्कुल कार चलाने जैसा होता है?
1: हाँ, मतलब थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहाज को चलाना कहीं अधिक जटिल होता है बेटा। समुद्र में कोई सड़क नहीं होती है, कोई लेन नहीं होती, इसलिए कप्तान को रडार, जीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट और संचार प्रणालियों की सहायता लेनी पड़ती है।
0: दादू, ये रडार आखिर काम कैसे करता है?
1: रडार बेटा रेडियो तरंगे भेजता है। जब ये तरंगे किसी जहाज, द्वीप या अन्य वस्तु से टकराती है तो वापस लौटती है। कंप्यूटर इन संकेतों का विश्लेषण करके वस्तु की दूरी और दिशा बता देता है, और इसी कारण रात, कोहरे या खराब मौसम में भी जहाज सुरक्षित रूप से मार्ग तय कर सकता है।
0: मतलब रडार समुद्र में जहाज की आंखों जैसा है।
1: बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही।
0: दादू, आज के जहाज पहले के जहाजों से बहुत अलग है।
1: बहुत अलग। पहले जहाजों में ज्यादातर यांत्रिक प्रणालियां होती थी बेटा। आज डिजिटल नेविगेशन, आधुनिक रडार, उपग्रह संचार, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और उन्नत सेंसर लगाए जाते हैं। यानी आधुनिक जहाज केवल समुद्र में चलने वाले पोत नहीं है, बल्कि तैरते हुए तकनीकी केंद्र बन चुके हैं बेटा।
0: और जीएसएल भी इसी बदलाव का हिस्सा है?
1: हाँ बिटिया, इसीलिए जीएसएल केवल जहाज नहीं बना रहा, बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री तकनीक को भी आकार दे रहा है।
0: दादू, आजकल स्टेल्थ शब्द भी बहुत सुनाई देता है, इसका क्या मतलब होता है?
1: स्टेल्थ का अर्थ है ऐसी तकनीक जिससे युद्धपोत दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई ना दे। इसके लिए जहाज की बाहरी बनावट, उसके कोण और कई विशेष पदार्थों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि रडार की तरंगें कम परावर्तित हो। इससे दुश्मन के लिए उसकी सही पहचान करना कठिन हो जाता है।
0: यानी ये युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो रहता है, लेकिन दुश्मन को उसका पता आसानी से नहीं चलता।
1: हाँ बेटा, यही कारण है कि आधुनिक नौसेनाओं में स्टेल्थ तकनीक को बहुत महत्व दिया जाता है। कई नए भारतीय युद्धपोत भी इसी सोच के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं।
0: दादू, इतने बड़े युद्धपोत में रडार, कंप्यूटर, संचार प्रणाली और इतने सारे उपकरण चलते रहते हैं, इन्हें बिजली कहाँ से मिलती है?
1: बिल्कुल सही सवाल है बेटा। युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता बिजली घर होता है बेटा।
0: ऐसा?
1: उसमें शक्तिशाली डीजल जनरेटर लगाए जाते हैं जो लगातार बिजली पैदा करते हैं। इसी बिजली से रडार, संचार प्रणाली, कंप्यूटर, प्रकाश व्यवस्था, हथियार प्रणालियां और अनेक अन्य उपकरण चलाए जाते हैं। आजकल कई आधुनिक युद्धपोतों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी होती है जो जरूरत के अनुसार बिजली का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है।
0: वाह दादू, यानी समुद्र के बीच भी पूरा जहाज अपने दम पर चलता है।
1: हाँ बेटा, इसलिए युद्धपोत को समुद्र में कई दिनों या कई सप्ताह तक किसी बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती।
0: अच्छा दादू, समुद्र में जब ज्वार आते हैं तब तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब इतना विशाल जहाज पलटता नहीं है?
1: देखो बेटा, यही तो नौसेना वास्तुकला यानी नेवल आर्किटेक्चर का कमाल है। जहाज का भार, उसकी चौड़ाई, गहराई और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का बहुत सावधानी से निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा बेटा, जहाज के भीतर विशेष बैलास्ट टैंक बनाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है और वो ऊंची लहरों में भी स्थिर रहने की कोशिश करता है।
0: यानी युद्धपोत को तैराने और संतुलित रखने के पीछे केवल ताकत ही नहीं, बल्कि गहरा विज्ञान भी काम करता है।
1: बिल्कुल बेटा, इसलिए जब हम किसी युद्धपोत को समुद्र में सहजता से आगे बढ़ते देखते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों वैज्ञानिकों, अभियंताओं और डिजाइनरों की वर्षों की मेहनत छिपी होती है। युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता, बल्कि विज्ञान, तकनीक और भारतीय प्रतिभा का अद्भुत संगम होता है।
0: सो तो है दादाजी।
1: बिल्कुल बढ़िया। समुद्र में तैरता हुआ हर जहाज इंजीनियरिंग, गणित भौतिकी और तकनीक का अद्भुत तालमेल होता है।
0: दादू, जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब क्या होता है?
1: फिर शुरू होती है स्टील कटिंग। विशाल स्टील प्लेटें शिपयार्ड में लाई जाती हैं, उन्हें साफ किया जाता है, उन पर खास कोटिंग की जाती है, फिर कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें उन्हें जरूरी आकार में काटती हैं।
0: तो दादू, क्या पूरा जहाज एक साथ बनाया जाता है?
1: नहीं नहीं बेटा, यही सबसे रोचक बात है। जहाज छोटे छोटे ब्लॉकों में बनाया जाता है, जैसे बच्चे खिलौनों के ब्लॉकों से घर बनाते हैं ना, फिर इन्हीं विशाल ब्लॉकों को जोड़कर जहाज बनाया जाता है।
0: पर दादू, इन ब्लॉकों को जोड़ा कैसे जाता है?
1: वेल्डिंग द्वारा। वेल्डिंग जहाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है बेटा। एक मजबूत वेल्ड हजारों टन के जहाजों को मजबूती प्रदान करती है।
0: दादू, जीएसएल खासतौर पर गश्ती पोतों के लिए प्रसिद्ध क्यों है?
1: क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञता विकसित की है। गश्ती पोत या पेट्रोल वेसल ऐसे जहाज होते हैं जो समुद्री सीमाओं की निगरानी करते हैं, तस्करी रोकते हैं, खोज और बचाव अभियान चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की सहायता भी करते हैं।
0: तो क्या ये युद्ध पोतों से छोटे होते हैं?
1: लेकिन ये बेहद तेज और चुस्त होते हैं बेटा। इनमें आधुनिक रडार, संचार प्रणाली और नेविगेशन उपकरण लगाए जाते हैं।
0: दादू, मैंने पढ़ा था कि जीएसएल स्टील और एल्यूमिनियम दोनों प्रकार के जहाज बनाता है, क्या ये बात सच है?
1: हाँ सच है, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। स्टील मजबूत होता है जबकि एल्यूमिनियम हल्का होता है। हल्का जहाज अधिक गति हासिल कर सकता है, इसलिए जहाज के उपयोग के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है।
0: दादू, आपने कहा था कि जीएसएल की अपनी डिजाइन क्षमता है, कहा था कि नहीं?
1: हाँ हाँ बेटा कहा था।
0: तो फिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
1: क्योंकि हर देश की जरूरतें अलग अलग होती हैं। यदि जहाजों का डिजाइन भी अपने देश में ही विकसित किया जाए तो विदेशी निर्भरता कम होती है, साथ ही जरूरत के मुताबिक नए बदलाव भी आसानी से किए जा सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
0: दादू, क्या जीएसएल में अनुसंधान भी होता है?
1: हाँ बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास किसी भी आधुनिक संस्थान की आत्मा होता है। यही नई तकनीकें विकसित होती हैं, नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के समाधान भी खोजे जाते हैं।
0: दादू, ये कितना सही है कि आज का विद्यार्थी ही कल का जहाज डिजाइनर, नौसेना वैज्ञानिक या समुद्री अभियंता बन सकता है।
1: देखो बिटिया, एक आधुनिक शिपयार्ड वास्तव में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय जैसा होता है, जहाँ हर दिन कुछ नया सीखा और बनाया जाता है।
0: दादू, इसका मतलब यही कारण है कि जीएसएल अन्य कई शिपयार्डों से थोड़ा अलग दिखाई देता है।
1: तुमने बिल्कुल सही समझा बेटा। जहाँ अधिकांश लोग इसे केवल जहाज निर्माण से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रशिक्षण, सिमुलेशन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: दादू, ये सिमुलेशन क्या होता है?
1: मान लो कोई नौसैनिक पहली बार समुद्र में जा रहा है, क्या उसे सीधे तूफान के बीच भेज देना चाहिए?
0: ना ना बाबा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा दादाजी।
1: ठीक यही कारण है कि सिमुलेटर बनाए जाते हैं। सिमुलेटर ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ वास्तविक परिस्थितियों जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें, आग लगने की स्थिति, पानी भरने की स्थिति और आपातकालीन बचाव अभियान, इन सब का अभ्यास पहले से ही कराया जाता है।
0: मतलब जैसे एरोप्लेन के पायलट पहले फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं?
1: बिल्कुल वैसा ही बेटा। और जीएसएल ने ऐसे कई विशेष प्रशिक्षण सिमुलेटर विकसित किए हैं।
0: दादू, यदि समुद्र में जहाज को नुकसान पहुंच जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाता है?
1: उसके लिए नौसैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चे। जीएसएल द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर एशिया में अपनी तरह की अनूठी सुविधाओं में से एक माना जाता है।
0: और इसमें होता क्या है?
1: कल्पना करो कि किसी जहाज में आग लग गई है, ठीक है? अब उसके किसी हिस्से में पानी भरने लग गया है। नौ सैनिकों को तुरंत निर्णय लेना होता है कहाँ जाना है, किस वाल्व को बंद करना है, किस उपकरण का उपयोग करना है। ये सब प्रशिक्षण इसी प्रकार के सिम्युलेटर में कराया जाता है।
0: समझ गए दादू। अच्छा, आपने एक बार ONGC के लिए भी किसी विशेष सुविधा का उल्लेख किया था।
1: हाँ हाँ बेटा, ये सुविधा समुद्र के बीच तेल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। समुद्र शांत हो तो काम आसान लगता है, लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा।
0: सही कहा दादू आपने, कभी तूफान आ जाता है, कभी ऊंची लहरें उठने लगती हैं, और कभी अचानक आपात स्थिति पैदा हो जाती है।
1: और ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए GSL ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा विकसित की है।
0: समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा, ये क्या है दादू?
1: हाँ हाँ बेटा, यहाँ कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि संकट की स्थिति में स्वयं को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है, लाइफ जैकेट का उपयोग कैसे करना है, लाइफ राफ्ट तक कैसे पहुंचना है, समुद्र में गिर जाने पर क्या करना है, और बचाव दल आने तक धैर्य कैसे बनाए रखना है।
0: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, ये GSL का संबंध विमानों से भला कैसे जुड़ गया?
1: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। गोवा में स्थित INS हंसा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक वायु स्टेशन है। यहाँ नौसेना के विमान और पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। GSL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से एक विशेष शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी के निर्माण में योगदान दिया।
0: शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी?
1: हाँ हाँ, विमान वाहक पोत पर विमान उतारना और उड़ाना दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक माना जाता है बेटा।
0: सो तो है।
1: इसलिए पहले जमीन पर ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो विमान वाहक पोत जैसा महसूस हो। यही पायलट अभ्यास करते हैं, फिर वास्तविक समुद्री अभियानों में भाग लेते हैं।
0: वाव दादू, मतलब GSL ने केवल जहाज ही नहीं बनाए बल्कि नौसैनिक पायलटों के प्रशिक्षण में भी बड़ा योगदान दिया है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा दादू, आपने बताया था कि गोवा शिपयार्ड में आधुनिक शिप लिफ्ट सुविधा भी है, ये क्या होती है?
1: ये बहुत रोचक तकनीक है बिटिया। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत में लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है ना, वैसे ही शिपलिफ्ट विशाल जहाजों को पानी से बाहर निकालने और वापस पानी में उतारने का काम करती है।
0: इतने बड़े जहाज को दादू लिफ्ट कैसे उठा सकती है?
1: अरे बुद्धू, शिपलिफ्ट साधारण लिफ्ट थोड़ी होती है। ये स्टील के विशाल प्लेटफॉर्म, शक्तिशाली मोटरों और कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से संचालित होती है। जब जहाज प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाता है तब कई सिंक्रोनाइज्ड विंच और केबल एक साथ काम करते हैं और पूरे जहाज को धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं।
0: लेकिन दादू, जहाज को पानी से बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
1: अरे बेटा, जहाज के निचले हिस्से की मरम्मत, पेंटिंग, निरीक्षण और रखरखाव पानी के भीतर नहीं किया जा सकता, इसलिए समय समय पर उसे बाहर निकालना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: पहले इसके लिए मुख्यतः ड्राई डॉक का उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक इस प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाती है।
0: तो इससे भी समय की बचत होती होगी।
1: हाँ, जहाज को अपेक्षाकृत कम समय में उठाया जा सकता है। इसके बाद उसे विशेष रेल प्रणाली या ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरम्मत क्षेत्र तक ले जाया जाता है। इससे एक ही समय में कई जहाजों पर काम करना संभव हो जाता है।
0: अब समझ में आया दादू मुझे कि जहाज बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उन्हें वर्षों तक सुरक्षित और सक्षम बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
1: तभी तो बिटिया, और यही काम आधुनिक शिपलिफ्ट जैसी तकनीकें आसान बनाती हैं।
0: दादू, ये GSL और किस तरह के जहाज बनाता है?
1: इसने तेज गति वाली इंसेप्टर बोट्स भी बनाई हैं। इनका उपयोग तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कोई संदिग्ध नाव समुद्री सीमा में प्रवेश करे तो यही बोट्स तुरंत उसका पीछा कर सकती है।
0: मतलब ये समुद्र की पुलिस कार जैसी होती है।
1: बिल्कुल सही तुलना की तुमने बेटा।
0: दादू, इतने वर्षों की यात्रा के बाद GSL का भविष्य कैसा दिखता है?
1: बहुत उज्जवल बेटा। आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में GSL जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: हाँ दादाजी, सही कहा आपने। भविष्य में भारत को अधिक आधुनिक गश्ती पोतों, तेज इंटरसेप्टर नौकाओं, विशेष प्रशिक्षण प्रणालियों और नई समुद्री तकनीकों की जरूरत होगी और इन सब के विकास में GSL महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: हाँ बेटा, भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्मार्ट सेंसर का उपयोग और बढ़ेगा। जहाज अपने कई कार्य स्वयं कर सकेंगे। ऊर्जा दक्षता बहुत बेहतर होगी। पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग बढ़ता जाएगा और संभव है कि कुछ विशेष जहाजों में मानव हस्तक्षेप पहले की तुलना में बहुत कम रह जाए।
0: दादाजी, यानी समुद्र की दुनिया भी तेजी से बदल रही है।
1: हाँ बिटिया, और GSL जैसे संस्थान उसी भविष्य की तैयारी आज से कर रहे हैं। ज्वारी नदी के किनारे शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है बेटा। और शायद इसी कारण GSL केवल एक शिपयार्ड नहीं बल्कि भारत की समुद्री भविष्य का निर्माता भी है।
0: चलिए दादाजी, अब अपन घर चलते हैं। आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ।
1: अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह वाह, चलो चलो चलो चलो।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज बात हो रही थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL की, एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं भगवती सक्सेना
1: और मैं दीपक नेमा।
0: सुनते रहिए आपका अपना रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

देश के संस्थान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। हमारा अगला कार्यक्रम है हिंदोस्तान हमारा। इस कार्यक्रम में आज की कड़ी रानी अवंतीबाई को समर्पित है।

0: दोस्ता हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: आजादी के संघर्ष के पन्नों पर अंकित इतिहास के आख्यानों में रानी अवंतीबाई का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अवंतीबाई मध्य प्रदेश के मंडला जिले की रामगढ़ रियासत की महारानी थीं। उन्होंने अपनी रियासत से ब्रिटिश कोर्ट ऑफ वार्ड के अधिकारियों को निकालकर स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया और जुलाई 1857 में सुहागपुर को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद करके रामगढ़ रियासत का हिस्सा बना लिया। एक महिला से मिली करारी हार से अंग्रेज हुक्मरान तिलमिला उठे और उन्होंने कैप्टन वाशिंगटन के नेतृत्व में एक विशाल सेना को अवंतीबाई से युद्ध करने के लिए भेज दिया। अंग्रेजी सेना को एक बार फिर महारानी की तलवार की ताकत का अंदाजा हो गया। अपनी हार के कलंक को माथे से मिटाने के लिए अंग्रेज सेना ने महारानी पर कई हमले किए, मगर हर बार उन्हें शिकस्त ही मिली। रानी का अंग्रेजों के साथ आखिरी मुकाबला अप्रैल 1858 में देवागढ़ की पहाड़ियों में हुआ, जहां अंग्रेज सेना ने उन्हें तीन तरफ से घेर लिया। बहादुरी पूर्वक जूझते हुए रानी अंग्रेजों का मुकाबला कर ही रही थी कि पीछे से अंग्रेज समर्थक रीवा राज्य की सेना ने भी रानी पर हमला बोल दिया। चारों ओर से दुश्मनों से घिरी वीरांगना को जब जीत की कोई उम्मीद न दिखाई दी तो उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना रक्ताभिषेक करके प्राण त्याग दिए। रानी के शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने सुहागपुर रीवा महाराज को इनाम में दे दिया और इस तरह इस देश के उच्च कोटि के राष्ट्रभक्तों में एक नाम और जुड़ गया।

0: राम राम काका।
1: हाँ राम राम राम राम। आओ बेटा आओ आओ।
0: जिंदाबाद काका।
1: अरे हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद।
2: छोटू बेटा जरा यहाँ संभाल तो, और चाय लगा भैया लोगों के लिए, मैं उनके पास ही बैठता हूँ, जरा बात भी करनी है, खास लोग हैं मेरे।
3: हो काका हो, मैं देखता हूँ।
2: चल दिनेश चल, तू भी चल, तुझसे मिलवाता हूँ, अच्छे लड़के हैं, नाटक करते हैं, आजकल स्वतंत्रता संग्राम पर बड़े अच्छे नाटक कर रहे हैं।
4: अच्छा काका, तब तो मिलना ही पड़ेगा, मैं तो समझता था कि इस नई नस्ल का मैं ही अकेला अगुवा हूँ।
0: आइए काका बैठिए।
2: अरे बैठो भाई, तुम लोग बैठो, खड़े क्यों होते हो, और सुनाओ कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो?
0: ठीक है काका, बस कॉलेज से छूट कर चले आ रहे हैं।
2: तो खूब पढ़ाई चल रही है आजकल?
0: खूब कहाँ काका, बस चल रही है, अपना मन तो आजकल नाटक की तरफ ही ज्यादा लगता है। वैसे काका उस दिन का नाटक अच्छा लगा?
2: बहुत मजा आया। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, इससे मिलो, ये दिनेश है मेरा भतीजा, कॉलेज में पढ़ता है, दो कदम आगे है अपन से।
0: अच्छा वो कैसे?
2: अरे हम तुम तो स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखते हैं, पर इसका तो काम ही ये है, पूरा ग्रंथ लिख रहा है उन पर, तो क्या कहते हैं उसे, हाँ PhD कर रहा है।
0: PhD? अरे वाह दिनेश भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो अभी किसके ऊपर काम कर रहे हो दिनेश?
4: रानी अवंती बाई का चैप्टर चल रहा है।
0: नाम तो काफी सुना है, शायद रायपुर विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है ना?
4: हाँ ठीक कहा आपने
0: भाई, तो आज तो कुछ सुने बिना नहीं छोड़ेंगे हम तुमको।
4: अरे मैं क्या सुना पाऊंगा?
0: अरे अवंती बाई के बारे में ही सुनाओ ना यार। अरे नहीं नहीं दिनेश भैया, कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा, ऐसे मामले में किसी को छोड़ते नहीं हम।
4: ठीक, पर मेरी भी एक छोटी सी शर्त है, आप लोग स्वतंत्रता संग्राम पर होने वाले नाटकों की खबर मुझे जरूर करेंगे।
0: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, काका का शौक देख के ये तो हमारे परमानेंट दर्शक बन ही गए, तुम्हें भी काका ही बता दिया करेंगे, क्यों काका?
2: अरे भाई हमेशा ही कहता हूँ कि मैं तो ऐसे काम के लिए डेढ़ पांव से आगे रहता हूँ।
4: असल में रानी अवंतीबाई मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी, ये वो वीरांगना थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अवंतीबाई मनकेड़ी गांव में पैदा हुई थी, यहीं अपने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। वो झुझार सिंह और कृष्णाबाई की बेटी थी, ये लोग लोधी जाति के बहुत संपन्न परिवार से थे।
0: वो रामगढ़ क्या शादी के बाद आई थी?
4: हाँ बिल्कुल ठीक, खरमेर नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है रामगढ़, यही अपने मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। इसी गांव का राजा था विक्रमाजी, जिससे रानी अवंतीबाई का विवाह हुआ था। दुर्भाग्य से बहुत कम समय में ही राजा की मानसिक हालत कुछ खराब हो गई। उस वक्त उनके दोनों बेटे बहुत छोटे थे, इस हालत में रानी को ही राज्य का कामकाज संभालना पड़ा। उधर अंग्रेज ताक में ही थे, वो रामगढ़ पर अपनी मोहर लगाना चाहते थे।
5: सर, द बॉल इज इन आवर कोर्ट, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी to snatch away Ramgarh.
6: Yes, yes, it is. We must take away the charge of Ramgarh as soon as possible.
5: But how, sir?
6: Declare the code of words. Cheers.
4: Ramgarh ko court of words ghoshit karke, angrezon ne wahan apna rajya jamane ki koshish ki. उन्होंने वहां अपना एक मैनेजर नियुक्त किया और उसकी मदद के लिए कुछ सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए, पर रानी को यह सब रास नहीं आया। पहले भी गवर्नर जनरल डलहौजी और उसकी हलफ नीतियों के चलते बुंदेलखंड के जैतपुर और नागपुर पर कब्जा किया गया था। अब रानी ने मैनेजर को अपने राज्य से निकालने का पक्का फैसला कर लिया था।
7: हम अपने राज्य में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं चलने देंगे, इसलिए अच्छा होगा जो आप हमारा राज्य छोड़ दें।
6: पर सरकारी फरमान के हिसाब से ये राज्य
7: अब... ये राज्य हमारा था और मरते तब तक हमारा ही रहेगा।
4: रानी ने एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। रानी ने बिना देरी किए हरकारों को अपना संदेश देकर आसपास के राज्यों में भेज दिया।

0: महाराज की जय हो। रामगढ़ से हरकार आया है संदेश लेकर।
1: भेजो उसे।
2: महाराज को प्रणाम। मैं रामगढ़ से बाईजू रानी का पत्र लाया हूँ और साथ में ये
1: क्या है? पत्र पत्र लाओ यहाँ। यदि बंदिनी भारत माता के प्रति आप अपना कुछ कर्तव्य समझते हैं,
3: तो अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाकर युद्ध में कूद पड़िए, अन्यथा ये चूड़ियां पहनकर अपने घरों में छिपे रहिए।
4: अरे वाह,
5: फिर क्या था? चूड़ी वाले हाथों ने तलवारों को ललकारा था। जिन जिन राजाओं को रानी की चूड़ियां पहुंची, उनके हाथों में तलवारों की मूठें आ गईं। रानी अवंतीबाई के आह्वान पर मध्य प्रांत में क्रांति की लहर दौड़ गई।

0: शाहपुर के शासक जगत सिंह ने नारायणगंज पर आक्रमण कर दिया। बहादुर सिंह लोधी ने शहरपुरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया और सलीमनाबाद में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इधर नर्मदा नदी के पूरे उत्तरी प्रदेश विद्रोह के लिए इकट्ठा हो गए और इनके अगुवाई खुद रानी अवंतीबाई और विजय राघवगढ़ के शासक सूरज प्रसाद कर रहे थे। रानी ने मंडला पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेज सेनापति वॉर्डिंगटन खुद ही रानी से लड़ने आ पहुंचा।
1: ये तुम्हारा काम नहीं है रानी, तुम नहीं बचेगा हमसे।
2: बचेगा तो आज तू नहीं।
3: तो मर गया ना सेनापति वॉर्डिंगटन।
0: अरे किस्मत अच्छी थी उसकी, जैसे ही रानी ने तलवार चलाई उसका घोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया और तलवार घोड़े को लगी। वार इतना जबरदस्त था कि घोड़े की गर्दन जमीन पर आ गिरी। उसे देखकर वॉर्डिंगटन डर के मारे पीठ दिखाकर सैनिकों की भीड़ में गायब हो गया।
3: वाह, क्या ताकत रही होगी रानी में।
4: फिर तो पलटकर नहीं आया होगा वो।
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। रानी का वो हमला उसे बहुत खटक रहा था और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था।
1: इस बार रानी का घर पर हमला करेगा हम लोग। रामगढ़ को घेर लो पूरा।
3: बाईजू महाराज, एक बुरी खबर है।
2: क्या हुआ गुप्तचर, बोलो।
3: वॉर्डिंगटन अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ रामगढ़ की ओर बढ़ रहा है। बाईजू महाराज,
5: रानी बहन, हम लोगों को जल्दी ही यहाँ से कहीं और निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लड़ने की तैयारी और वक्त दोनों ही नहीं है और लड़ाई अभी बहुत बाकी है।
2: ठीक कहते हो उमराव सिंह, हम यहाँ से निकल के देवहारगढ़ की पहाड़ियों में छिप सकते हैं। चलो।
1: कहाँ है रानी?
6: हुजूर, लगता है उन्हें पहले ही हमारे आने की खबर लग गई थी। वो अपने महल में नहीं है।
1: Oh, damn it. पूरा रामगढ़ में आग लगा दो। Destroy each and everything. Move, move all of you.

0: रानी के नहीं मिलने पर वॉर्डिंगटन पूरी तरह बौखला गया था। उसने आसपास के रियासतों पर हमला कर उन पर अपना कब्जा कर लिया।
1: May I come in, sir?
2: Oh yes, Mr. Waddington. What's the news?
1: Sir, we have captured Patan, Sangrampur, Salimnabad, and Ghugri.
2: But what? We must celebrate the success.
1: Sorry, sir. But my fight is not over till Rani Avanti Bai is alive.
0: और बस वॉर्डिंगटन अपनी सेना लेकर रानी की तलाश में निकल पड़ा।
3: रानी बहन, वो अंग्रेज हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया है। लगता है हम गिर जाएंगे।
4: कोई बात नहीं भैया, हम लड़ेंगे, तुम तैयारी करो।
3: लेकिन बहन, उनकी विशाल सेना और हम।
4: इसीलिए तो पहले हम ही हमला करेंगे। रात में हम छापामार युद्ध करेंगे, हमला करके गुम हो जाएंगे। और पहला हमला हम कल रात ही पहाड़ी के उस पार अंग्रेजों के शिविर पर करेंगे।

0: इस बार एक विशाल सेना के साथ अंग्रेजों ने रानी को देहारगढ़ की पहाड़ी पर घेर लिया।
1: रानी बहन,
2: हम घेर लिए गए हैं। यही ना, तो क्या हुआ? हम फिर भी लड़ेंगे, मरते दम तक, अपनी आन के लिए, देश की शान के लिए। आगे बढ़ो।
1: रानी बहन, हमारे सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
2: नहीं नहीं भैया, एक तो हम पूरी तरह से घिर गए, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं, और शत्रु मुझे शायद जीवित पकड़ना चाहते हैं। उचित यही होगा कि मैं शत्रु के अपवित्र हाथों में पड़ने के बजाय स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं।
1: नहीं बहन, नहीं, रुक जाओ, पहले अपने इस भाई को तलवार के जौहर तो दिखा लेने दो, मेरे बाद आप जो उचित समझे वो करें।
3: क्या हुआ दिनेश भाई?
0: सचमुच ही उमराव ने प्रलय रूप धारण कर लिया, शत्रु की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया, लेकिन लड़ते लड़ते वो काफी आगे निकल गए और दूसरी तरफ रानी अकेली पड़ गई।
1: रानी बहन रुकिए, सुनिए, आप फिरने वाली है। नहीं, मैं क्या करूं, मैं आता हूँ।
4: अब तुम किधर छुपेगा रानी, अब तुम हमसे नहीं बच सकता। डोंट वरी, तुमको जिंदा पकड़ेगा।
2: तेरे अपवित्र हाथों से मरूंगी, तूने सोचा भी कैसे वॉर्डिंगटन?

0: वारिंगटन का सलाम कबूल रानी, आई सल्यूट यू। अपना साथियों का नाम बताओ रानी, प्लीज टेल मी द नेम। बोलो रानी, बोलो।
1: इस युद्ध के लिए अकेली मैं ही जिम्मेदार हूँ वॉर्डिंगटन।

0: 20 मार्च 1858 का दिन था वो। एक और वीरांगना ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया।
1: सच में क्या जज्बा था, मजा आ गया दिनेश भाई। धन्यवाद नारी शक्ति की ऐसी मिसाल बताने के लिए।
2: बस अब जल्दी ही रानी अवंती बाई के ऊपर नाटक करना पड़ेगा यार।
1: अरे अब निकलना पड़ेगा, घर पे मम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर भी हो गई है।
2: अरे चल चल यार, जल्दी उठ, जल्दी चल। ओके दिनेश भाई। अच्छा काका चलते हैं।
3: हाँ बेटा जल्दी निकल लो, वरना नारी शक्ति की एक मिसाल तुमको घर जाकर भी मिल जाएगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

कॉक्स बाजार एक मानवीय त्रासदी और नौकरशाही का विश्वासघात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट स्थलों में से एक कॉक्स बाजार एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसकी मृत्यु अत्यंत पेशेवर दुख और हताशा की स्थिति में हुई थी। वो किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगियों की निरंतर टालमटोल की नीति से हार गया था। वो व्यक्ति था कैप्टन हीराम कॉक्स, और 1799 में उसका दुखद अंत शुरुआती ब्रिटिश राज की उस गलाकाट हकीकत को उजागर करता है जहां नौकरशाही की ईर्ष्या अक्सर किसी भी युद्ध के मैदान से अधिक घातक होती थी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मानवीय आपदा का सामना कर रही थी। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी चटगांव के दक्षिणी जंगलों में भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए कलकत्ता की केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार करते हुए कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो पैदल सेना के केवल एक मामूली कैप्टन थे, फिर भी उन्हें प्रो कंसुलर शक्तियां दी गई थीं, जिससे वे भूखों को खाना खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकाल सकते थे। क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने जिले के इस बाहरी के दखल पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का एक ऐसा अभियान चलाया जो जितना प्रभावी था उतना ही क्रूर भी। जब कॉक्स ने आपातकालीन राहत के लिए 80,000 रुपए की मांग की तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। पाउनी स्थापित प्रक्रिया के पीछे छिप गए और जोर देकर कहा कि उन्हें पैसा जारी करने से पहले राजस्व बोर्ड से 3 प्रतियों में प्राधिकरण चाहिए। जब कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा तो वहां के अधिकारियों ने भी बहाने बनाए। यहां तक कि जब चावल की व्यवस्था हो गई तो स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें शरणार्थियों तक अनाज पहुंचाने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही है। जब तक कोई सहायता बस्ती तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने आने वाले सामान का अधिकांश हिस्सा हड़प लिया, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मरते रहे। राजस्व में भारी खर्च और इस अव्यवस्था को देखकर कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर अल्यूड क्लार्क ने इन प्रयोगों को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने केवल 1 महीने के भीतर कॉक्स को वापस बुला लिया, ये कहते हुए कि उनकी उपस्थिति जिले के नियमित और स्थापित अधिकार में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है। कॉक्स का मनोबल और उनका स्वास्थ्य अपने ही साथियों के इस दैनिक प्रतिरोध के दबाव में टूट गया। ड्यूटी से मुक्त होने के कुछ ही समय बाद वे सीमावर्ती क्षेत्रों की जहरीली जलवायु में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कॉक्स बाजार शहर उनका एकमात्र स्मारक है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज की एक दिलचस्प याद दिलाती है। ये साबित करता है कि शुरुआती कंपनी शासन में गवर्नर जनरल का मानवीय मिशन भी कुछ दृढ़ स्थानीय नौकरशाहों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर क्षेत्र की रक्षा के लिए विफल किया जा सकता था। हीराम कॉक्स केवल असफल नहीं हुए, उन्हें उसी मशीनरी ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जिसकी उन्होंने सेवा की थी।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको कविता रश्मि रथी का पाठ सुनवाएंगे।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
2: तृतीय सर्ग में हमने देखा, एक पुरुष ने राज्य को ठुकरा कर वचन को अपना राजमुकुट बना लिया। कर्ण ने दिखा दिया कि मनुष्य का कद उसके जन्म से नहीं, उसके निर्णय से मापा जाता है। वहां कथा नहीं, चरित्र बोल रहा था। वहां संवाद नहीं, संकल्प गूंज रहा था। वृक्ष फल देकर रिक्त नहीं होता, वह और हरित होता है। सरिता जल देकर सूखती नहीं, वह पुनः मेघों में भरती है। यही आत्मदान का अशाश्वत नियम है। जो देता है वही सचमुच पाता है। जो अंतिम मूल्य हंसकर चुका दे वही अमरता का अधिकारी होता है। श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिनकर जी को यूं ही राष्ट्रकवि नहीं कहा गया। उनकी वाणी सोई हुई चेतना को झकझोरती है, मनुष्य को उसके आत्मबल का बोध कराती है।
0: बिल्कुल, रश्मि रथी में मानवीय मूल्यों का ऐसा ही समन्वय है, जहां दर्शन भी है, सिद्धांत भी, इच्छा भी है, संयम भी, छल और द्वेष की छाया भी है, तो प्रेम, दान और तपस्या की उज्जवल आभा भी। ये काव्य केवल घटनाओं का अनुक्रम नहीं, मानव हृदय का महागान है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग एक का काव्य पाठ। प्रेम यज्ञ अति कठिन, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां, जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो और मूल्य क्या देना। करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे ये मूल्य, ना मिलता वो मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। ये ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं।
2: ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वास्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए रहे, डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने तीन गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मनसूर नियति की सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में सौ बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना ही पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं।
0: श्रोताओं, अभी जो पंक्तियां हमने सुनी वे केवल कविता नहीं थी, वे एक अग्निकुंड थी। प्रेम यज्ञ अति कठिन से आरंभ होकर यह भाग हमें भीतर तक टटोलता है। कितनी सहजता से कवि पूछते हैं, प्रण लेना आसान है पर क्या हम उसका अंतिम मूल्य चुकाने को तैयार हैं? त्याग की बातें सब करते हैं पर जब सर्वस्व अर्पण की घड़ी आती है तभी सच्चा मनुष्य पहचाना जाता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सुविधा के युग में हैं, जहां हर चीज हमें तुरंत चाहिए, पर तपस्या का धैर्य नहीं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं, व्रत का अंतिम मोल चुकाना ही असली परीक्षा है। और हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे, लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, किंतु मूल्य चुकाने का साहस कम ही दिखता है।
0: और दान, आज दान भी प्रदर्शन बनता जा रहा है, पर यहां दान को जीवन का झरना कहा गया। जैसे वृक्ष फल देकर स्वयं को बचाता है, जैसे सरिता बहकर निर्मल रहती है। यदि हम रोक लें, सहेज लें, केवल अपने लिए जी लें, तो क्या हम सचमुच जीवित रह पाते हैं या भीतर ही भीतर सूखने लगते हैं?
2: यही तो इस भाग की प्रासंगिकता है। आज दुनिया में स्पर्धा है, स्वार्थ है, आगे निकल जाने की होड़ है, किंतु इतिहास उन्हीं का स्मरण करता है जिन्होंने अंतिम मोल हंसकर चुकाया, चाहे वह त्याग हो, सत्य हो या मानवता। ये काव्य हमें याद दिलाता है कि अमरता सुविधा से नहीं, साहस से मिलती है। ये केवल कर्ण की भूमिका नहीं, ये हमारे समय का दर्पण है। क्या हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं? चतुर्थ सर्ग का ये प्रथम भाग हमें भीतर की अग्नि से परिचित कराता है। आगे कथा और भी गहन होगी और हम उस अग्नि में कर्ण के चरित्र को और तपता देखेंगे। आइए अब सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग दो का काव्य पाठ।
0: वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणभारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से व्रत का निकष दान था। अब की चढ़ी निकष पर काया कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मिया रजत से भरकर वार विमल को हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे धूप दीप कर पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने
3: कौन उधर है बंधु सामने आओ मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है ये विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण में ही अपना सुख माना भयहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहां पर और कौन दाता है अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए।
2: श्रोताओं दान देने से जो घटता है वह वस्तु होती है पर जो बढ़ता है वह मनुष्य होता है। और आज के इस प्रसंग में हम ऐसे ही एक पुरुष के सामने खड़े हैं जिसके लिए दान प्रदर्शन नहीं स्वभाव है। हाँ गंगा तट पर खड़ा वह सूर्य पुत्र जल में निमग्न पर तेज से दिप दिपाता हुआ जैसे स्वर्णिम पर्वत स्वयं तपस्या में लीन हो। ये दृश्य केवल बाहरी नहीं यह भीतर की निर्मलता का संकेत है।
0: श्रोताओं दिनकर जी ने जिस कोमलता से इस प्रसंग को रचा है उसमें दान कोई घटना नहीं साधना बन जाता है। यह भाव बहुत स्पर्श करता है दाता और भिक्षु का भेद मिटा देना। कितनी सरलता से वे कहते हैं कि लेने वाला भी कुछ देता है, संतोष, कृतज्ञता, आशीर्वाद। ये सोच आज के समय में कितनी दुर्लभ हो गई है, जहां देने में भी अहंकार छिपा रहता है।
2: दिनकर जी ने इस दृश्य का कितना अद्भुत, कितना दैदीप्यमान चित्र खींचा है। गंगा का पावन तट, मध्याह्न का प्रखर सूर्य और उस जल के मध्य अचल खड़ा कर्ण, मानो स्वयं तेज से मनुष्य का रूप ही धर लिया हो और तप की मुद्रा में स्थिर हो गया हो। गंगा की लहरें जैसे उसके चरणों का अभिषेक कर रही हो। सूर्य की किरणें उसके कवच कुंडलों पर स्वर्ण रेखाएं उकेरती हुई मानो आकाश से आशीष बरसा रही हो। जल में झील मिलाती आभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे नियति ने इस क्षण को रत्न की तरह अपनी हथेली पर संभाल लिया हो।
0: वातावरण में एक गहन निस्तब्धता है, पर यह साधारण मौन नहीं, ये उस तूफान से पहले की शांति है जो चरित्र की पराकाष्ठा को परखने आता है। कर्ण स्थिर हैं, मन से भी, वचन से भी, और जैसे अपने तन को भी अर्पित करने की तैयारी में। और यहीं इस प्रसंग की असली सुंदरता प्रकट होती है। ये केवल एक दृश्य नहीं, ये मानवीय ऊंचाई का आलोक है, जहां मनुष्य अपने संकल्प से सूर्य के समकक्ष खड़ा दिखाई देता है। आगे नियति स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देने को है, यही इस प्रसंग की मार्मिकता है। दान अभी तक व्रत था, पर अब वो जीवन बनने जा रहा है।
2: श्रोताओं, आज गंगा के तट पर हमने केवल कर्ण को नहीं देखा, हमने उस दुर्लभ मनुष्यत्व की झलक देखी है जो स्वयं तप कर भी दूसरों को प्रकाश देता है। जल में खड़ा वह सूर्य पुत्र मानो ये कह रहा हो कि दान हाथों से पहले हृदय में जन्म लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग में कर्ण को किसी राजपुरुष की भांति नहीं बल्कि ऐसे महातपस्वी की तरह उकेरा है जिसकी आभा भीतर से फूटती है। सच ही तो है श्रोताओं, समय अक्सर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनके भीतर असाधारण तेज छिपा होता है। साधारण दीपकों की आंधी नहीं उतरती, तूफान हमेशा सूर्यों की ओर बढ़ते हैं।
0: दोस्तों, अब कथा उस दहलीज पर आ पहुंची है जहां मौन के भीतर नियति की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा अब भी बह रही है, सूर्य अब भी आकाश में प्रज्वलित है, पर समय की चाल बदल चुकी है। कर्ण का तप, उसका व्रत और उसका भाग्य अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां त्याग केवल गुण नहीं रहेगा, इतिहास बन जाएगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ, जहां इस शांत जलधारा के बीच नियति स्वयं एक याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आएगी। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा। इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
2: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
4: और मैंने यानी दीपक नेमा ने।
0: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है, फिर मिलेंगे एक नए अंक में। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचे और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य कुंजन, जिसमें आज हमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

93.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज समर्पित होगा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर। शाम 6:30 पर स्वतंत्रता दिवस विशेष बाल सभा का प्रसारण होगा और शाम 7 कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज हम बादलों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। शाम 7:30 पर हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय रहेगा भारतीय सशस्त्र सेनाएं अब तक का सफर। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। रात्रि के 8 देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा जो कि रानी अवंतीबाई के जीवन पर केंद्रित होगा और रात्रि के 9:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। दोपहर के 12 को है अब हमारी प्रातःकालीन सभा सम्पन्न होती है। शाम 5 हमारी सांध्यकालीन सेवा आरम्भ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियां सुनते रहें।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं।

कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले आइए आपको बता दें कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हैं अपनी इस सभा में। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आज़ादी के, उसके बाद भारत भारती कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 2 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुनो कहानी और 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। इसके बाद इन्हीं कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण यानी 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आज़ादी और 4 बजे भारत भारती कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम तराने आज़ादी के।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। कहानियां जो अपने भीतर समेटे होती हैं अथाह भाव सागर, अपने समय को जीती सांस लेती हैं शब्दों में, धड़कती हैं किताबों में। ऐसी कहानियां जो श्रोताओं के मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, वही कहानियां लेकर हम आएंगे इस कार्यक्रम में। शीर्षक है दो बहनें।

0: दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई है, कुछ उसका रंग भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली पतली और फूहड़ उतनी ही और साथ में मंदबुद्धि भी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही है, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 500 स्त्रियां जमा हैं मगर ये आकर्षण, ये जादू किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती, इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण आखिर आया कहां से, इस रहस्य का पता लगाएगी। उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। देखा, उसकी मुख छवि निष्कलंक है मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती है। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। अरे, असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए। फिर सोचने लगी, मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे भी बहुत निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया? कौन जाने गहने भी कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो ये स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो भाई, मैं तो जैसी हूं अच्छी हूं। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है, घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी वो तो निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हूं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के 2 लड़के हैं उसके, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, अरे किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन? या अभी भी वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, मानो उसका पति तो लाठ ही हो। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल तो ये भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पास को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अब बीए में होगा? राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं और कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च के मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत तो पढ़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च हो गया। भाई ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए ना। 350 बेदाग घर को दे देते हैं, इसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते?
1: रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो 1/4 तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500? इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली,
0: बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात।
1: अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए। मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली,
0: तब तो शायद 1,000 रुपए मिलने लगे ना। 1,000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा।
1: व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला,
0: मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। अरे सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या हुई।
1: राम दुलारी जोर से हंस पड़ी।
0: इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है। भाई पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है। जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है?
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी? उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी से कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत। कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थिनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं, आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला,

0: की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, 4-5 रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा,
1: तो लाकर रख क्यों न दिया, मैं उसे निकाल देती तो कहते।
0: हाँ ये गलती तो हुई।
1: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूँ, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं। जिंदगी नरक हो गई।
0: व्यंग्य बाणों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर ये उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता ना। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद ना आता, बेगार सी टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में? कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं। कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। भाई मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, और सबके सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं, भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं, सौ सौ मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर। बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी। बस मुझे पता था, पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था, वही व्यापार मैं करता हूं। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। अरे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूं सब। और हिसाब में लिखता हूं 1000 रिश्वत दी, देता हूं 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकालकर वो उसकी चरणों की भेंट करता है और कहता है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लातें मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं, जितने धनी हैं वे सबके सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने यह किया। उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था। तो भाई मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा। और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो, चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हॉल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है, जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है, और समाज में कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या द्वेष अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है। गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या कह रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया? जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ, क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जी दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो, मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया। जानता था वो सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
0: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
0: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सके।
2: अंजू, तुम आज फिर मोबाइल लेकर आई हो? देखा शौरी, मोबाइल लेकर आई है।
3: लगा लिया हेडफोन कान में। पता है मेरे पापा कहते हैं जो कान में 24 घंटे ईयरफोन रखता है उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और बहरा हो जाता है।
2: तो अरे अरे, मैं रोज रोज कान सुनती हूँ। वो तो आज नया गाना निकला है ना, इस वजह से उसकी म्यूजिक और लिरिक्स इतनी अच्छी है कि तुम लोग भी सुनोगे।
3: हमें नहीं सुनना।
2: अरे
4: अरे, अरे गुरुजी, मोबाइल छुपा ले,
2: छुपा ले, बैग कहाँ है? अरे बैग, अरे हाँ चलो।
5: प्रणाम गुरुजी।
6: हाँ प्रणाम भाई, वो क्या कहते हैं आयुष्मान भाव। हाँ क्या क्या कह रहे थे तुम, बोलो बोलो।
7: कुछ नहीं गुरु जी।
6: अच्छा अच्छा, हाँ अरे आज तो ये सामने वाली सीट ही खाली पड़ी है, ये गौरव को क्या हुआ आज?
7: गुरुजी, गौरव को कुछ नहीं हुआ है।
6: तो फिर
7: वो इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है।
6: अच्छा, वेरी गुड। तो वो फिर कहाँ गया है अभी?
7: गुरुजी, वो रिहर्सल के लिए गया है।
6: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, वो एक अच्छा कलाकार है, ये हमें पता ही नहीं था। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें पता है कलाएं प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? बताओ। नहीं ना, 64 प्रकार की बताई गई हैं कलाएं। इनमें से बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिनका अपना विज्ञान है। महर्षि शुक्राचार्य नाम के अपने यहाँ महर्षि हुए हैं, वो इन कलाओं के भाष्यकार माने जाते हैं
3: जी,
6: और उन्होंने इन पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नीतिसार, समझे?
2: हाँ गुरुजी। गुरुजी, आज हमें महर्षि शुक्राचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताइए ना।
4: बताइए गुरुजी।
6: ठीक है ठीक है, हम तुम्हें महर्षि शुक्राचार्य के आश्रम में लिए चलते हैं।
4: चलिए गुरुजी।

0: प्रिय शिष्यों, हमारे यहां शिक्षा क्रम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कला की शिक्षा भी शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कला को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है, शक्तो मूकोपि यत कर्तुम कला संज्ञम तु तत स्मृतम, अर्थात वो विद्या जिसे वर्णोच्चारण न कर सकने वाला भी कर सके वो कला है। यूं तो कलाएं अनंत हैं, पर विभिन्न ग्रंथाकार आचार्यों ने प्रमुख कलाएं 64 बताई हैं। वे चाहे केलदी वसव राजेंद्र हों या वात्सायन अथवा जयमंगल, इन सभी आचार्यों द्वारा वर्णित कलाओं में कुछ कलाएं समान हैं और कुछ भिन्न भी हैं।
1: आचार्य श्री, इन कलाओं में प्रत्येक कला के अपने शास्त्र तो होंगे ही।
0: हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि में घटित और उपस्थित हर घटना, हर वस्तु का शास्त्र होता है। शास्त्र चिंतन का प्रतिफल जो है, इसमें कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात। वैसे हमारे वैदिक साहित्य में सब कुछ उपलब्ध है, वो बहुत समृद्ध है।
1: जी गुरु जी।
0: वत्स, ये शास्त्र ही है जो किसी भी घटना, किसी भी क्रिया के कार्य कारण की व्याख्या करता है, यही विज्ञान कहलाता है।
2: इसका अर्थ तो ये हुआ आचार्य श्री कि कलाओं का भी विज्ञान होता है।
0: हाँ वत्स, सच तो ये है कि विज्ञान का जन्म कला से ही हुआ है। जैसे कि दर्शन अथवा सिद्धांत का जन्म चिंतन से हुआ है। और यदि हम आदि मानव तक जाएं तो आदि मानव भी घटनाओं तथा तथ्यों के कार्य कारण संबंध से सर्वथा अनभिज्ञ नहीं था। आदि मानव में भी जानने की भूख थी। आदि मानव जो सबसे पहले सृष्टि में जन्मा, उसके सामने बहुत कुछ सीखने और जानने को था। पता नहीं उस मानव के पास इन चीजों को नाम देने के लिए शब्द थे या नहीं, किंतु ये सत्य है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही उसके ज्ञान का कोष भी बढ़ता गया।
1: तो क्या यही विज्ञान का जन्म हुआ गुरुजी?
0: नहीं वत्स, ये मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान था। विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर है, पर अंतर के बाद भी दोनों में एक समानता है। वो ये कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। व्यवहारिक ज्ञान से भी मनुष्य तैरने वाली नौका बना लेता है, उसे समुद्र के वक्ष पर दौड़ाता है, डूबने से बचाता है और किनारे पर ले आता है। वैज्ञानिक ज्ञान के सहारे भी वो यही सब कुछ करता है। व्यवहारिक ज्ञान क्रियात्मक होता है, कला के रूप में होता है, पर विज्ञान नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। फिर भी विज्ञान का जन्म व्यवहारिक ज्ञान से ही, कला से ही होता है। विज्ञान के पहले व्यवहारिक ज्ञान कला ही जन्मती है।
2: फिर तो आचार्य श्री आदि मानव मूल वैज्ञानिक हुए।
0: निश्चय ही वत्स, वे आदि मानव ही थे जिन्होंने पत्थरों के हथियार तथा औजारों का निर्माण किया, डंडे के सहारे भारी पेड़ों के तने ढकेलना, चप्पू से नाव खेना, नाव बनाना, गन्ने को बटकर मरोड़कर रस निकालना, कुएं से पानी खींचने के लिए चरखी का उपयोग करना, फेंकन अथवा बरही बनाना, धनुष बाण बनाना, धौकनी बनाना, सुई सिल पत्थर का उपयोग करना, कृषि भोजन, पशुपालन, वस्त्र अलंकार, टोकरी भांड आदि बनाना, अग्नि उत्पन्न करना, धातु बनाना आदि कलाएं सीखी। हाँ, ये सत्य है, आदि मानव को इन कलाओं के अंदर छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक तैराक तैरना जानता है पर तैरने वाली वस्तुओं के सिद्धांत और जल के उछाल का संबंध नहीं जानता।
1: आचार्य श्री, ये सभी कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित होंगी?
0: हाँ, ये सभी कलाएं भी और अन्य कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित हैं।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, कलाओं के नाम भिन्न भिन्न नहीं, उनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि क्रिया के पार्थक्य से ही कलाओं में भेद हो जाता है। जो व्यक्ति जिस कला का अवलंबन करता है उसकी जाति भी उस कला के नाम से जानी जाती है।
1: जी।
0: हमारे हिसाब से पहली कला नृत्य है। हाव भाव के साथ गति नृत्य कहलाती है। नृत्य में करण, अंगहार, विभाव, भाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक नाट्य, दूसरा अनाट्य। नटराज शिव को नृत्य का आदि गुरु माना जाता है। भरत मुनि ने नृत्य की कुल 108 मुद्राएं बताई हैं। नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु है जो हृदय में प्रसन्नता का उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो जाता है।
2: जैसे वर्षा ऋतु में घन गर्जना से आनंदित होकर मोर झूम झूम कर नाच उठता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी प्रमुख कला है विविध प्रकार के वाद्यों का निर्माण और उन्हें बजाने की कला। वाद्यों के मुख्य चार प्रकार होते हैं।
2: कौन से गुरु जी?
0: तंत, सुपिर, अवनद्ध और घन। तार अथवा तांत का जिसमें उपयोग हो वे तंत वाद्य हैं, जैसे वीणा, तानपुरा, सारंगी, बेला, सरोद आदि, जिनका भीतरी भाग पोला और जो सच्छिद्र होते हैं तथा जिनमें वायु का प्रयोग होता है वे सुपिर वाद्य कहलाते हैं, जैसे बांसुरी, अलगोजा, शहनाई आदि। ऐसे ही चमड़े से मढ़े हुए वाद्य अवनद्ध कहलाते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, तबला, मृदंग आदि, जबकि परस्पर आघात से बजने वाले वाद्य घन कहलाते हैं, जैसे झांझ, मंजीरा, करताल आदि। ये गायन कला से संबंध रखती है। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती और नारद को वीणा वादन में, श्री कृष्ण भगवान को बंसी बजाने में और महादेव शिव को डमरू वादन में निपुण बताया गया है।
1: आचार्य श्री, आपने बताया वादन कला गायन कला से संबंध रखती है।
0: हाँ, वादन के बिना गायन अधूरा लगता है, ऐसे ही गायन वादन के बिना नृत्य। गायन, वादन और नृत्य की त्रयी वैसे ही तीर्थ बन जाती है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। गायन तीसरी प्रमुख कला है जिसे गांधर्व विद्या भी कहा गया है। संगीत का प्रमुख उपादान नाद होता है। नाद के माध्यम से ही संगीत कला की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति संभव होती है। शारंग देव ने संगीत की परिभाषा देते हुए गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते कहा है, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को सम्मिलित करने से संगीत कहा गया है। ऐसे ही शारंग देव ने नाद को ब्रह्म स्वरूप निरूपित किया है। अस्ति ब्रह्म चिदानंदम स्वयं ज्योति निरंजनम ईश्वरम लिंग मित्युक्तम द्वितीयमजम विभु निर्विकारम निराकारम सर्वेश्वर मनश्वरम सर्वशक्ति च सर्वज्ञम तदंशा जीव संगकाह। संगीत और व्याकरण दोनों के तत्व माहेश्वर सूत्र हैं। व्याकरण में 5 शुद्ध स्वर और 2 मिश्रित स्वर होते हैं। ऐसे ही संगीत में भी 5 स्वर प्रधान और 2 गौण हैं। गांधर्व गान में ये 5 स्वर मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज तथा धैवत हैं। मध्यम मतलब म, गांधार मतलब ग, ऋषभ मतलब री, षडज मतलब सा और धैवत मतलब ध।
1: जी गुरु जी।
0: हाँ, ये सरल स्वरों में समझाया। गौण स्वर पंचम यानी प और निषाद है नी। संगीत और व्याकरण दोनों में नाद के 66 भिन्न रूप होते हैं जिन्हें श्रुति कहते हैं। आओ हम संगीत कक्ष की ओर चलें।
1: जी गुरु जी, जी। गुरु जी।
0: देख रहे हैं आप लोग?
1: जी गुरु जी।
0: गायन, वादन और नृत्य की त्रयी, क्योंकि संगीत और व्याकरण में साम्य है अतः इस त्रयी में भी साम्य है। इन तीनों रूपों में एक लय है, ताल है, सम्मिति है। तीनों एक गणित में बंधे हैं, अतः इन कलाओं का भी एक विज्ञान है, ध्वनि तरंगों का विज्ञान, गति संचलन का विज्ञान। आइए यहाँ वृक्ष के नीचे बैठें। आइए।
2: जी गुरु जी।
1: जी गुरु जी।
2: आचार्य श्री।
0: हाँ।
2: आप 64 कलाओं की चर्चा कर रहे थे।
0: हाँ शिष्यों, आगे की 5 कलाएं हैं, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, क्रमशः स्त्री और पुरुषों को वस्त्र और अलंकार सुरुचि रूप से पहनाने की कला, अनेक प्रकार के रूपों का आविर्भाव करने की कला, शैया और अस्तरण सुंदर रीति से बिछाने और पुष्पों को विभिन्न तरह से गूंथने की कला, दूत क्रीड़ा की कला और अनेक प्रकार के आसनों द्वारा सुरत क्रीड़ा की कला। इन 8 कलाओं का उल्लेख गांधर्व वेद में किया गया है।
1: आचार्य श्री, इनमें गायन, वादन और नृत्य भी सम्मिलित है।
0: हाँ वत्स, आगे की 10 कलाओं का संबंध आयुर्वेद से है। नवी कला से लेकर 18 कला तक की ये कलाएं हैं। विविध मकरंदों से आसव, मद्य आदि बनाने की कला, शल्य की पीड़ा को कम कर देना, शिरा और फोड़े आदि की चीर फाड़ करने की कला, इसमें हकीमों और आयुर्वेदाचार्यों की चीर फाड़ भी सम्मिलित है। वृक्षों से प्राप्त रस आदि से अन्न पकाने की कला, वृक्ष गुल्म लता आदि को लगाने, फल फूलों को उत्पन्न करने और वृक्षों के संरक्षण की कला, पत्थर सोने चांदी आदि धातुओं का खनन, उनकी भस्म बनाने की कला, इक्षु से राव गुड़ खांड मिश्री कंद आदि बनाने की कला, स्वर्ण आदि अनेक धातु और उनसे औषधि निर्माण की कला, मिश्रित धातुओं को उनके मिश्रण से पृथक करने की कला, धातुओं का अपूर्व मिश्रण बनाने की कला, समुद्री जल और मृदा से नमक आदि पदार्थों को निकालने की कला। इन कलाओं में वनस्पति शास्त्र, वानिकी, धातुकर्म, रसायन शास्त्र आदि विज्ञान आ जाते।
1: जी गुरुजी।
2: आचार्य श्री, इनमें से अनेक क्षेत्रों में आचार्य नागार्जुन और महर्षि चरक आदि ऋषियों ने भी काम किया है।
0: हाँ वत्स, तुम ठीक कह रहे हो। प्रिय शिष्यों, आगे की पांच कलाएं युद्ध कला से संबंधित हैं।
2: जी गुरुजी।
0: ये धनुर्वेद का अंग है, यथा 19वीं कला पैंतरा बदलते हुए शस्त्रों के संचालन की कला है, 20वीं कला मल्ल युद्ध और बाहु युद्ध की कला, 21वीं कृत और प्रतिकृत मुष्ट युद्ध की कला, 22वीं अस्त्रों से अभिलक्षित देश को निशाना बनाने की कला और 23वीं हाथी घोड़ों और रथों की विशिष्ट गतियों के द्वारा युद्ध के आयोजन की कला। ये तो तुम लोग जानते ही हो कि युद्ध कला का अपना शास्त्र होता है, अपना पूरा पूरा विज्ञान होता है।
2: जी गुरुजी।
1: महर्षि, महाभारत ग्रंथ में भी तो इसका विशद वर्णन है। आचार्य द्रोणाचार्य इन कलाओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं ना?
0: हाँ वत्स, अपने आश्रम में भी तो इन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तुम लोग भी तो ये प्रशिक्षण ले रहे हो ना? अब तक तो तुम लोग इन कलाओं के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझ ही गए होगे।
1: जी गुरुजी।
0: शिष्यों, आगे की कलाएं विविध कलाओं से और क्षेत्रों से संबंधित हैं। यथा 24वीं कला विविध प्रकार के आसनों में बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों से विविध आकृतियां बनाकर ईश्वराधन करना, 25वीं कला रथ हाँकने की कला, 26वीं मिट्टी पत्थर लकड़ी तथा धातुओं के बर्तन बनाने की कला और 27वीं चित्रांकन की कला।
2: अद्भुत, इस कला में तो भारत ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर रखी हैं। प्राचीन मंदिरों, महलों, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों की वानगी देखते ही बनती है। इनके रंग शताब्दियों बाद भी धुंधलाए नहीं हैं।
0: तुम्हारा कथन सत्य है वत्स, पर हमें तो तुम लोगों के भांड और उन पर की गई चित्रकारी देखनी है। वसंतोत्सव के अवसर पर होने वाले वार्षिकोत्सव में हम इनकी प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहे?
1: जी गुरुजी।
0: हाँ तो शिष्यों, 28वीं कला तालाब, कूप, बावड़ी, महल, मंदिर, घर बनाने और भूमि समतल करने से संबंधित है, जबकि 29वीं कला समय बताने वाली घड़ियों के निर्माण से संबंधित। इनमें जल घड़ी, बालू घड़ी और धूप घड़ी आदि बनाने की शिक्षा दी जाती है। ये तो तुम जानते ही हो कि ये कला ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है।
1: हाँ आचार्य श्री, हम जानते हैं ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि अनेक महर्षियों ने इस क्षेत्र में विशेष काम किया है।
0: शिष्यों, 30वीं कला विभिन्न अनुपात में रंगों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को रंगना है। किस वस्त्र को कैसे रंगे ताकि उसकी चमक स्थायी रहे और रंग फीका ना पड़े, निश्चित ही विशिष्ट कला है। सूती कपड़ों की रंगाई की विधि निश्चित ही रेशमी कपड़ों की रंगाई से या ऊनी कपड़ों की रंगाई से भिन्न होगी। इसमें अंतर्निहित रंगों का अपना विज्ञान है। ऐसे ही 31वीं कला जल, वायु, भाप संचालित यंत्रों के निर्माण से संबंधित है, जबकि 32वीं कला नौका, रथ आदि जल थल के वाहन बनाने से संबंधित है। यंत्र सर्वस्व, यंत्र विधान ग्रंथों में इनका विशद वर्णन है। आवागमन के इन साधनों पर व्यापार भी निर्भर करता है।
2: वाह आचार्य श्री, महर्षि पाराशर ने तो नौका निर्माण के लिए वृक्षों की लकड़ी का भी वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है।
0: हाँ वत्स, 33वीं कला सूत, सन आदि तंतुओं से रस्सी बनाने और 34वीं कला विभिन्न तंतुओं से पटबंध अर्थात वस्त्र बनाने से संबंधित है। वैदिक काल में परिष्कृत कपड़ा बुनने की तकनीक चली आ रही है। अथर्ववेद के अनुसार बुनाई महिलाओं का विशेष अधिकार था। वैदिक काल में 3 वस्त्र, निवी यानी अंतःवस्त्र, वसा यानी पोशाक एवं आदिवसा यानी उत्तरे या ओढ़नी प्रचलित थे। साड़ी भी अपने प्रारंभिक रूप में प्रचलित थी। आइए हम अपने करघा कक्ष की ओर चलें।
2: जी गुरुजी।
0: देख रहे हैं ना, करघे पर धोती बुनी जा रही है और उधर दूसरे करघे पर साड़ी।
2: जी गुरुजी।
0: किनार या किनारी साड़ी और धोती का एक महत्वपूर्ण अनुषंग होता है। आप देख सकते हैं धोती की किनार एकदम सादा है जबकि साड़ी की किनारी आकर्षक बनाई जा रही है जो पूरी साड़ी को आकर्षक रूप प्रदान करती है।
2: आह कितना सुंदर है ये दृश्य।
0: जितना धोती या साड़ी का आकलपन एक विशिष्ट कला है उतना ही करघे को चलाना भी एक कला है। आओ अब हम उद्यान की ओर चलें।
1: आचार्य श्री, हमने चोल स्त्रियों को मत्स्य वल्का शैली में साड़ी पहने देखा है जिसमें साड़ी को पैरों के बीच से निकालकर पीछे खोसा जाता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी से चौथी शताब्दी तक आते आते साड़ी पहनने की शैली में कई परिवर्तन आए। शिष्यों, आगे की चार कलाएं आभूषण निर्माण से संबंधित हैं।
1: जी गुरुजी।
0: 35वीं कला रत्नों की पहचान और उनके वेधन से संबंधित है, जबकि 36वीं कला स्वर्ण रजत की शुद्धता की जांच से संबंधित है। 37वीं नकली सोने चांदी हीरे मोती बनाने की कला है, जबकि 38वीं कला सोने चांदी का लेप चढ़ाने, आभूषण बनाने और मीनाकारी करने की कला है।
2: आचार्य श्री, रत्नों के धारण का उद्देश्य तो श्रृंगार से अधिक उनके धारण से होने वाले शुभाशुभ फल से होता है, फिर नकली रत्नों का निर्माण किस लिए?
0: वत्स, नकली आभूषण केवल शोभा बढ़ाने के लिए ही धारण किए जाते हैं। इनकी चमक आभा में कोई कमी नहीं होती। अब जैसे मिश्री से जो कृत्रिम हीरा बनाया जाता है उसे सामान्य जौहरी भी आसानी से नहीं पहचान पाते। आगे से दो कलाएं अर्थात 49वीं और 40वीं चर्म कलाएं हैं जो पशुओं के शरीर पर से चमड़ा निकालकर अलग करने और चमड़े को मुलायम करके उपयोगी सामान बनाने से संबंधित है।
1: आचार्य श्री, पहले तो चमड़े का उपयोग प्रमुखतः चर्म आसन और चर्म वस्त्र के रूप में होता था, अब तो यह आवरण, थैला और डोलची बनाने के लिए भी उपयोग में आने लगा है।
0: हाँ वत्स, समय के साथ हर वस्तु के नए नए उपयोग विकसित होते जाते हैं। 41वीं कला गाय भैंस से दूध दोहकर मक्खन घी दही आदि बनाने की कलाओं से संबंधित है, जबकि 42वीं कला वस्त्रों की सिलाई है। 43वीं कला तैराकी है, जबकि 44वीं बर्तन मांजने, 45वीं वस्त्रों को धोने साफ करने और 46वीं शौर कर्म कला है। फिर 47वीं कला तिल रेंडी आदि बीजों से तेल निकालने की, 48वीं पेड़ों पर ऊंचे चढ़ने की और 49वीं हल जोतने की कलाएं हैं।
2: आचार्य श्री, पेड़ों पर चढ़ने को भी कला की श्रेणी में रखा गया है?
0: हाँ वत्स, खजूर ताड़ नारियल सुपारी आदि के पेड़ों पर चढ़ने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही दूसरों की सेवा करना भी एक कला है, ये 50वीं कला है। जबकि 51वीं कला बांस खजूर ताड़ आदि के पंखे टोकरी आदि पात्र बनाना है।
1: आचार्य श्री, अपने आश्रम में भी तो छोटे बड़े अनेक प्रकार के बिजना बनाए जा रहे हैं और लगभग 2500 प्रकार की टोकरियां और सूपे बनाए जाते हैं।
0: हाँ, टोकरियां तो जैसे सामान रखने के लिए सर्वसाधारण उपकरण है। विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने का प्रचलन है।
1: जी।
0: फिर ठहरी हुई वायु को बिजना ही चलाता है, चाहे वो मोर पंख का बना हो, खजूर के पत्तों का हो या बांस का। बस तुमने अपने लिए कितने प्रकार के पंखे बनाए हैं?
2: जी गुरुजी, 3 प्रकार के।
0: अच्छा।
2: एक खजूर का सादा, दूसरा बांस का बुनाई वाला और तीसरा उरई की सीकों को रंगीन धागों में बुनकर।
0: इन्हें हम देखेंगे कितनी कलमकारी या कलाकारी की है तुमने।
2: जी जी अवश्य गुरुजी।
0: अब हम 52वीं कला पर आते हैं जो कांच के बर्तन आदि बनाने से संबंधित है।
1: जी गुरुजी।
0: रेत चूना और सोडे के मिश्रण से गलाकर कांच बनाना एक विशिष्ट कला है, ये कीमियागिरी विज्ञान से संबंधित है। आगे की कलाएं हैं 53वीं स्रोतों से सिंचाई, 54वीं संहरण यानी अधिक जल वाले स्थान से जल हटाना, 55वीं हाथी घोड़े ऊंटों आदि के सवारी के आसन बनाना, 56वीं लोहे के अस्त्र बनाना और 57वीं 58वीं और 59 बच्चों की कलाएं, बच्चों का पालन पोषण और खेलने के लिए खिलौने बनाने से संबंधित।
1: यानी आचार्य श्री, जीवन से संबंधित हर गतिविधि एक कला है?
0: हाँ बस, क्योंकि उसके सुचारू संपादन का आधार कुछ नियम और सिद्धांत हैं। अब जैसे कि अपराधियों को दंड देना 60वीं कला है, विभिन्न लिपियों को सुंदरता से लिखना 61वीं कला, और तो और पान का संरक्षण भी 62वीं कला है, और आदान 63वीं तथा प्रतिदान 64वीं कला है।
2: आचार्य श्री, इन 64 कलाओं का पाठ्यक्रम तो काफी व्यापक है, इसमें से तो प्रायः सभी विषयों का समावेश हो जाता है।
0: हाँ वत्स, शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है, सर्वांगीण विकास, ज्ञान की वृद्धि हो, सदाचार में प्रवृत्ति हो और जीविकोपार्जन में सहायता मिले। इस पाठ्यक्रम में इन सब का ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, पारलौलिक कल्याण भी नहीं छोड़ा गया है। संक्षेप में कहें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का ये क्रम निश्चित किया गया है। श्री कृष्ण को इन सभी विषयों की पूरी शिक्षा दी गई थी और वे प्रायः सभी में प्रवीण भी थे।
1: आचार्य श्री, गुरुकुलों में ब्राह्मण,

0: नैपुण्यकरणे सम्यक् ताम ताम कुर्यात् स एव हि। सच तो यह है वत्स, वंशागत कला के सीखने में पर्याप्त सुगमता होती है। एक बड़ई का लड़का बड़ईगिरी जितनी शीघ्रता और सुगमता के साथ सीखकर उसमें निपुण हो सकता है उतना दूसरा नहीं, क्योंकि वंश परंपरा और बालपन से ही उसे उस कला के योग्य संस्कार बन जाते हैं। ये शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। अब सांध्य संध्या का समय हो चला है, आओ हम सब यज्ञशाला की ओर चलें।
1: जी गुरुजी।

0: तो बच्चों, ये थी महर्षि शुक्राचार्य के गुरुकुल की एक झलक।
1: तो घंटी बज गई, चलो चलो।
2: अरे चलो। और सुन, मोबाइल ज्यादा कान में वो हेडफोन मत लगाया कर।
3: लेके भी नहीं आऊंगी मैं स्कूल में,
2: नहीं तो तेरे कान बहर हो जाएंगे। तू ऐ करके सुनना।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती भारत भारती, भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

नैनीताल में ट्रेडिशनल बंदीस बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से, अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 190 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं बृहस्पति और छंद है त्रिष्टुप।
1: अनर्वाणम वृषभम मंद्र जिह्वम बृहस्पतिम वर्धया नव्यमर्कैः गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आश्रण्वन्ति नवमानस्य मर्ताः। हे मनुष्यो, जिन द्वेष रहित बलशाली मधुरभाषी स्तुति के योग्य बृहस्पति देव के मधुर तेजस्वी एवं प्रशंसा के योग्य वचनों को मनुष्य तथा देवगण सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं, उनका गुणगान करो। तमृत्वया उपवाचः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसर्जि बृहस्पतिः सह्यंजो वरांसि विभवा भवत समृते मातरिश्वा। समयानुकूल की गई स्तुतियां बृहस्पति देव ग्रहण करते हैं। जिन बृहस्पति देव ने नई सृष्टि की रचना के समान देव बनने की कामना करने वाले मनुष्य को उत्पन्न किया, ऐसे वायु के समान प्रगतिशील बृहस्पति देव उत्तम वस्तुओं के साथ अपनी प्रचंड शक्ति से उत्पन्न हुए। उपस्तुतिम नमस उद्यतिम च श्लोकम यम सत् सवितेव प्रबाहु अस्य कृत्वा हन्यो यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्षा सस्तु विष्मान। जैसे सूर्य देव अपनी भुजाएं किरणों की तरह फैलाते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति देव याजकों की स्तुतियां अन्नादि एवं मंत्रों को स्वीकार करते हैं। बृहस्पति देव के क्रूरता रहित कर्तव्य से ही सूर्य देव भयंकर मृग सिंह जैसे की तरह ही बल संपन्न होते हैं। अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यं सद्यक्ष भृद्विचेताः मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पते रहिमायां अभिद्युन। इन बृहस्पति देव की कीर्ति द्युलोक और पृथ्वीलोक में सर्वत्र व्याप्त है। शीघ्रगामी अश्व के समान ज्ञानियों के भरण पोषण करता विशिष्ट ज्ञान संपन्न ये बृहस्पति देव सभी लोकों के सहयोग के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरिणों के संहारक शस्त्रों के समान बृहस्पति देव के ये शस्त्र दिन में

0: छल करने वाले कपटी असुरों को मारते हैं। ये त्वा देवो श्रीकम मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पज्राः न ढूढ्ये अनुददासि वामं बृहस्पते चयस इत्पियारुम। हे देव, जो धन का अहंकार करने वाले पापी वृद्ध बैल के समान जीवित हैं, आप उन दुर्बुद्धि ग्रस्तों को ऐश्वर्य नहीं देते हैं। हे बृहस्पति देव, आप सोमपान करने वालों पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। सुप्रैतुः सूयवसो न पंथा दुर्नियंतुः परिप्रीतो न मित्रः अनर्वाणो अभिये चक्षते नोपी वृता अपोर्णुवन्तो अस्थुः। हे बृहस्पति देव, सन्मार्गगामी तथा उत्तम अन्न वाले मनुष्य के लिए श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक रूप है तथा दुष्टों का नियंत्रण करने वालों के लिए मित्र के समान है। निष्पाप होकर जो मनुष्य हमारी ओर देखते हैं, वे अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत होने पर भी अज्ञान को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर बढ़ते हैं। संयम स्तुभो वनयो नयन्ति समुद्रम न स्रवतो रोधचक्राः सविद्वाम उभयम् चष्टे अंतर बृहस्पतिस्तर आपश्च गृध्रः। स्वामी को उत्तम भूमि प्राप्त होने तथा समुद्र को भवरों से युक्त नदियों का जल प्राप्त होने के समान ही बृहस्पति देव को स्तोत्र रूप वाणियां प्राप्त होती हैं। सुखों के अभिलाषी ज्ञानवान बृहस्पति देव दोनों के मध्य विराजमान होकर तट और जल दोनों को देखते हैं। एवा महस्तु विजातस्तु विश्मान बृहस्पतिर वृषभो धाई देवः स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हम सभी अति प्रख्यात शक्तिशाली महिमायुक्त सुखवर्षक बृहस्पति देव की प्रार्थना करते हैं। वे हमें वीर संतान युक्त गवादी धन प्रदान करें। हम सभी प्राप्त करने योग्य शक्ति संपन्न तथा तेजस्वी देव के ज्ञान से युक्त हों।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 190 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

0: इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

0: टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, गीत नया गाता।
1: हर बाधा को हराकर काल के कपाल पर नए गीत के सृजन का उद्घोष करती ये आवाज है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अद्भुत जीवन यात्रा थी उनकी, एक महानदी सी यात्रा जिसके चलने की निशानियां जीवन रेखा बन जाती हैं, जिसके तट पर पीढ़ियां पहुंचती रहेंगी और इस अटल जल आचमन से जीवन पनपता खिलता और महकता रहेगा। कितने ही आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के, एक कवि जिसकी पंक्तियां गहरी संवेदना से उपजी, एक पत्रकार जिसकी लेखनी सदा निर्भीक रही, एक राजनेता जिसने सिद्धांतों के साथ सत्ता को साधा, एक अद्भुत वक्ता कि जब किंचित लंबे अंतरालों के साथ वो अपने अंदाज में बोलते तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अध्यापक तथा संस्कृत के विद्वान होने के साथ ही एक उच्च कोटि के कवि भी थे। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी को कविता विरासत में मिली। उनके दादाजी पंडित श्यामलाल वाजपेयी एक प्रख्यात कथावाचक थे, अतः बोलने की कला में भी अटल जी निष्णात हुए। आगरा के पास स्थित बटेश्वर नामक गांव उनका पैतृक गांव था, लेकिन उनके पिता ग्वालियर में आबसे थे। उनकी मां का नाम कृष्णा वाजपेयी था, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं, और रामायण समेत कई धर्म ग्रंथ उन्हें कंठस्थ थे। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित कृति विजय पताका ने अटल जी के जीवन की दिशा बदल दी थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही वो आर्य कुमार सभा से जुड़ गए और जगह जगह होने वाले कार्यक्रमों में वो भाग लेने लगे। अटल जी शुरू से ही एक प्रखर वक्ता थे। उनकी इस कला से प्रभावित होकर ही श्री भूदेव शास्त्री ने उन्हें शाखा में बुलाया। इस तरह अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की। कानपुर के डीएवी कॉलेज से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने यहीं एलएलबी की पढ़ाई आरंभ की। रोचक तथ्य ये है कि उनके पिता ने भी उनके साथ ही एलएलबी की पढ़ाई शुरू की थी और पिता ने ये डिग्री हासिल भी की, लेकिन अटल जी ने बीच में ही इस पढ़ाई को विराम दिया और संघ के कार्य में जुट गए। देश और समाज की आवाज पर वो चल पड़े एक अटल यात्रा पर।

अटल जी को जैसे नियति ने पुकार लिया था और वो चल पड़े थे उस यात्रा पर जहां राष्ट्र सेवा ही उनका अनंतिम लक्ष्य था। कुछ समय बाद वो लखनऊ में राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक नियुक्त किए गए। उनकी उपस्थिति ने बहुत जल्द राष्ट्र धर्म की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना दी। कुछ ही समय में उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। इसी समय पांचजन्य का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संपादन का दायित्व भी अटल जी को ही सौंपा गया। इसके साथ ही उन्होंने दैनिक स्वदेश का संपादन भी आरंभ किया, जिसके मात्र कुछ अंक ही निकल पाए। इसके बाद वो काशी चले गए और चेतना साप्ताहिक का संपादन करने लगे। उन्होंने वीर अर्जुन का संपादन भी किया। इस समय तक अटल जी की कीर्ति पूरे देश में फैल चुकी थी। सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद इसके संरक्षक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक कर्मठ, निष्ठावान और भारतीय संस्कृति के ज्ञाता व्यक्ति की आवश्यकता थी। अनेक लोगों को परखने के बाद उन्होंने अटल जी का चयन किया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी। अटल जी भी इन सभाओं को संबोधित किया करते थे। इस तरह अब अटल जी की पहचान एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में हो गई। अटल जी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। साधनों की कमी की वजह से वो ये चुनाव ठीक से लड़ नहीं पाए और हार गए, लेकिन इससे उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। चुनावी रैलियों में उनके भाषण पर लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, उसने उनके आत्मविश्वास को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। सन 1957 में बलरामपुर से उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। अपने पहले ही लोकसभा भाषण में अटल जी ने कहा था, बोलने के लिए वाणी चाहिए, किंतु चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। उनके इस वक्तव्य पर सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। अटल जी जब संसद में बोलने के लिए उठे तो उन्होंने हिंदी में बोलना आरंभ किया। सभी सांसद उन्हें हिंदी में सुनना नहीं चाह रहे थे। कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया और सदन से बाहर भी चले गए। लेकिन अटल जी हिंदी को राष्ट्र का गौरव मानते थे, इसलिए उन्होंने तय कर रखा था कि वो हिंदी में ही भाषण देंगे। उन्होंने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। उन्होंने अंग्रेजी में न बोलने का संकल्प ले लिया था और फिर धीरे धीरे उनकी बोलने की शैली की प्रशंसा होने लगी। एक समय तो ऐसा भी आया कि अटल जी के भाषण सुनने के लिए सांसद विशेष रूप से सत्र में उपस्थित रहने लगे। भारत, भारतीयता और भारतीय भाषाओं से उनका विशेष प्रेम था। संयुक्त राष्ट्र में भी हमारी हिंदी पहली बार अटल जी की वाणी से ही गूंजी थी। 4 अक्टूबर सन 1977 को विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देते हुए उन्होंने आतंकवाद और विश्व शांति जैसे मुद्दों पर बात की थी। भारत ने पहली बार मानसिक और भाषाई दासता को तोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में गर्जना की। ये केवल भाषण नहीं था, बल्कि भारत के स्वाभिमान की वैश्विक घोषणा थी।

0: श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राष्ट्रनायक थे जिनके जीवन में कविता, संघर्ष, सहनशीलता, कर्तव्य और देशप्रेम एक साथ प्रवाहित रहे। बचपन में बटेश्वर में हो रहे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और 24 दिन बच्चा बैरक में रखे गए थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और आपातकाल के दौरान भी वो बहुत मुखर रहे और जेल भी गए। जीवन की हर परिस्थिति में कविता हमेशा उनके साथ रही। लगातार संघर्षों में वो तपते रहे और कुंदन बनते रहे। 4 दशकों तक वो भारतीय संसद के सदस्य रहे। वो 10 बार लोकसभा से तथा 2 बार राज्यसभा से चुने गए थे। वो एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा थे। एक ऐसी विचारधारा जो लोकतंत्र में संवाद सिखाती है, विपक्ष में मर्यादा सिखाती है। जहां मतभेद थे पर कटुता नहीं थी, दृढ़ता थी पर अहंकार नहीं था। इसीलिए राजनीति में वो अजात शत्रु कहलाए। पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनका अत्यंत सम्मान करते थे। अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार लगभग 13 महीने और तीसरी बार कार्यकाल पूरा किया। उनका कार्यकाल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके उनकी सरकार ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। उनके कार्यकाल में ही पड़ोसी देश से संबंध सुधारने के उद्देश्य से सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। लेकिन हमेशा की तरह भारत के साथ विश्वासघात हुआ और कारगिल युद्ध छिड़ गया और फिर भारतीय सेना का गौरव दुनिया ने देखा। अटल जी के कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ। ये नए भारत का नया उदय था। अटल जी ने अनेक कविताएं लिखी जो अत्यंत लोकप्रिय भी हुईं। उनकी कविताएं अपने ओज से हारते हुए मन में भी आशा का संचार कर देती है। वो कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मानवता का आह्वान करते हुए वो अपनी कविता ऊंचाई में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रूखाई कभी मत देना। अटल जी का संघर्ष हर अंधेरे से रहा, इसीलिए उन्होंने कहा, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। जीवन की नश्वरता का उद्घोष करते हुए वो कहते हैं, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। अटल जी की प्रमुख रचनाएं हैं, मेरी 51 कविताएं, संसद में 3 दशक, अमर बलिदान, रग रग हिंदू मेरा परिचय, बिंदु बिंदु विचार आदि। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। देश को ही सोचने और देश को ही जीने वाले श्रद्धेय अटल जी ने 16 अगस्त सन 2018 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे राष्ट्रनायक को।
1: मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए, आज झकझोर का तेज तूफान है, नाव खबरों की बाहों में मेहमान है, देख तूफान का तेवर डरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है स्वतंत्रता दिवस विशेष।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। अच्छा, जरा आते ही तुम्हें एक छोटी सी एक्सरसाइज दूं। जरा सोचो कि जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला होता है तो आप क्या क्या करने लगते हो? आप बाजार जाते हो, तैयारी करते हो कि कितना सज धज के स्कूल जाओगे। बहुत दिनों से आपके स्कूल में प्रैक्टिस होने लगती है, आप देशभक्ति के गीत गुनगुनाने लगते हो, स्वतंत्रता सेनानियों की यादें ताज़ा करने लगते हो, स्कूल में झंडारोहण के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, आप सोचने लगते हो कि इस बार जब लड्डू मिलेंगे तो हम किसके साथ बांटेंगे, या एक बार में सारे ख़त्म कर जाएंगे, या फिर हम स्कूल से लड्डू या टॉफ़ी या कुछ और जो मिलेगा मम्मा पापा के लिए बचा कर लाएंगे, है ना। और आपके हाथों में वो जो छोटे छोटे से बैंड होते हैं ना, जो बताते हैं कि हमारे तिरंगे के रंग कितने खूबसूरत हैं, आप सब इतने अच्छे लगते हो बच्चों, छोटे छोटे से तिरंगे हाथ में लेकर आप जब बहुत सरल भाव से इधर उधर आज़ादी का जश्न मनाते हुए घूमते हो ना, तो सच मानिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज वैसे ही मन बहुत खुश है, क्योंकि जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो सड़कों पर हाथ में तिरंगा लेकर इतने सारे बच्चे मुझे मिले, इतने बच्चे मिले। एक जगह एक गाना वहाँ चल रहा था, ये मिट्टी के बेटे, और ये गाना इतना गहरा है ना कि वो वीर जवान बच्चों जो अपने घर लौट कर नहीं आते, हमारे धरती की, हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और वो जो कभी लौट कर नहीं आते, उनका बलिदान याद करने का दिन होता है, है ना। और आप भी बहुत सारे गाने याद करते हो, गाते हो, स्टेज पे परफॉर्म करते हो, और इस तरीके से हंसी खुशी आप हम सभी लोग अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि जब मैं इस देशभक्ति गीत के बाद लौटूंगी तब आपसे स्वतंत्रता पर बात जरूर करूंगी, है ना। तो पहले सुनते हैं ये बहुत ही अच्छा सा एक देशभक्ति गीत, और फिर मैं और आप फिर से बातें करेंगे।

तो बच्चों मैं फिर से लौट आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। और गीत के पहले जो सवाल छोड़ा था मैंने कि आपसे स्वतंत्रता के मायनों की बात करनी है, तो अब शुरू करें अपनी बातें। अच्छा बच्चों चलो बताओ, क्या स्वतंत्रता का मतलब यही है कि हमें जो मन में आए वही करना है? क्या स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमें कोई रोके नहीं? क्या स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमें किसी भी बात की मनाही ना हो? या फिर स्वतंत्रता का अर्थ इससे कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है? बच्चों आज हम स्वतंत्रता को केवल इतिहास की एक दिन के रूप में याद नहीं रखें, बल्कि अपने जीवन के एक अनुभव के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, है ना? स्वतंत्रता दिवस को हम सब राष्ट्र के गौरव के दिन के रूप में मनाते हैं, और आज इस दिन के साथ साथ हम आपसे स्वतंत्रता के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। ये जो शब्द है ना स्वतंत्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। स्व यानी स्वयं, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने भीतर की आवाज जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या सही है, क्या गलत है और हमें किस दिशा में आगे जाना है, और तंत्र यानी व्यवस्था। तो आपकी स्वयं की व्यवस्था को थोड़ा बहुत तो आपको भी देखना होगा, है ना बच्चों? तो स्वतंत्रता का अर्थ कितना सुंदर निकलता है कि अपने भीतर की समझ और विवेक के आधार पर अपने जीवन को सही दिशा में चलाना। अब इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना बच्चों कि हम जो चाहें वो करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम इतने समझदार बने कि हमें हर बात के लिए कोई बाहर से आदेश देने की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए कि आप अपने कमरे में अकेले हैं, मम्मी पापा आसपास नहीं है, कोई आपको ये देखने वाला नहीं है कि आपने कमरा साफ किया है या नहीं, कोई ये पूछने वाला भी नहीं है कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, कोई देख नहीं रहा इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा रास्ता, कोई देख नहीं रहा फिर भी मैं स्व के बोध के साथ अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाऊंगा। बच्चों यही अंतर है, यही अंतर है स्व के बोध में, है ना? जब हमें स्व का यानी स्वयं का बोध हो जाता है तब हम किसी के आदेश की इंतजार नहीं करते, तब हम किसी के ऑर्डर का वेट नहीं करते, है ना? कि कोई कुछ कहेगा तब मैं बात मानूंगा। स्वतंत्रता ये भी कहती है कि मैं वही करूंगा जो मेरे लिए सही है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी सही है। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। लंबे संघर्ष के बाद भारत ने विदेशी ताकतों से, विदेशी शासन से मुक्ति पाई थी। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हमें अपने स्वयं की स्वतंत्रता को समझना बहुत जरूरी है। आज इतने सालों बाद हम इस शब्द के अर्थ को समझ रहे हैं। लेकिन पहले क्या आपको वो पंक्तियां याद हैं? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, याद है? बच्चों हर भारतीय के मन में ये ख्वाहिश है कि हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहराए। याद है पिछली बाल सभा में जब मैं आपसे बात कर रही थी खेलों की, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जब कोई खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन करता है और कहीं भारत का राष्ट्रगान गूंजता है तो सच मानिए आप कितनी भी दूर बैठे हों आप खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं, आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो देश का सम्मान आपके भीतर उतर आता है, आपके भीतर उतर आता है उस देश गान का मान। तो अब आप ये बताइए कि जब हम इतने गौरवशाली देश के वासी हैं बच्चों, तो क्या हम आलस्य से स्वतंत्र हैं? क्या हम झूठ से आजाद हैं? क्या हम डर से स्वतंत्र हैं बच्चों? कहीं हम क्रोध के गुलाम तो नहीं हैं? क्या हम मोबाइल के गुलाम तो नहीं हैं? क्या हम दूसरों की नकल किए बिना अपनी पहचान बना सकते हैं? हर बार मैं जब आप लोगों से मिलती हूँ ना बच्चों, तब कोई ना कोई बात मैं ऐसी ज़रूर करना चाहती हूँ जो
मैं भले ही चली जाऊं, ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, उसके बाद भी वो बात आपके भीतर उतर जाए। आप खुद से ये सवाल करें कि आज मनीषा दी ने इस विषय में बात की थी तो वो बात तो सही है, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना? तभी तो इस कार्यक्रम के कोई मायने हैं बच्चों, वरना प्रोग्राम सुनने के बाद आप तुरंत भूल जाएं, कहीं दूसरी जगह स्विच कर जाएं, क्या मतलब निकलेगा? तो मैं बहुत बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ लिखती हूँ और सोचती हूँ कि जब प्रोग्राम होगा तब मैं आपसे ये सारी बातें करूँगी। जैसे एक बात और अभी मैंने आपसे कही थी बाल सभा में कि बच्चों, हमें दूसरों की नकल करके अपशब्द या बुरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पता है क्यों? क्योंकि कई बार हम दूसरों को देखकर ऐसे काम कर जाते हैं बच्चों कि हमारा स्वतंत्र, मतलब हमारे स्वयं का तंत्र बिगड़ जाता है बच्चों, है ना? हम अपने नहीं बल्कि दूसरों के गुलाम हो जाते हैं, हम अपनी सोच पे नहीं बल्कि दूसरों की सोच पे चलने लगते हैं, है ना? जैसे हमें पता होता है कि हमारा पसंदीदा खाना क्या है, हमें पता होता है कि हमारा पसंदीदा खेल क्या है, हमारा कार्टून कौन सा पसंद है, हमें सब कुछ पता होता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन हमारे साथ में जो कमजोरियां हैं, जैसे हमें जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जैसे कि हम किसी की मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, यहीं पे तो समझना है कि सिर्फ अधिकार को पहचानना ही स्वतंत्रता नहीं है बच्चों, अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, अपने कर्तव्यों का बोध बहुत ज़रूरी है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है हम इसे ऐसे ही ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। अब आप सोचोगे बच्चे इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये गीत सुनते हैं, उसके बाद लौटकर बताऊंगी कि बच्चे अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपने वो गाना सुना है ना, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, है ना? तो चलिए आज नन्ने मुन्ने राहियों से हम बात करेंगे गाने के बाद कि आप किस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं।

लौट आई हूँ मैं बच्चों फिर से और अब कर रहे हैं हम आपसे बाल सभा में बातें। और आज हम स्वतंत्रता के असली मायने बच्चों के लिए क्या हो सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। बच्चों, हम एक आज़ाद देश के वासी हैं और इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए कोई नहीं है। हमें इतनी सारी चीज़ों का अधिकार मिला है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन, अपने कर्तव्यों को कैसे निभा रहे हैं, इस पर हमें आपसे गाने के बाद बात करनी थी। बच्चों, एक बात बताइए, क्या आप भी ये सोचते हैं कि मैं इस देश की मदद कैसे कर सकता हूँ? चलिए मैं आपको बताती हूँ। छोटे छोटे बच्चे ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनका, उनकी उम्र के हिसाब से जो उनको काम दिए गए हैं, जो कर्तव्य हैं, अगर वो भी अच्छे से निभाएंगे तो बच्चों अनजाने में वो देश की सेवा ही कहलाएगी। अब आपको बताते हैं कैसे। जैसे आपका काम है उठकर पढ़ना, सही समय पर अपना हर काम पूरा करना, क्योंकि बच्चों आप देश का भविष्य हो। अगर आप आलस करोगे, आप अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से चीज़ें नहीं समझोगे, तो पता है क्या होगा? आप में जो संभावनाएं हैं कि कोई बड़ा होकर देश का वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा होकर देश की सेना में जाएगा, कोई बड़ा होकर बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और देश का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखेगा, तो ये बताइए कि उसके लिए आपको कदम तो अभी बढ़ाना है ना? बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना? तो फिर ये देश की सेवा नहीं हुई कि आप अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से चलें बच्चों? अब दूसरी बात, एक सेवा और है। आपने देखा है जब आप सड़क पर निकलते हैं तो कहीं भी कोई थूक देता है, कहीं भी आप देखिए गंदगी कर देते हैं। बच्चों, अगर ऐसा करते आप किसी को देखें तो बहुत आदर के साथ उसे टोकें। कैसे? अंकल, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्लीज इसे गंदा मत कीजिए। कहीं घूमने जाएं, जैसे देश में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत ऐतिहासिक इमारतें हैं, बहुत अच्छी नदियां हैं, बहुत अच्छे जंगल हैं। अब आप सोचिए कि बच्चे देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले जिम कॉर्बेट गई थी, क्योंकि मुझे भी जंगल के राजा से मिलना था, पर जंगल के राजा तो मुझे नज़र नहीं आ पाए, लेकिन हाँ मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे नज़र आए जो उस जंगल में गाड़ी में चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया पता है? धीरे से अपना पैकेट लिया और जंगल में फेंक दिया। अब उन्हीं में से एक बच्चे ने ड्राइवर से बोला, भैया गाड़ी रोकिए। ड्राइवर ने कहा, नहीं यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते बीच जंगल में। तो उसने कहा, नहीं भैया प्लीज़ कुछ करिए, क्योंकि एक बच्चे ने चिप्स का पैकेट फेंक दिया है। अगर वो पैकेट किसी जानवर के मुंह में आया तो हो सकता है उसे नुकसान हो। ड्राइवर को बात समझ में आई, उसने कहा, बच्चों आप में से कोई नीचे नहीं उतरेगा, मैं ये काम करता हूँ। कोई बच्चा नीचे नहीं उतरा, ड्राइवर जल्दी से फुर्ती से नीचे उतरे, उन्होंने वो पैकेट उठाया और सबको समझाया कि देखिए ये बच्चा कितना अच्छा है, इसने जंगल आकर ये ख्याल रखा कि हम अगर जंगल घूमने आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर कचरा नहीं करना है। क्यों बच्चों, ये देश की सेवा हुई कि नहीं हुई? उसको स्व का बोध है ना बच्चों को? बताइए वो जो बच्चा है वो आपसे थोड़ा अलग है या नहीं? है ना, वो देश का एक बहुत अच्छा नागरिक बनेगा बड़ा होके, और वो अभी भी बहुत अच्छा नागरिक है। वो देश का भविष्य उज्ज्वल करेगा, क्योंकि कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जब भी आप कोई भी ऐसा काम करें जो आपको लगता है इस पर डांट पड़ेगी, तो सोचिएगा कि वो काम पर डांट क्यों पड़ेगी। कहीं वो काम गलत तो नहीं, कहीं वो काम आप किसी से छुपा कर तो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे एक और छोटी सी बात सुनिए। अभी क्या हुआ, थोड़े दिनों पहले मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर बहुत सारी कोचिंग भी हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो मैं देख रही थी कि एक बुजुर्ग दंपत्ति सड़क पार कर रहे थे, तो वहाँ लगभग 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा आगे बढ़ा और उसने उस बुजुर्ग दंपत्ति से पूछा, मैं आपकी कोई मदद करूं? जो 2-3 बच्चे और थे वो हंसने लगे।
क्या है, किसी के भी पास जाकर मैं मदद करूं पूछने लगते हो, उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि वो बच्चा कितने प्यार से पूछ रहा है मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति हैं, हाँ, और उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन ये जो बाकी बच्चे जो उसके दोस्त थे, वो उसकी हंसी क्यों उड़ा रहे थे? पता है क्यों उड़ा रहे थे? मैं बताऊं? क्योंकि उनके स्वतंत्र यानी खुद का तंत्र बिगड़ा हुआ है जो खुद की व्यवस्था है ना कहीं गड़बड़ाई हुई है। क्योंकि हम सब बच्चों किसी ना किसी व्यवस्था से, अनुशासन से अपना जीवन जीते हैं, है ना। जैसे हमको सिखाया जाता है कि बच्चों दूसरे की मदद करनी है, हो सकता है उन बच्चों को भी सिखाया गया हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन बच्चों का साथ पकड़ा जो कहीं ना कहीं इस बात को अच्छा नहीं समझते थे, और उन्होंने यही सीख लिया कि नहीं, हमें तो किसी की मदद नहीं करनी, और अगर कोई दूसरा करेगा तब भी हम हंसी उड़ाएंगे। समझ गए ना? तो हमें खुद की व्यवस्थाएं नहीं बिगाड़नी है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हम जो करते हैं, जैसे लोगों के संग रहते हैं, जैसी संगत करते हैं, जैसा अनुशासन हम अपने जीवन में बरतते हैं, बच्चों हम उसी का नतीजा होते हैं। हम कैसे इंसान बनेंगे ये हमारे हर दिन पर निर्भर करता है बच्चों। अगर आज हम अपने कपड़े फैलाकर स्कूल चले जाते हैं, मम्मी उसे समेट कर फिर से अलमारी में रखती है, तो बच्चों यकीन कीजिए कि जब आप हॉस्टल जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हॉस्टल में मम्मी नहीं होगी बच्चों। आप देखते हैं सेना में जो लोग भर्ती होते हैं उनको कितने कड़ी मेहनत करवाई जाती है, उनको उस दिन के लिए तैयार किया जाता है कि जब देश की सीमा पर आपकी जरूरत हो तब आप ये ना कहें कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा। उन्हें हर विपरीत स्थिति से जूझने का, लड़ने का तरीका सिखाया जाता है बच्चों। उन्हें दिमागी रूप से इतना मजबूत कर दिया जाता है कि जहां हम लोग खड़े नहीं हो सकते, माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां वो लोग दिन रात खड़े होकर हमारी देश की सीमा की रक्षा करते हैं बच्चों। तो ये एक दिन में नहीं होता, ये कई सालों की कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद होता है। तो एक बार जरा सोचिए कि जरा सी बारिश होते ही, जरा सी धूप तेज होते ही अगर हम घर के अंदर छिपकर ये बोल देते हैं कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, मौसम ठीक नहीं है, तो क्या आप आने वाले कल के लिए तैयार हैं? पूछिए खुद से। जो बार बार आज के पूरे बाल सभा में आपको मैं याद दिलाऊंगी वो है स्व का बोध, है ना। हमें स्वयं का ज्ञान होना बच्चों बहुत जरूरी है, और यही सच्ची स्वतंत्रता भी है बच्चों, कि आप अपना खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रखें। आप हर बार खुद से ये प्रश्न करें कि मुझे अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य याद हैं क्या? अब आप सोचोगे इतने से बच्चों के क्या कर्तव्य, तो बच्चों बहुत सारे काम हैं। अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, आप जहाँ रहते हैं आसपास सफाई रखिए, वो भी अनजाने में, सच मानिए आप देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई पालतू जीव अगर परेशान हो रहा है उसको कभी पानी रख दीजिए, गाय कभी निकले उसको पानी रख दीजिए, ध्यान रखिए कि उसको रोटी दी गई है या नहीं दी गई, ये भी अनजाने में आपके कर्तव्य हैं कि जो लोग बोलते नहीं हैं उनका ख्याल हम कैसे रखें, है ना। कई बच्चे आपने देखा होगा कोई गाय निकल रही है, कोई बछड़ा निकल रहा है, तो उसको अनजाने में ही खेल खेल में पत्थर मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। यही तो हर दिन हम जो निखर रहे हैं, हम जो बिगड़ रहे हैं, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छी आदतें सीखेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और नहीं तो एक बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी कि बूंदों का आखिर क्या था दोष। एक बूंद समुद्र में गिरेगी और मोती बन जाएगी, एक बूंद नाली में गिरेगी और कीचड़ कहलाएगी, तो बूंदों का आखिर क्या था दोष। बच्चों यही संगत की बात आ जाती है कि आप कैसे लोगों के संग रह रहे हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है, इस पर आपका जीवन बहुत निर्भर करता है। बच्चों अब हम आपसे बात करने वाले हैं उन वीर जवानों की जिन्हें आज हमें सिर्फ याद नहीं करना है, हमें हर दिन,
हर दिन उनके लिए सोचना है कि वो किस तरह हर परिस्थिति में हमारे देश की सीमा पर खड़े हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं। बच्चों, जब हम अपने घरों में परिवारों के साथ

0: अपरवाही देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, इसलिए वो मौसम, सुविधा, नींद कुछ नहीं देखते, बस देखते हैं तो अपना कर्तव्य। हम जो रात को चैन की नींद लेते हैं ना बच्चों, वो इसीलिए ले पाते हैं कि कोई जवान सीमा पर जाग रहा होता है। जब हम फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, तब कोई जवान पूरा परिवार छोड़कर हजारों हजारों किलोमीटर दूर बैठा होता है। तो आज हम सब अपने बहुत सारे सैनिकों से गर्व से ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो उसके पीछे आप जैसे वीर जवानों का साहस, अनुशासन और त्याग शामिल है। हम सब अपनी अपनी जगहों पर एक बार खड़े होकर दिल से अपने सभी सैनिकों को सैल्यूट करते हैं। आप हैं इसलिए हम हैं। तो बच्चों, बस अब बाल सभा में चलते चलते आपका और हमारा, हम सबका संकल्प लेने का समय आ गया है। आंखें बंद कर लीजिए। आज जबकि हम स्वतंत्रता दिवस पर यह विशेष प्रस्तुति कर रहे हैं, तब पहला संकल्प यही है कि मैं असली मायने में स्वतंत्रता का अर्थ समझूंगा या समझूंगी। अधिकारों के साथ मैं अपने कर्तव्यों का भी निर्वाहन करने में पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी। मैं अपने देश की विरासतों को, अपने ऐतिहासिक इमारतों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वहां हमेशा साफ सफाई रखूंगा या रखूंगी। प्रकृति की रक्षा करूंगा। किसी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा आगे हाथ बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो बच्चों, आंखें खोल लीजिए। इन्हीं संकल्पों के साथ आपसे विदा लेने का भी समय आ गया है। तो बस चलते चलते कुछ बातें कि हम अपने वीर जवानों की कुर्बानियों को हमेशा हमेशा याद रखेंगे। हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, अपने कर्तव्य निभाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे, और हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे पेरेंट्स को कभी भी जरा सा भी सिर झुकाना पड़े, है ना? तो चलो, अपना ख्याल रखिए और अगली बार मिलने के वादे के साथ चलती हूँ। चलते चलते एक बार अपनी जगह खड़े होकर जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा। कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और आपके साथ मैं मनीषा चतुर्वेदी। अब अनुमति दीजिए, चलती हूँ। नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 एफएम, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ वर्षा सिंह।
2: और मैं हूँ दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: मैं हूँ धरा।
1: मैं हूँ बादल। ये तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए हमें अब अपने उन स्थायी चीजों को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: और ये भी तो है कि पृथ्वी के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका है, इसे भी पहचानना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग देना हम सभी का कर्तव्य है, तभी हम एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर पाएंगे।
0: बादल, तो आज हम श्रोताओं को क्या जानकारी देने जा रहे हैं?
1: धरा, आज तो हम बात करने से पहले एक बहुत ही सुंदर पंक्तियों को सुनाना चाहेंगे, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि चर्चा किसकी होगी। ये कविता हमने बचपन में सुनी थी।
0: ऐसी बात है तो सुनाओ भाई, हम भी सुनने को तैयार हैं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर जैसे तोंद फुलाए, कुछ हाथी जैसे सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहकर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके चुपके उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल।
0: अब मैं भी बता दूं कि ये पहले तो सागर की लहरों पर होते हैं, फिर भाप बनकर आकाश की यात्रा करते हैं और फिर आसमान के राजा बन जाते हैं, है ना?
1: अरे वाह, आपने तो कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कह दी।
0: श्रोताओं, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो खिड़की के बाहर देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम बड़े बड़े रुई के गुच्छों के बीच से गुजर रहे हैं।
1: हाँ, और जब आसमान की ओर धरती पर खड़े होकर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूल गोभी के टुकड़े कर आसमान में फैला दिए हों।
0: सही है, और कभी कभी ये बादल हमें विभिन्न आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं।
1: हाँ हाँ, बचपन में तो हम इन आकृतियों को देखकर भाई बहनों और मित्रों के साथ प्रश्नोत्तर भी करते थे।
0: तो आज हम बात करते हैं बादलों की। ये बादल क्यों है, क्या है, क्या अब पता चला आपको?
1: दरअसल बादल पानी की भाप से बनी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के समूह होते हैं।
0: हाँ, और जैसा आपने कही बचपन की बात, तो अक्सर आसमान को देखकर हम कल्पना करते हैं, या कहानी कविताओं में भी हम पढ़ते हैं और कल्पना करने लगते हैं।
1: हाँ, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पार भी कोई जादुई संसार है जहाँ शांति और खूबसूरती है, और वो जगह दुख और चिंता से परे है।
0: बिल्कुल सही कहा, बचपन में हमें कुछ ऐसा ही लगता था ना। पर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो बादल वायुमंडल का एक भाग है जो सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर अद्भुत रंग और बनावट में दिखाई देते हैं।
1: सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी के स्रोतों, नदियों, जलाशय आदि में मौजूद पानी की बूंदें भाप में बदल जाती है।
0: हाँ, इसके साथ ही पेड़ पौधे भी भाप के रूप में कुछ मात्रा में पानी छोड़ते हैं।
1: ये भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जाने से ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है,
0: और फिर ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती हैं। ये बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि ये हवा में तैरती रहती हैं। बस इन तैरती बूंदों के समूह को ही बादल कहते हैं।
1: यानी वायुमंडल में जब पानी की छोटी छोटी बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब बादल बनते हैं।
0: और हाँ, जब बादल छाते हैं तो हमें कितनी ठंडक का एहसास कराते हैं, गर्मी से राहत देते हैं।
1: धरा, क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों होता है?
0: आप बताइए ना।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और पृथ्वी के नजदीक होने से ये हमें दिखाई भी देते हैं और अंतरिक्ष की तरफ से रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है।
0: बादलों के बनने का एक तरीका ये भी है कि पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है, इस कारण हवा ऊपर की ओर उठती है, पानी की बूंद एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है।
1: जो हम पहले बात कर रहे थे फूल गोभी के आकार के बादलों की, इस तरह के बादल हमें तब दिखाई देते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है।
0: और ये बादल सूर्य की रोशनी के कारण अधिक साफ, सफेद और चमकीले रूप में हमें दिखाई देते हैं, जबकि ये होते भी गहरे ही हैं।
1: इन बादलों को क्यूमुलस बादल कहते हैं और अगर मौसम और अधिक साफ होता है तो ये ऊंचाई और आकार में बड़े होते जाते हैं।
0: ऐसे बादल ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय बनते हैं, क्योंकि समुद्री हवा नम होती है और फिर सतह गर्म हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये बात रात में उलट जाती है, क्योंकि तब समुद्र भूमि के मुकाबले गर्म हो जाता है और समुद्र के ऊपर ऐसे बादल बनते हैं।
0: इस तरह के बादल हल्की वर्षा करने में भी सक्षम होते हैं। ये तो हुई साफ मौसम की बातें, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि धुंध छा जाती है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता।
1: जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और वो ऊपर इकट्ठे होकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाती है।
0: हाँ, पर कभी कभी परिस्थितिवश ये हवा के बिना उठे ही भाप पानी की बूंदों में बदल कर कोहरे का रूप ले लेता है और वायुमंडल में जमीन की सतह से थोड़ा ही ऊपर फैलता रहता है।
1: हाँ हाँ, हमने सर्दी के दिनों में देखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही है, पर इस कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है और हम अधिक लंबी दूरी पर नहीं देख पाते। ऐसे में हमें सड़क पर गाड़ी चलाते समय बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि ये दृश्यता कभी कभी कुछ मीटर की ही रहती है।
1: हाँ धरा, ऐसा इसलिए होता है कि आर्द्रता 100% होने के कारण भाप की मात्रा स्थिर हो जाती है। इससे ज्यादा भाप के शामिल होने के कारण या तापमान से कम होने से मौजूद सघन पानी की जो बूंदें हैं वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं।
0: अपने आकार, आकृति और रंग के अनुसार बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, घन के आकार के, कोमल रेशेदार, भूसे के ढेर के समान, काले, हल्के सुरमई, सफेद आदि। ये वायुमंडल के अलग अलग स्तरों पर पाए जाते हैं।
1: ये तो हम जान गए कि जब हवा नम होती है और उसके अंदर भाप होती है तब बादलों का निर्माण होता है। यदि हवा गर्म है तो उसमें अधिक मात्रा में भाप होती है।
0: हाँ, और जब हवा में मौजूद नमी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब भाप और बर्फ एक साथ मिलकर बादल बन जाते हैं और तब बारिश, बर्फबारी, ओलों की वर्षा होती है।
1: हाँ धरा, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था।
0: कोई बात नहीं, इस विषय पर आगे और अधिक विस्तार से बात करेंगे, अभी तो बात सिर्फ बादलों की करते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: आपको पता है बादलों को उनकी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है?
1: हाँ हाँ, मैंने सुना है सबसे ऊंचे बादल लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये पतले और पूरी तरह से बर्फ से बने होते हैं।
0: हाँ, पर ये वर्षा वाले बादल नहीं होते, बल्कि जब ये आसमान में नजर आते हैं तो सही अनुमान होता है कि मौसम अच्छा और साफ रहेगा।
1: जो बादल लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पानी की बूंदें ठंडी होने के बाद जब जमने लगती हैं, तब उन ठंडी पानी की बूंदों के समूह से इन बादलों का निर्माण होता है।
0: और ऊंचाई पर ही पाए जाने वाले पतले और एक जैसी परत वाले बादल भी होते हैं, जिसके अंदर बर्फ के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, परंतु इनको खोजना मुश्किल होता है।
1: और छोटे छोटे आकार के भी बादल होते हैं जो आकाश में हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बह रहे हों। ये होते तो सफेद हैं, परंतु हमें ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ बादलों की ऊंचाई 2,000 से 6,000 मीटर की होती है। जब ये आसमान में नजर आते हैं तब ये तूफान या भारी वर्षा होने का संकेत देते हैं।
0: इस तरह के बादल हमेशा समूह में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन दो बादलों के बीच से सूर्य हल्का हल्का दिखाई देता है।
1: और जब तूफान आने वाला होता है या तेज बारिश या फिर बर्फ वाली बारिश होने वाली होती है, तब इस प्रकार के बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं।
0: बादल फट गया, ये भी आपने सुना होगा।
1: हाँ हाँ धरा, बिल्कुल सुना है, पर ये होता कैसे है ये हम नहीं जानते।
0: पर ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण झील, तालाब, समुद्र, नदी आदि का पानी सूखता है। पानी के ये छोटे छोटे कण आसमान में इकट्ठे होकर बादलों का रूप ले लेते हैं।
1: बिल्कुल जानते हैं।
0: तो ये बादल पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जन के साथ ही इनमें प्रकाश होता है और बिजली चमकती है।
1: हाँ हाँ, ये तो अक्सर बारिश के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती है तब तो ऐसा होता ही है।
0: हाँ, जब ये बूंद बूंद करके गिरने वाला पानी इसी तरह तेजी के साथ इकट्ठा आकर धरती पर गिरता है तो उसे ही बादल फटना कहते हैं।
1: इसे हम आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बलून में बारीक बारीक छेद करें और फिर उसमें पूरा पानी भर दें, तो पहले तो पानी बारिश के हल्की बूंदों की तरह धीरे धीरे उन छेदों से बाहर आकर नीचे गिरेगा, है ना?
0: हाँ, पर अगर इन बारीक छेदों को अचानक से झटके से तोड़ दो तो एकदम सारा पानी पूरे वेग से बाहर आकर नीचे गिरेगा, और इसे ही कहा जाता है बादल फटना, या ये स्थिति बादल फटने जैसी होती है।
1: ये बादल हवाओं के दबाव और रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकराकर एकदम फट जाते हैं और अपने अंदर भरा सारा पानी उंडेल देते हैं, और बादल फटने से बारिश इतनी तेज होती है कि उसे मापना भी मुश्किल होता है।
0: बादल फटने को वैज्ञानिक जो वजह मानते हैं उसमें जब एक आवेग के बादल आसमान में किसी ऐसी जगह मिलते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों एक तरफ से उन पर दबाव डालती हैं, या जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे इन बादलों से टकराता है तो ये बादल फट जाते हैं।
1: और इसी के बीच बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ बारिश होती है। ऐसे में एक सीमित इलाके में ही कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है, जिसकी रफ्तार लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
0: हाँ, और कुछ ही मिनटों में 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, यानी कुछ ही पलों में आसमान से नीचे उतर कर एक पूरी नदी धरती पर आ गिरती है।
1: इससे उस इलाके में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा अक्सर पहाड़ों और नदी वाले इलाकों में ज्यादा होता है।
0: हाँ, क्योंकि उस इलाके में गर्म और ठंडी दोनों हवाएं चलती हैं, और वहाँ से गुजरने वाले बादल इनकी चपेट में आ जाते हैं।
1: तब वहाँ भारी बारिश के कारण ग्लेशियर टूटकर गिरने लगते हैं, जमीन खिसकने लगती है, और घर देखते ही देखते टूटकर जमीन पर आकर धसने लगते हैं।
0: बादल फटने की एक वजह और भी है, वैज्ञानिक इसको बताते हैं। वे ये बताते हैं कि बादल काफी मात्रा में नमी या पानी लेकर आसमान में चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तब उससे टकरा कर ये फट जाते हैं।
1: वैज्ञानिक जो भी बादलों के लिए अनुमान लगाएं या शोध कर बताएं, पर बादलों को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाना सदियों से प्रचलित है।
0: हाँ, ऋग्वेद में बादलों को वर्षा का अश्व माना गया है, और मौसम का अनुमान पूरी दुनिया में बादलों के आधार पर ही लगाया जाता है।
1: हाँ धरा, और हिंदी साहित्य के कवि घाघ और भड्डरी ने क्या खूब ही कहा है, कारा बादल जी डर पावे, भूरा बादल पानी लावे, शुक्रवार की बदरी बिन बरसे ना जाए, जैसी पंक्तियाँ बादलों को लेकर कही हैं।
0: हाँ, और महाकवि कालिदास ने तो अपनी एक पूरी कृति को ही इन्हीं बादलों को समर्पित कर दिया है। ये कृति है मेघदूतम।
1: वाह, हमारे पुराण सैकड़ों सालों से इन्हीं बादलों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें देखकर, इनकी टोह लेकर, इनकी तह तक पहुंचकर बादलों के रूप रंग और इनके ठौर ठिकानों के आधार पर ही अपने अनुभव को मौसम के अनुमान में ढाला है।
0: पता है, बादल इसी आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया गया है, जैसे बादलों में सफेद धागों के गुच्छे जैसे दिखाई देने वाले जिनमें रेशम सी चमक होती है, ऐसे बादलों को पक्षाभ मेघ कहा जाता है।
1: अच्छा, इसी तरह ये मेघ सफेद या भूरे रंग के भी होते हैं। हम जब इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे बादलों के छोटे छोटे ढेर इकट्ठा हो गए हैं। रुई के ढेर जैसे नजर आने वाले इन बादलों को कपासी मेघ कहते हैं।
0: बादल चाहे काले हों या सफेद, हमें ये सदा सम्मोहित करते हैं। जब तेज गर्मी से हम हलकान होने लगते हैं, तब आसमान में इन मेघों के आने की प्रतीक्षा करते हैं।
1: हाँ धरा, बिल्कुल सही कहा। और सबसे अधिक कौतूहल तो हमें बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने पर होता है। और जब ये बहुत अधिक जोर से गरजते हैं या बिजली कड़कती है तो मन में अजीब सा भय भी पैदा हो जाता है।
0: आपकी बात सही है। एक लंबे समय तक तो बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना सुनकर इसे दिव्य प्रकोप से भी जोड़ा गया।
1: हाँ धरा, जबकि सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग से सिद्ध किया था। उन्होंने बादलों से बिजली भी इकट्ठा की और बताया कि ज्यादातर बादलों में नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव चार्ज वाले बादलों की संख्या कम होती है।
0: पर बादलों से दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और दोनों तरह के बादल जब आमने सामने होते हैं तो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उनके बीच की हवा में बिजली उत्पन्न होती है।
1: हाँ, और यही बिजली गर्जना पैदा करती है। तब हमें आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी गर्जना बाद में सुनाई देती है।
0: और वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति और ध्वनि की गति में फर्क होता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, इसीलिए हमें चमक पहले और बिजली के कड़कने की आवाज बाद में सुनाई देती है।
1: बादल हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, वो भी दो तरीकों से। पहला तो ये कि बादल हमारे जल चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।
0: ये बादल बारिश और बर्फ, महासागरों और झीलों तथा पौधों और जानवरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हैं। यानी बादल हमारी इस पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि बादलों का पृथ्वी के तापमान पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये पृथ्वी के तापमान को ठंडा और गर्म दोनों करने में सक्षम होते हैं।
0: वो इस तरह के बादल सूर्य से मिलने वाली किरणों की गर्मी और रोशनी दोनों को रोक सकते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान ठंडा हो जाता है। हम सभी जब बादल छा जाते हैं तो इस तरह की ठंडक को महसूस करते हैं।
1: रात में बादल इसी तरह अपना काम करते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये बादल पृथ्वी को एक बड़े कम्बल में लपेट कर उसके तापमान को प्रभावित करते हैं।
0: हाँ, इस तरह हम कह सकते हैं कि बादलों के द्वारा ठंडा और गर्म दोनों प्रभाव होता है। यानी ये भी साबित होता है कि बादल इस कार्य में शक्तिशाली कारक है जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ धरा, हम ये भी कह सकते हैं कि बादल हमें धरती पर एक ठंडी जलवायु देते हैं जिसका आनंद हम बादलों के बिना नहीं ले सकते।
0: जी हाँ, ये बादल जहाँ अकाल या सूखा पड़ता है वहाँ बरसते हैं, तो मानव नहीं समस्त प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा करते हैं।
1: जहाँ नदियाँ, तालाब, कुएं, जलाशय आदि पानी के स्रोत सूखने की कगार पर आ जाते हैं, तब ये बादल वहाँ बरसकर उनका भी जीर्णोद्धार करते हैं।
0: किसान तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघ देखकर खुश हो जाते हैं और बादल बरसने पर उनकी फसलें लहलहा उठती हैं, पृथ्वी हरी भरी दिखाई देने लगती है।
1: हाँ धरा, बिल्कुल, अच्छी फसलें पैदा होने से धन धान्य और संपन्नता आती है। इससे केवल हम मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की प्यास मिट जाती है।
0: तो आज के कार्यक्रम में हमने बादलों के महत्व को जाना। अगले कार्यक्रम में हम फिर अपनी धरती को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी,
0: और मैं थी धरा यानी वर्षा,
1: और मैं था आपका दोस्त बादल यानी दीपक।
0: तो इस कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओं, ये दुनिया आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध के मैदानों की कोई तय सीमाएं नहीं होती और विजय के लिए केवल शक्तिशाली राष्ट्र का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि विजय के लिए शक्ति के साथ ही हमेशा ही मुस्तैद और तत्पर राष्ट्र का होना भी उतना ही जरूरी है। श्रोताओं, अपनी सदियों की परंपराओं से प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार, हिमालय से लेकर थार मरुस्थल तक भारतीय सशस्त्र सेना का हर कदम उभरते हुए भारत की नियति को आज आकार देता हुआ दिखाई देता है। सम्मान में निहित और नवाचारों से प्रेरित एक सशक्त और सुदृढ़ भारत के लिए आज हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों से भारतीय सेना नए कलेवर में अपना रूप ले रही है, एक अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में, जहां ज्ञान, डेटा, ड्रोन्स और नई तकनीकें सैनिकों के साथ समान गति से चलती हैं। कभी आयात पर निर्भर भारतीय सेना के हथियार अब स्वदेशी हैं और हमारा देश इनका निर्माता ही नहीं, निर्यातक है। थार से लेकर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर अंडमान तक हर प्रणाली पर स्वदेशी छाप है। ये कहना ना होगा कि इस नए स्वरूप में पहुंचने के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। देश की आजादी के बाद लगभग 8 दशकों में हमारी भारतीय सेना ने जिन महत्वपूर्ण पायदानों को पार किया है, इसका जिक्र हम इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में करते हुए चले आ रहे हैं और इसका हमने पूरा प्रयास भी किया है, और इस प्रयास का श्रेय हमारे कार्यक्रम विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर को है, जो हर कड़ी में बड़ी ही शिद्दत और गहन अध्ययन के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं से संबंधित जानकारी हमारे लिए संजोते रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय सेना को जानते समझते अब इस कार्यक्रम की हम अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। आइए आज की इस कड़ी में हम पुनरावलोकन करें, फिर से दृष्टि डालें हमारी सेनाओं की भूमिका पर, जिनके कारण आज हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें लगभग 20 वर्षों का सेना में अपनी सेवाओं का अनुभव है। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं,
2: जी,
3: आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: दिस ईयर वी आर 79th ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस।
2: जी,
3: एंड आई मस्ट से दैट द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट।
2: बिल्कुल,
3: इन दिस वर्ल्ड
2: जी, परिवर्तन हमेशा का नियम रहा है संसार का सर।
3: एग्जैक्टली, उसी हिसाब से देखें, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैज टेकन प्लेस, डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, अपग्रेडेशन हैज टेकन प्लेस इन अवर कंट्री। और उसी के साथ साथ जो है हमारी जो सेनाएं हैं वो भी निरंतर जो है अपग्रेडेड हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं।
2: बिल्कुल,
3: हमने सीरीज जब शुरू करी थी तो हमने 47 से शुरू करी थी
2: जी।
3: और हमने देखा था कि 47 से लेके अभी तक हमारी सेना निरंतर जो है वॉर्स में इन्वॉल्व रही है।
2: बिल्कुल,
3: 47 में, 65 में, 71 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा
2: जी।
3: और चाइना के साथ हमने 62 में युद्ध लड़ा। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कारगिल में रहा, सियाचिन में रहा, इंडियन आर्म फोर्सेस ने IPKF में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत श्रीलंका में जो है इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट किया
2: जी,
3: था।
2: बिल्कुल,
3: अभी भी अगर हम देखते हैं जो आर्म फोर्सेस हैं वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है एंटीटेररिज्म रोल में J&K में जो है यहाँ पे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है, उससे लड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो है काफी जगह पे इंसर्जेंसी से लड़ रही है। इसके अलावा भी जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को तो देखते ही हैं
2: जी बिल्कुल,
3: एंड एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए भी जो है आप देखते हैं कि जो सेना है हमेशा जो है तत्पर रहती है, हमेशा जो है उनका प्रयास रहता है, हर जगह जो है सपोर्ट करती
2: जी।
3: तो ओवरऑल इफ यू सी द आर्म फोर्सेस हैज बीन इन्वॉल्वड थ्रू आउट सिंस इंडिपेंडेंस गार्डिंग अवर नेशंस इंटरेस्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड सपोर्टिंग
2: जी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है।
3: तो ये सब हमने जो है हमारी जो पूरी सीरीज में हमने जो है देखा था
2: जी।
3: तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है वैसे वैसे जो है आर्म फोर्सेस भी कॉन्स्टेंटली जो है अपग्रेडेड हुई
2: जी। है। देश के विकास के साथ सेना का भी विकास
3: जी, सेना का भी विकास हुआ जी। और जो ये चेंजेस हैं अपग्रेडेशन है मॉडर्नाइजेशन है ये मतलब हर तरह से हर जगह पाए जाते हैं, जैसे की पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं
2: जी,
3: ट्रेनिंग में चेंजेस है, जो हमारे पास वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो उनका मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन रेगुलरली हुआ है। तो इससे जो है हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील करने की कैपेबिलिटी हमारी जो बढ़ती है,
2: बढ़ती गई।
3: आपका दुश्मन जो कर सकता है तो आपको वो अपग्रेडेशन होना चाहिए
2: कि आप मुकाबला कर पाए,
3: उसका आप मुकाबला कर सकते हैं,
2: ठीक
3: है, ओके, रादर आप उससे आगे रहें, ठीक है। हमने 47 के वॉर में जो देखा था जब शुरू हुआ था 47 में जो श्रीनगर में जब शुरू हुआ था, इफ यू सी वी वर इन काइंड ऑफ अ रिएक्टिव रोल, हमारे पर अटैक हुआ, कबाइलीज का अटैक हुआ, उसके बाद जो संधि साइन हुई थी एंड देन वी एंटर्ड, ठीक है, तो इट वाज अ रिएक्टिव एक्शन बिकॉज उस समय जो पॉलिसीज थी 47 में, क्योंकि हमने जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसी समय हम आजाद हुए थे, तो जस्ट फॉलोइंग द ब्रिटिश आर्मी, उसी तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, उसी तरह से हमारी पॉलिसीज थी, उसी तरह से हमारे बैटल फॉर्मेशंस थे। ब्रिटिशर्स के लिए तो हम तो इट वाज मोर ऑफ अ पुलिसिंग, ठीक है, डिफेंसिव रोल वाला
2: था।
3: तो उस समय जो हमारा रिस्पांस था एंड जो पॉलिसी के हिसाब से डिफेंसिव होता
2: था, केवल प्रतिक्रिया स्वरूप था,
3: प्रतिक्रिया स्वरूप। अभी अगर मैं सीधे जंप करूं 2025 जब हम आप सिंदूर देखते हैं, आप बंदर देखते हैं, तो यू फाइंड एब्सोल्युटली
2: पूरी मतलब तरह से विपरीत हो गई है वो हमारी जो नीतियां,
3: वी आर एक्चुअली प्रोएक्टिव
2: जी, बिल्कुल सर।
3: अब हम मतलब वो है कि आप कुछ करोगे तो हम पूरी हिम्मत रखते हैं और हम करके दिखाते हैं
2: जी।
3: तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा मतलब आई विल से अपग्रेडेशन है, एंड ये एक माइंडसेट चेंज होता है
2: जी।
3: और जब ये माइंडसेट ऐसा चेंज होता है तो इसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीजें
2: बदलती
3: हैं
2: जी, बिल्कुल सर।
3: जो ये मॉडर्नाइजेशन है या अपग्रेडेशन है वो किस कारण से आता है, पहले तो जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनसे हमें सबक मिले
2: जी, बिल्कुल सही।
3: हर लड़ाई ने हमें कुछ ना कुछ
2: सिखाया है,
3: हर युद्ध में हमें कुछ सीखा है, हर कॉन्फ्लिक्ट में सियाचिन हो, कारगिल हो, कहीं पे भी
2: जी,
3: IPKF हो, हर जगह हमने कुछ सीखा है। तो वो जो हमें सिखलाई मिली उसने हमको प्रेरित किया कि हम ये चेंजेस लेकर आए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो, चाहे वो इक्विपमेंट में चेंजेस हो, चाहे हमारे बैटल फॉर्मेशंस में हो, हमारी डॉक्ट्रिन्स में हो, ये ट्रेनिंग में है
2: जी।
3: तो ये चेंजेस उसके कारण है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है द चेंजिंग एंड द प्रेजेंट सिनेरियो, रीजनल इंटरनेशनल सिनेरियो,
2: आसपास क्या चल रहा है,
3: आसपास क्या चल रहा है, आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या
2: है,
3: मतलब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्या
2: है,
3: उनका जो इम्पैक्ट होता है। देन अगर हम देखें हमारी जो सीमाएं हैं उसपे हमें एक साथ दोनों सीमाओं पे यानी कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ
2: जी,
3: लड़ने की हमारी काबिलियत कैपेबिलिटी होनी चाहिए,
2: बिल्कुल सर।
3: तो वो एक और फैक्टर है
2: तो सर ये हमारे पारंपरिक दुश्मन है, समझ लीजिए, इस तरह से कहा जा सकता है,
3: कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो ये एक और फैक्टर होता है विच इज द की ड्राइविंग फैक्टर जो कि चेंजेस में अपग्रेडेशन में
2: जी, हमें हमारे सेना में हमेशा परिवर्तन बनाए रखना इनके लिए जरूरी है,
3: इनके लिए जरूरी, करेक्ट है ना। देन गार्डिंग अवर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, अगर देखें तो हमारा 90% जो ट्रेड होता है थ्रू सी लेंस
2: समुद्र के द्वारा
3: है तो उसमें हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सेफगार्ड करने का देन लाइक द एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री सर्विलेंस एंड एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री सो दैट हमारे ऊपर जो है कहीं मतलब स्पेस कुछ ना हो तो ये सब जो है की ड्राइवर्स होते हैं जिनके तहत जो है हम नई पॉलिसीज आती हैं नए ट्रेनिंग्स होती हैं ठीक है नए डॉक्ट्रिन्स बनते हैं नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होता है तो अगर हम अपने देश की बात करें
2: जी
3: हम सब जानते हैं कि जो हमारी प्रगति है इस समय
2: जी
3: उसमें निसंदेह अगले 25 साल में 20 साल में जो है हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो जाएंगे उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हमारी आर्म फोर्सेस भी
2: उसी के हिसाब से
3: तैयार हो
2: जी बिल्कुल
3: क्योंकि अगर एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है ठीक है पीसफुल एग्जिस्टेंस लेना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए उसके पास फोर्सेस हो
2: जी बिल्कुल
3: और वो फोर्सेस की कैपेबिलिटी भी उस हिसाब से हो ये जो है एक बहुत बड़ा जरूरी फैक्टर है ठीक है
2: जी
3: टुडे अवर फोर्सेस अगर हम अपने फोर्सेस की आज बात करें तो वर्ल्ड में इसको ऑलमोस्ट फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स कहा जाता है रिपोर्ट्स जो होती हैं उससे बेस पे कि व्हाट इज अवर स्ट्रेंथ व्हाट इज अवर इक्विपमेंट ट्रेनिंग सबको
2: मिलाकर
3: एंड आपको पता ही है कि हमारी भारतीय सेना में ये वॉलंटियर फोर्स है
2: जी स्वैच्छिक संगठन है
3: बिल्कुल एंड इट इज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वॉलंटियर फोर्स है
2: बिल्कुल सर
3: इसके अलावा जो है अगर आप देखें हमारी फौज को वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन मिशन ये सब जो चीजें हैं इसको देखते हुए ये जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसी तरह से जो है हमारा प्रोग्रेस भी रहा है ये है भी इसीलिए क्योंकि हमने जो है अपने आप को मॉडर्नाइज किया है और ये जो मॉडर्नाइजेशन है एडवांसमेंट है
2: जी
3: अगर आप देखेंगे पिछले दो दशकों में
2: बहुत
3: तेजी से हुआ है
2: जी बिल्कुल सर
3: और उसका कारण भी बहुत ही ज्यादा विदित है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्द 2009-2007 में ड्रोन यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग मतलब जो है आज ड्रोन हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग
2: जी बच्चा जानता है सर
3: जी उसके बारे में जो है तो डिफेंस फोर्सेस ने जो ये अडॉप्शन किया है टेक्नोलॉजी का इससे देखिए कम्बैट एफिशिएंसी बढ़ी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है एक और जो बात है
2: जी
3: जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयर फोर्स उनकी जो जॉइंटमैनशिप है उनकी जो काबिलियत है इकट्ठे काम करने की
2: जी
3: उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ क्योंकि इससे क्या है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली द कम्युनिकेशन
2: जी
3: ठीक है द ट्रांसपेरेंसी आज क्या है कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी से भी बात करने के लिए रहते हैं द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है हमें सबको मिलता है एक साथ मिलता है
2: सूचनाएं तुरंत मिल जाती
3: है बिल्कुल और समय पे जो है बिल्कुल जो रियल टाइम होता है वो मिलता है
2: हमने इसे सर ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छे से देखा
3: एग्जैक्टली
2: जो चल रहा था हमने उसको लाइव देखा कि क्या हो रहा है मतलब हर व्यक्ति ने देश के हर नागरिक ने इसे देखा
3: ये ऑफ कारगिल वॉर के बाद शुरू हुआ है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
2: जी
3: नॉट ओनली आई विल से कि अमंग द फोर्सेस इवन जो और भी एजेंसीज हैं
2: जी
3: जो डिसाइसिव एजेंसीज हैं वो भी जो है जुड़ती हैं उनसे भी मदद मिलती है
2: जी बिल्कुल
3: ओके और अगर हम जिक्र करें जो हमारी एडवांसमेंट है उसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं नेचुरल है उनका तो सबसे बड़ा योगदान रहता ही
2: जी,
3: है
2: सर,
3: और उनके कारण जो है बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमें 2019-20 में जो है आप देखा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अपॉइंटमेंट
2: हाँ जी ये नया पद
3: बनाया गया था
2: जी,
3: जिसकी डिमांड काफी टाइम से हो रही है ऑलमोस्ट कारगिल के बाद से भी चल रहा था
2: जी
3: ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड जो CDS होते हैं ये तो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ठीक है
2: सर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी इनकी काबिलियत क्या होती है इनको किस तरह से चयन किया जाता है सर
3: ठीक है इनके चयन प्रक्रिया ये रहती है कि ये मतलब लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के रैंक के होते हैं एंड पॉलिसीज के हिसाब से होता है कि उनकी कितनी एज होगी क्या होगा और तीनों सेनाओं में से कोई भी हो सकते हैं
2: अच्छा
3: आर्मी नेवी एयरफोर्स में से कोई भी जो है जो सीनियर होते हैं वो इसमें मतलब जो है बन सकते हैं.
2: अच्छा
3: हाँ. अब उनका अगर रोल देखें तो ही इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर ऑल द थ्री सर्विसेज. स्पेसिफिकली वो एक सर्विस के नहीं होते, वो तीनों के लिए देखते हैं. तो उसके कारण जो है जॉइंट मैनशिप जो है बढ़ता है. देन ही इज एबल टू मतलब दिस इज हिज प्राइम जॉब रादर कि जो एक्विजिशन है मतलब डिफेंस के लिए
2: जी.
3: उसको प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है, उनका बहुत बड़ा काम रहता है
2: जी. यानी किस तरह से बांटा जाएगा सोर्सेज को तीनों सेनाओं में.
3: एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ही कैन हैव ए होलिस्टिक व्यू कैसे किसको क्या जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली ही कैन एडवाइज द गवर्नमेंट, ही कैन एडवाइज सब जो है डिफेंस मिनिस्टर.
2: यानी इस तरह से वो सरकार और सेना के बीच की कड़ी है.
3: बिल्कुल
2: जी,
3: बिल्कुल सही बोला आपने. जो है वो एक कड़ी है जो कि मिसिंग थी.
2: बिल्कुल सर.
3: अभी एक और पॉलिसी आने हुए है जिसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड.
2: अच्छा.
3: अभी क्या है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जॉइंट मैनशिप में भी काम करते हैं
2: जी, जी.
3: लेकिन उनका अपना अपना एक रोल होता है. वॉर में भी अपना एक रोल होता
2: जी,
3: है. वो अपने हिसाब से होता है. अभी एक नया कंसेप्ट ये आने वाला है कि थिएटर कमांड होगा.
2: अच्छा.
3: थिएटर कमांड का मतलब होगा कि जैसे एक एरिया है तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है, आर्मी एयरफोर्स जैसे भी है,
2: जैसा भी कॉम्बिनेशन
3: है, वो एक ही कमांडर के अंडर में होंगे.
2: अच्छा.
3: नेचुरल है कि उसमें जो है रिएक्टिव अच्छा रहेगा, रिएक्टिव टाइम कम होगा ठीक है. तो उसके लिए जो है इवन कॉमन लॉजिस्टिक्स नोट्स रहेंगे ठीक है. और मतलब यू कैन से कि जो थ्रेट है उसको डील करने की हमारी क्षमता जो है बहुत
2: बढ़ जाएगी जी. बिल्कुल सर.
3: तो वेरी सून वील फाइंड दिस कमिंग अप ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया फंक्शनिंग के हिसाब से
2: जी
3: बनाए जाएंगे.
2: ओके.
3: तो अकॉर्डिंगली जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो ज्वाइंट ट्रेनिंग्स है, कोर्सेस है, सेमिनार्स, एक्सरसाइज है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है.
2: बढ़ गई.
3: टेक्निकल इंटीग्रेशन जो है वो काफी हाई है
2: जी.
3: अभी जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि तीनों सर्विसेज को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है
2: जी, जोड़ता है.
3: आप भी जानती हैं एक और चीज है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा जो एक कंसेप्ट है
2: जी,
3: सेल्फ रिलायंस, उसने डिफेंस के ऊपर जो है
2: जी,
3: उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है. आपने अपने अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम एक
2: निरातक की भूमिका में आ गए हैं सर.
3: बिल्कुल
2: जी.
3: है ना?
2: तो कहां तो हम हथियार आयात करते थे सेना के लिए. आज हम यूज तो कर ही रहे, उनका निर्यात भी कर रहे.
3: तो इंपोर्ट डिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स से जो है हम बिकम सेल्फ रिलायंस
2: जी. सेल्फ
3: रिलायंस जी. इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है हमारा बहुत बड़ा है
2: जी जी.
3: तो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है इसके तहत जो है हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है
2: जी,
3: उसमें जो है आत्मनिर्भरता का जो है फैक्टर जो है इमर्ज हुआ है. एंड जो हमारा नेशन है नाउ इट इज इमर्जिंग एज ए हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट
2: जी.
3: जहाँ हम बाहर से जो है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि मतलब इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
2: जी,
3: उसको अलाउ कर रहे हैं ठीक है. देन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनीज काफी आ गई हैं. एक और चीज है वो है जैसे डीआरडीओ जो हमारा है.
2: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि अंतरिक्ष में अनुसंधान जो है वो एक नया आयाम है. आकाश, धरती और जल तो था ही, अब एक अंतरिक्ष भी एक नया आयाम है जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है.
3: स्पेस
2: जी.
3: स्पेस कमांड.
2: हाँ जी, स्पेस के लिए
3: जिसके ऊपर आईएसआरओ काम करते
2: जी, इसरो काम करते हैं. तो सर इसका क्या उसमें भूमिका है हमारे सेना के लिए?
3: इसकी जो भूमिका है मतलब इन द सेंस यू सी द सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं
2: जी,
3: एंड नाउ वी हैव गॉट द डिफेंस सैटेलाइट्स
2: जी
3: ठीक है, जो कि हमारे को डिफेंस पे मदद मिलती है
2: जी,
3: हमारे ऑपरेशन प्लानिंग्स में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मदद मिलती है. एंड स्पेस इज गोइंग टू बी द न्यू एरिया
2: जी, वही
3: इन फ्यूचर
2: जी
3: फ्यूचर वॉर का एरिया. एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी डोमिनेट दैट. ओके
2: जी.
3: उसी तरह इसमें भी काफी जो है प्रगति
2: हुई
3: है और चल रही है ठीक है. इसी तरह से जो है हमारे डीआरडीओ से
2: हाँ जी जी,
3: तो इसमें जो है काफी गवर्नमेंट ने एनकरेजमेंट दिया है, एनहांस फैसिलिटीज बढ़ाई है, एंड इवन दे प्रमोटेड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो क्षेत्र में काफी जो है प्रमोशन है. इवन अगर आप देखेंगे कि इनोवेशन जो होती है, आपने देखा होगा आजकल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा
2: जी प्रोत्साहन दिया जा रहा है.
3: किया जाता
2: जी,
3: है
2: बिल्कुल।
3: तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस बोलते हैं, आईडेक्स बोलते हैं, जिसमें कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि डिफेंस से कनेक्टेड जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
2: जी,
3: और उनके लिए जितने नई टेक्नोलॉजीज हैं प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देते हैं, और उसके कारण जो है काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जाहिर है कि इन सब से जो है हमें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है,
2: बिल्कुल सर,
3: हमारे को मॉडर्नाइजेशन में मदद मिल रही
2: जी।
3: है। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसके कारण अगर आप देखें तो आज काफी जो है इक्विपमेंट जो हम बाहर से लगवाते थे, जैसे अभी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट हुए हैं, कम्बैट हैप्टर्स हैं हमारे पास, मिसाइल सिस्टम्स तो खैर हमारा मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे है। रिसेंटली वी हैव टेस्टेड द अग्नि 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को, ICBM को हमने टेस्ट किया है, एंड नाउ वी आर गनिंग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के 5000 किलोमीटर रेंज में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच इज न्यूक्लियर केपेबल, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मारक क्षमता जो है
2: बहुत बढ़ जाएगी,
3: बहुत बढ़ जाएगी। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जो है इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, जिसका कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें मिसाइल सिस्टम्स को देखेंगे तो वी हैव डन अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। सिमिलरली लाइक इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन्स हैं जो है इस समय, देन आवर केपेबिलिटीज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉरफेयर में काफी हद तक बढ़ गई है। ड्रोन्स के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, अभी तो इस टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है, हम देख भी रहे हैं यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा
2: जी,
3: है
2: बिल्कुल।
3: तो इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा अभी बढ़ा है
2: जी,
3: ये टेक्नोलॉजी को इतना जो है प्रमोट किया गया है कि इवन एट द बटालियन लेवल वी आर हैविंग
2: जी, ऑफ सिंदूर में तो हमने देखा सर इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ,
3: भरपूर इस्तेमाल हुआ
2: जी।
3: एंड मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बहुत अच्छी आई है जो मुझे लगती है कि जो हमारा स्मॉल आर्म्स एंड इक्विपमेंट है सोल्जर्स का,
2: हाँ जी,
3: उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। अभी लाइक हम AK-203 राइफल्स हमारे यहाँ बननी शुरू हुई, एंड बाकी भी जो है हमने जो इक्विपमेंट में जो बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है, जैसे जो रिमोट एरियाज हैं जैसे सियाचिन हो गया, कारगिल हो गया
2: जी,
3: वहाँ के लिए जैसे स्पेशल इक्विपमेंट है वो तैयार करना मौसम के अनुकूल
2: जी,
3: वहाँ पे रहने के लिए जो है शेल्टर्स जो है
2: जी,
3: वो हमने खुद
2: आधुनिक बनाना
3: जी, उसको किया है। और सिमिलरली लाइक कम्युनिकेशन एस्पेक्ट इट हैज टू चेंज्ड अ लॉट,
2: बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आए, आमूल चूल परिवर्तन है सर, संचार के कारण, मोबाइल के कारण।
3: आप कह सकते हैं मैं अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पे रहा हूँ मतलब जहाँ 6-6 महीने मेरी घर से कभी बात नहीं होती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि वो लोग अपने घर से रोज बात कर लेते हैं,
2: क्या बात है।
3: तो इट्स अ मेजर चेंज, एंड इससे क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन ने एक बहुत बड़ा बदलाव ये लाया है, नाउ इट हैज गॉट द वीडियो फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, तो कमांड एंड कंट्रोल एस्पेक्ट हैज गॉन अप वेरी हाई।
2: सूचना तेजी से मिल जाती है तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही भी उतनी ही तेजी से होती है,
3: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है तो रियल टाइम डिसीजंस जो है वो काफी जल्दी लिए जा सकते हैं, और उसी तरह से जो है हमारा रिएक्शन टाइम जो है हमारा काफी अच्छा है। We had done a major improvement, you see, in the transport also, जो पुरानी गाड़ियों के हिसाब से अभी जो है व्हीकल्स जो है FPV Casper जैसे व्हीकल्स हैं जो कि माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स हैं एंड ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं अभी हमारे पास, तो there's a lot of improvement in this।
2: एक कार्य सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, रेल और सड़क, इसके निर्माण में भी सेना का, विशेष रूप से सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर,
3: बल्कि रादर सेना का डेवलपमेंट के लिए
2: जी
3: इनका होना बहुत बड़ा योगदान हुआ है,
2: बिल्कुल सर।
3: और उसमें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं कि हम जो बॉर्डर एरियाज को डेवलप करेंगे, जैसे सेला में टनल बनी है, सेला पास
2: जी, सेला पास जी,
3: तो जिसे तवांग जो है अरुणाचल वाला जो है वो एरिया है वेस्ट कमांड का, वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया
2: जी, बहुत आसान।
3: अभी जोजिला में जो है टनल बन रही है, देन उसके बाद जो है रोहतांग पास के ऊपर जो है टनल, जिसने की मतलब बहुत ही मेजर चेंज लाया
2: है, बिल्कुल।
3: नहीं तो लद्दाख यूज टू गेट कट ऑफ फॉर 6 मंथ्स, ऐसी तवांग जो है मुश्किल हो जाता था एक वक्त में, एंड जैसे जो ब्रिजेस आए हैं, जो रोड डेवलपमेंट हुआ है हमारा, इवन ट्रेन्स जो है अभी श्रीनगर तक जा रहे हैं, उसके आगे तक जा रही है, तो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट विच हैड टेकन प्लेस।
2: तो सर युद्ध और सीमा की सुरक्षा के अलावा जो सेना ये कार्य कर रही है उसका योगदान तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, सड़कों के रूप में या पुलों के रूप में या रेलवे के रूप में, खुद स्वयं सेना का योगदान है।
3: सेना को इससे फायदा हुआ है कि बनने से जो है हमारी जो मोबिलिटी बढ़ गई है,
2: बढ़ गई है ना,
3: तो उससे हमें फायदा हुआ है। जो सेना का एक अंग है, दैट इज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच इज BRO, ग्रेफ एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आती है, यस, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में।
2: जी,
3: जो है ऑफकोर्स उसमें जो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो फौज के होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में, पुल्स बनाने में, दैट इज राइट। इन चीजों को अगर आप देखेंगे जो है, लाइक अभी बॉर्डर एरियाज पे यू फाइंड की जो एयरफील्ड्स हैं वो डेवलप हुए हैं, एडवांस एयर बेसिस हैं जो बॉर्डर एरियाज में है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इम्प्रूव है, रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा इम्प्रूव है। तो आई विल से कि जब हम 47 से देखा है और 2025 पे जब हम आते हैं तो हमें सिनेरियो पूरी तरह से चेंज
2: बदलाव
3: मिलता है। और ये सिर्फ आर्मी में नहीं है, जब हम नेवी की कभी जिक्र करते हैं या एयरफोर्स का भी जिक्र करते हैं तो उनका भी एडवांसमेंट उतना ही उस लेवल से बड़ा है। आज एयर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम, आवर डोमिनेशन इन द सी, ठीक है, our capabilities have gone up to very high level.
2: बहुत उच्च स्तर की
3: है, उच्च स्तर की है। हमारे जो इतने फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो इन सब के कारण जो है कैपेबिलिटीज जो है हमारी जो डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है उसमें काफी इजाफा हुआ है।
2: कुल मिलाकर हमारी सेना जो है आज बेहद ही सशक्त स्थिति में है।
3: बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा।
2: जी सर।
3: जो है एडवांसमेंट है, सब कुछ है, लेकिन आज भी
2: जी
3: सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सोल्जर।
2: जी बिल्कुल सर।
3: सदियों से चाहे हम हमारे पास्ट में, मतलब इवन प्रीहिस्टोरिक में भी जाएंगे, जब से हम देखते आ रहे हैं, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। एंड आज भी जो ये इंडियन सोल्जर है, हमारे जो सोल्जर हैं, जो मतलब सतत खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए जो है, वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है।
2: बिल्कुल,
3: सबसे महत्व रखते हैं। ये उनकी स्पिरिट है, देश प्रेम है जो है, मतलब दे आर द ड्राइविंग फोर्स जिसके कारण जो है देश की जो है सुरक्षा।
2: जी सर, तकनीक और हथियार अपनी जगह है, लेकिन सैनिक का जब तक साहस नहीं होगा तब तक तकनीक और हथियार भी कुछ नहीं कर सकते।
3: बिल्कुल, और उनका जो जज्बा है बलिदान का,
2: बिल्कुल,
3: जो है
2: मातृभूमि के प्रति समर्पण,
3: मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण है वो मतलब ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माय कंट्री, ठीक है, देन कम्स एनीथिंग एल्स। वो जो जज्बा है, जब तक वो है तब तक कोई हमें हाथ नहीं लगा।
2: स्वयं से पहले सेवा।
3: बिल्कुल, स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। आज जो भी कुछ हम हैं, I must say it is because of the bravest of the braves, all those people who had contributed so much to for the country, people like Major Somnath Sharma, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekho, Captain Mahendra Mula, and Captain Vikram Batra, bravest of the braves, and और भी बहुत जितने हमने इन सब का जिक्र भी किया था अपनी पूरी सीरीज में।
2: हम पिछली कड़ियों में इन सब को हमने कभी भी भुलाया नहीं है और हर एक को याद करने का अपने इस कार्यक्रम में प्रयास किया।
3: जी, और इसके अलावा भी जो हर वो जवान जिसने जो है इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए तो उनके सामने हम नतमस्तक हैं।
2: बिल्कुल सर, ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी ये जो सोल्जर्स हैं, इन्हीं के कारण जो है हमारा देश हमेशा जो है स्ट्रांग रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
2: बस सर, यही भावना हमारी भी है और इसी भावना से प्रेरित एक गीत है, कुछ पंक्तियां हैं सर, वो मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगी कार्यक्रम में अंत में। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, इस आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। तो श्रोताओं, हम भी अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धांजलि देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को सर्वप्रथम रखकर अपना सर्वस्व बलिदान दिया। और हम आभारी हैं हमारी सेना और हमारे सैनिकों को जो हमें हमारी स्वतंत्रता का हमेशा आभास कराते रहते हैं। आज की कड़ी और इस कार्यक्रम को भी अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने भारतीय सेना के बारे में हम जैसे आम नागरिकों को इतनी अच्छे से सेना के बारे में समझाया और बताया कि हमारे जीवन में सेना का क्या महत्व है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: वेलकम एंड इनफैक्ट आई मस्ट से थैंक्स टू यू दैट एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू शेयर द व्यूज। थैंक यू वेरी मच एंड सैल्यूटिंग ऑल द सोल्जर्स। जय हिंद।
2: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन रहा अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL यानी एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी के बारे में।

0: हमें विशाल युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की दुनिया दिखाई, तो गार्डन रिच बिल्डर्स ने ये बताया कि कैसे एक छोटे कारखाने से शुरू होकर कोई संस्था देश के अग्रणी शिपयार्डों में स्थान बना सकती है।
1: लेकिन भारत की समुद्री सुरक्षा की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। आज दादू और रुचि पहुंच रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर, जहां जुआरी नदी की शांत लहरों के किनारे खड़ा है एक ऐसा शिपयार्ड जिसने छोटे बार्ज निर्माण यार्ड से शुरू होकर आधुनिक युद्ध पोत निर्माण की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं गोवा और जानते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की कहानी। दादू।
0: हाँ बेटा।
1: कितनी सारी छुट्टियां हमने गोवा में बिता ली है ना। और कितनी सारी जानकारी आपने मुझे दी है अब तक।
0: हाँ बिल्कुल दी है
1: दादू, थैंक यू सो मच आप जो मेरे साथ हैं।
0: वो तो मैं हमेशा साथ हूँ बेटा।
1: अच्छा दादू, अब तक आपने दो बड़े शिपयार्डों के बारे में मुझे बताया, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है दादाजी, कि इन दोनों में अंतर क्या है।
0: देखो रुचि बेटा, माझगांव डॉक मुख्य रूप से बड़े युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पूर्वी भारत का प्रमुख शिपयार्ड है, जिसने अनेक युद्ध पोत, गश्ती पोत और इंजीनियरिंग समाधान विकसित किए हैं। और एक है गोवा शिपयार्ड, ये तेज आधुनिक और अत्याधुनिक गश्ती पोतों और खास नौकाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
1: मतलब तीनों संस्थान अलग अलग प्रकार से भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल की शक्ति बढ़ाते हैं दादू। इसका तो ये मतलब हुआ कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, उनके पीछे हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक भी देश के रक्षक होते हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बिटिया, और गोवा शिपयार्ड जैसी संस्थाएं हमें सिखाती हैं कि यदि दृष्टि बड़ी हो और प्रयास निरंतर हो, तो एक छोटा सा यार्ड भी राष्ट्र की तरक्की में अहम योगदान दे सकता है।
1: सही कहा आपने दादाजी, किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ये यार्ड दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा।
0: सोचो बेटा कि समय का पहिया पीछे घूम रहा है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले यहाँ कोई विशाल शिपयार्ड नहीं था, ना आधुनिक मशीनें थी, ना विशाल क्रेन, ना कंप्यूटर, केवल एक छोटा सा यार्ड था जहाँ कुछ लोग साधारण नावों और बार्जों पर काम करते थे।
1: कितनी अलग दुनिया होती होगी ना तब दादाजी, इतने बरस पहले। अच्छा ये बताइए ना, क्या कोई प्रेरणादायक कहानी आपको याद आ रही है।
0: हाँ बिल्कुल, चलो आज वही सुनाता हूँ। एक नदी जुआरी जो सदियों से बह रही है।
1: जुआरी नदी?
0: हाँ हाँ, पहले सुन तो लो बच्चे। उसने व्यापारियों को आते जाते देखा।
1: अच्छा।
0: जाने कितनी नावों, जहाजों को देखा, लेकिन एक दिन उसके किनारे एक छोटा सा यार्ड बना। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहीं से भारत की समुद्री शक्ति के नए अध्याय लिखे जाएंगे। आज ये नदी देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उसी यार्ड की कहानी की गवाह है।
1: शांत जल, ठंडी हवा और सामने दूर तक फैला हुआ शिपयार्ड, और पास ही आपकी जुआरी नदी।
0: हाँ बेटा, ये जुआरी नदी गोवा की जीवन रेखा है, और इसी नदी के किनारे खड़े इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हम संक्षेप में GSL कहते हैं।
1: अच्छा दादू, ये बार्ज क्या होता है?
0: बार्ज बेटा एक प्रकार का जलयान होता है, जिसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा यार्ड एक दिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्डों में गिना जाएगा।
1: अच्छा दादू, आपने मुझे पहले बताया था कि गोवा कभी पुर्तगाल के अधीन था, अब ये बताइए कि ये भारत का हिस्सा कब बना?
0: ये बना बेटा सन 1961 में, जब गोवा मुक्ति अभियान सफल हुआ और गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। ये केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बच्चे, ये विकास की नई शुरुआत भी थी।
1: विकास की नई शुरुआत? वो भला कैसे?
0: देखो बेटा, देश की नीति निर्माताओं ने समझ लिया था कि अब भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उस समय बेटा पश्चिमी तट पर एक सक्षम शिपयार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तभी गोवा में मौजूद छोटे यार्ड की क्षमता को पहचाना गया और यहीं से भविष्य के गोवा शिपयार्ड की नींव मजबूत होने लगी।
1: दादू, क्या तब भी इसका नाम गोवा शिपयार्ड ही था?
0: नहीं नहीं बेटा, उस समय इसका नाम था एस्टेलेरोस नावाइस डी गोवा।
1: दादू, ये नाम तो काफी अलग लगता है।
0: हाँ हाँ, ये नाम बेटा पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाता था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप भी बदला और नाम भी। भारत सरकार ने इसे विकसित किया, आधुनिक बनाया और धीरे धीरे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बन गया।
1: दादू, किसी भी संस्था का विकास केवल इमारतों से नहीं होता होगा, उसके पीछे कई लोगों के सपने होते होंगे ना?
0: हाँ बेटा, ये बात पूरी तरह सही है। किसी भी संस्था का विकास किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कई लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। अगर शिपयार्ड की बात करें तो इसके विकास के पीछे कई इंजीनियरों की मेहनत होती है, तकनीशियनों की मेहनत होती है, उनका कौशल होता है और भविष्य की स्पष्ट योजना होती है।
1: यानी गोवा शिपयार्ड का विकास धीरे धीरे हुआ होगा। हर साल इसमें नई सुविधाएं जुड़ती गईं, नई नई मशीनें आईं, नई नई तकनीकें अपनाई गईं और यार्ड का आकार बढ़ता गया।
0: हाँ बेटा, और यही स्थायी विकास का सही तरीका होता है।
1: दादू, ये बार बार जुआरी नदी का नाम आ रहा है, क्या इस नदी ने भी शिपयार्ड के विकास में कुछ भूमिका निभाई है?
0: बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बेटा। देखो, जहाज निर्माण केवल फैक्ट्री के अंदर होने वाला काम नहीं है, जहाज को पानी तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ज्वारी नदी ने ये सुविधा प्रदान की। ये नदी अरब सागर से जुड़ती है, इसलिए यहाँ बने जहाज आसानी से समुद्र तक पहुँचते हैं।
1: मतलब ये नदी शिपयार्ड के लिए एक प्राकृतिक जल मार्ग जैसी है, जैसे हुगली नदी थी।
0: बिल्कुल, इसलिए किसी भी शिपयार्ड का स्थान चुनते समय जल मार्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन केवल स्थान ही नहीं, समय के साथ जहाज निर्माण की तकनीक भी बदलती गई और गोवा शिपयार्ड ने खुद को उसी के अनुरूप उसके मुताबिक विकसित किया।
1: दादू, आधुनिक शिपयार्ड बनाने के लिए क्या बदलाव किए गए थे?
0: बहुत कुछ बदलाव किए गए बेटा। पहले जहां हाथ से ड्राइंग बनती थी, वहां अब CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग होने लगा। जहां उत्पादन में अधिक समय लगता था, वहां आधुनिक मशीनें आ गईं। और जहां सारी जानकारी कागजों पर रखी जाती थी, वहां अब ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया।
1: सो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए, ये ERP क्या करता है?
0: मान लो किसी जहाज के निर्माण में हजारों पुर्जे लगने,
1: ठीक है,
0: किस पुर्जे की जरूरत कब होगी, कहां से आएगा, किस विभाग से जाएगा, कब उपयोग होगा, इन सब का प्रबंधन ERP सिस्टम आसानी से कर सकता है।
1: अच्छा दादू, मैंने अक्सर कंपनियों के नाम के साथ ISO प्रमाणन लिखा देखा है, इसका क्या महत्व होता है?
0: बहुत महत्व होता है। गोवा शिपयार्ड ने गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया है।
1: इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे कई महत्वपूर्ण ISO प्रमाणन प्राप्त हुए होंगे।
0: हाँ हाँ बेटा, एक संस्था केवल उत्पाद बनाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि काम की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।
1: अच्छा दादू, ये बताइए ना, आज के समय में GSL की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
0: बेटा, इसकी आधुनिक सुविधाएं, विश्व स्तरीय CAD CAM प्रणाली, उन्नत डिजाइन सेंटर, स्टील और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता और लगातार अनुसंधान एवं विकास पर दिया जाने वाला ध्यान।
1: मतलब यहाँ केवल जहाज नहीं बनते, नई नई तकनीकें भी विकसित होती हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि GSL भारत के उन चुनिंदा शिपयार्डों में शामिल है जिनके पास अपनी इन हाउस डिजाइन क्षमता है। यानी कई जहाजों की रूपरेखा और डिजाइन तैयार करने का काम भी यही किया जाता है।
1: अब समझ में आ रहा है दादू मुझे कि GSL समय के साथ केवल बड़ा ही नहीं हुआ बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ता गया है।
0: बिल्कुल बेटा, यही निरंतर विकास किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान होता है।
1: दादू, जितना मैं सुनती जा रही हूँ ना, उतना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए ना, एक छोटा बार्जियार्ड, फिर गोवा मुक्ति, फिर विकास, फिर आधुनिक तकनीक और आज राष्ट्रीय महत्व का शिपयार्ड। ये यात्रा सचमुच बहुत प्रेरणादायक सी लगती है दादाजी।
0: बिल्कुल प्रेरणादायक यात्रा है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। कोई भी संस्था जन्म से महान नहीं होती, वो अपने निरंतर प्रयासों, सीखने की इच्छा और दूरदर्शिता से महान बनती है।
1: अच्छा दादू, एक छोटे से यार्ड ने ऐसे कौन कौन से जहाज बनाए जिनसे उसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में हो गई?
0: बेटा, किसी भी शिपयार्ड की सफलता को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक जहाज बनता कैसे है। जब हम ये प्रक्रिया समझ लेंगे तब GSL की उपलब्धियां भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी।
1: हाँ दादू, सही कहा आपने। ये भी एक रोचक बात है कि आखिर एक जहाज का निर्माण कहाँ से शुरू होता है।
0: बिटिया, अधिकतर लोग जब किसी युद्धपोत को देखते हैं तो उन्हें केवल उसका विशाल आकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में किसी भी जहाज का निर्माण स्टील से पहले अभियंताओं के दिमाग में शुरू होता है।
1: दिमाग में?
0: और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, याद करो। हर जहाज पहले एक विचार होता है। क्या होता है?
1: सही कहा दादाजी।
0: फिर वो कागज पर उतरता है, उसके बाद कंप्यूटर पर उसका डिजाइन तैयार होता है और अंत में वो वास्तविक रूप लेकर शिपयार्ड में बनता है।
1: तो दादाजी, क्या यही इसका सबसे पहला चरण होता है?
0: नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले नौसेना, तटरक्षक बल या ग्राहक इसे अपनी जरूरत बताता है। यानी जहाज कितनी गति से चलेगा, कितने दिन समुद्र में रह सकेगा, उस पर कितने लोग कार्य करेंगे, कौन कौन से उपकरण लगाए जाएंगे, उसका उपयोग गश्त, बचाव अभियान या युद्ध के लिए होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद डिजाइन प्रक्रिया शुरू होती है।
1: और यहीं पर CAD काम आता है।
0: बिल्कुल, शाबाश। हाँ, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करना। सालों पहले हाथ से बड़ी बड़ी ड्राइंग बनती थी बेटा, लेकिन आज कंप्यूटर पर जहाज का पूरा त्रिआयामी मॉडल तैयार किया जाता है।
1: हाँ दादू, जिसे हम लोग 2D 3D कहते हैं।
0: हाँ हाँ, जिसमें दिखाई देता है उसका हर कमरा, हर पाइप, हर केबल, हर इंजन, यहाँ तक कि किसी तकनीशियन के चलने की जगह भी दिखाई दे जाती है।
1: अच्छा दादाजी, और ये CAM ये क्या है?
0: CAM का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से निर्माण करना।
1: सो तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है?
0: जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब वही जानकारी आधुनिक मशीनों को भेज दी जाती है। मशीनें उसी के अनुसार स्टील काटती है, छेद बनाती है, भागों को आकार देती है। इससे समय भी बचता है और सटीकता भी बढ़ती है।
1: दादू, क्या इसके लिए वाकई में इतनी सटीकता आवश्यक होती है?
0: तुम्हारी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बेटा। कल्पना करो कि हजारों स्टील प्लेटें आपस में जुड़कर एक युद्धपोत बनाती हैं। यदि किसी एक हिस्से की माप भी गलत हो जाए तो आगे पूरी संरचना प्रभावित हो सकती है। इसलिए आधुनिक शिपयार्डों में मिलीमीटर स्तर की सटीकता रखी जाती है।
1: अच्छा, हम बार बार रडार, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दादाजी, क्या इन्हीं सब से जहाज कंट्रोल होता है?
0: एक तरह से हाँ बेटा, आधुनिक जहाजों में एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम होता है। ये जहाज का नियंत्रण केंद्र होता है, यहीं से जहाज की दिशा, गति, मार्ग और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।
1: मतलब ये बिल्कुल कार चलाने जैसा होता है?
0: हाँ, मतलब थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहाज को चलाना कहीं अधिक जटिल होता है बेटा। समुद्र में कोई सड़क नहीं होती है, कोई लेन नहीं होती, इसलिए कप्तान को रडार, GPS, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट और संचार प्रणालियों की सहायता लेनी पड़ती है।
1: दादू, ये रडार आखिर काम कैसे करता है?
0: रडार बेटा रेडियो तरंगे भेजता है। जब ये तरंगे किसी जहाज, द्वीप या अन्य वस्तु से टकराती है तो वापस लौटती है। कंप्यूटर इन संकेतों का विश्लेषण करके वस्तु की दूरी और दिशा बता देता है और इसी कारण रात, कोहरे या खराब मौसम में भी जहाज सुरक्षित रूप से मार्ग तय कर सकता है।
1: मतलब रडार समुद्र में जहाज की आंखों जैसा है।
0: बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही।
1: दादू, आज के जहाज पहले के जहाजों से बहुत अलग है।
0: बहुत अलग? पहले जहाजों में ज्यादातर यांत्रिक प्रणालियां होती थी बेटा। आज डिजिटल नेविगेशन, आधुनिक रडार, उपग्रह संचार, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और उन्नत सेंसर लगाए जाते हैं। यानी आधुनिक जहाज केवल समुद्र में चलने वाले पोत नहीं है, बल्कि तैरते हुए तकनीकी केंद्र बन चुके हैं बेटा।
1: और GSL भी इसी बदलाव का हिस्सा है।
0: हाँ बिटिया, इसीलिए GSL केवल जहाज नहीं बना रहा, बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री तकनीक को भी आकार दे रहा है।
1: दादू, आजकल स्टेल्थ शब्द भी बहुत सुनाई देता है, इसका क्या मतलब होता है?
0: स्टेल्थ का अर्थ है ऐसी तकनीक जिससे युद्धपोत दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई ना दे। इसके लिए जहाज की बाहरी बनावट, उसके कोण और कई विशेष पदार्थों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि रडार की तरंगें कम परावर्तित हों। इससे दुश्मन के लिए उसकी सही पहचान करना कठिन हो जाता है।
1: यानी ये युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो रहता है, लेकिन दुश्मन को उसका पता आसानी से नहीं चलता।
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि आधुनिक नौसेनाओं में स्टेल्थ तकनीक को बहुत महत्व दिया जाता है। कई नए भारतीय युद्धपोत भी इसी सोच के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं।
1: दादू, इतने बड़े युद्धपोत में रडार, कंप्यूटर, संचार प्रणाली और इतने सारे उपकरण चलते रहते हैं, इन्हें बिजली कहाँ से मिलती है?
0: बिल्कुल सही सवाल है बेटा। युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता बिजली घर होता है बेटा।
1: ऐसा?
0: उसमें शक्तिशाली डीजल जनरेटर लगाए जाते हैं जो लगातार बिजली पैदा करते हैं। इसी बिजली से रडार, संचार प्रणाली, कंप्यूटर, प्रकाश व्यवस्था, हथियार प्रणालियां और अनेक अन्य उपकरण चलाए जाते हैं। आजकल कई आधुनिक युद्धपोतों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी होती है जो जरूरत के अनुसार बिजली का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है।
1: वाह दादू, यानी समुद्र के बीच भी पूरा जहाज अपने दम पर चलता है।
0: हाँ बेटा, इसलिए युद्धपोत को समुद्र में कई दिनों या कई सप्ताह तक किसी बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती।
1: अच्छा दादू, समुद्र में जब ज्वार आते हैं तब तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब इतना विशाल जहाज पलटता नहीं है?
0: देखो बेटा, यही तो नौसेना वास्तुकला यानी नेवल आर्किटेक्चर का कमाल है। जहाज का भार, उसकी चौड़ाई, गहराई और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का बहुत सावधानी से निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा बेटा, जहाज के भीतर विशेष बैलास्ट टैंक बनाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है और वो ऊंची लहरों में भी स्थिर रहने की कोशिश करता है।
1: यानी युद्धपोत को तैराने और संतुलित रखने के पीछे केवल ताकत ही नहीं, बल्कि गहरा विज्ञान भी काम करता है।
0: बिल्कुल बेटा, इसलिए जब हम किसी युद्धपोत को समुद्र में सहजता से आगे बढ़ते देखते हैं, तो उसके पीछे सैकड़ों वैज्ञानिकों, अभियंताओं और डिजाइनरों की वर्षों की मेहनत छिपी होती है। युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता, बल्कि विज्ञान, तकनीक और भारतीय प्रतिभा का अद्भुत संगम होता है।
1: सो तो है दादाजी।
0: बिल्कुल बढ़िया, समुद्र में तैरता हुआ हर जहाज इंजीनियरिंग, गणित, भौतिकी और तकनीक का अद्भुत तालमेल होता है।
1: दादू, जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब क्या होता है?
0: फिर शुरू होती है स्टील कटिंग। विशाल स्टील प्लेटें शिपयार्ड में लाई जाती हैं, उन्हें साफ किया जाता है, उन पर खास कोटिंग की जाती है, फिर कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें उन्हें जरूरी आकार में काटती हैं।
1: तो दादू, क्या पूरा जहाज एक साथ बनाया जाता है?
0: नहीं नहीं बेटा, यही सबसे रोचक बात है। जहाज छोटे छोटे ब्लॉकों में बनाया जाता है, जैसे बच्चे खिलौनों के ब्लॉकों से घर बनाते हैं ना, फिर इन्हीं विशाल ब्लॉकों को जोड़कर जहाज बनाया जाता है।
1: पर दादू, इन ब्लॉकों को जोड़ा कैसे जाता है?
0: वेल्डिंग द्वारा। वेल्डिंग जहाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है बेटा। एक मजबूत वेल्ड हजारों टन के जहाजों को मजबूती प्रदान करती है।
1: दादू, GSL खास तौर पर गश्ती पोतों के लिए प्रसिद्ध क्यों है?
0: क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञता विकसित की है। गश्ती पोत या पेट्रोल वेसल ऐसे जहाज होते हैं जो समुद्री सीमाओं की निगरानी करते हैं, तस्करी रोकते हैं, खोज और बचाव अभियान चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की सहायता भी करते हैं।
1: तो क्या ये युद्ध पोतों से छोटे होते हैं?
0: लेकिन ये बेहद तेज और चुस्त होते हैं बेटा। इनमें आधुनिक रडार, संचार प्रणाली और नेविगेशन उपकरण लगाए जाते हैं।
1: दादू, मैंने पढ़ा था कि GSL स्टील और एल्यूमिनियम दोनों प्रकार के जहाज बनाता है, क्या ये बात सच है?
0: हाँ, सच है, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। स्टील मजबूत होता है जबकि एल्यूमिनियम हल्का होता है। हल्का जहाज अधिक गति हासिल कर सकता है, इसलिए जहाज के उपयोग के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है।
1: दादू, आपने कहा था कि GSL की अपनी डिजाइन क्षमता है, कहा था कि नहीं?
0: हाँ हाँ बेटा, कहा था।
1: तो फिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: क्योंकि हर देश की जरूरतें अलग अलग होती हैं। यदि जहाजों का डिजाइन भी अपने देश में ही विकसित किया जाए तो विदेशी निर्भरता कम होती है, साथ ही जरूरत के मुताबिक नए बदलाव भी आसानी से किए जा सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
1: दादू, क्या GSL में अनुसंधान भी होता है?
0: हाँ बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास किसी भी आधुनिक संस्थान की आत्मा होता है। यही नई तकनीकें विकसित होती हैं, नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के समाधान भी खोजे जाते हैं।
1: दादू, ये कितना सही है कि आज का विद्यार्थी ही कल का जहाज डिजाइनर, नौसेना वैज्ञानिक या समुद्री अभियंता बन सकता है।
0: देखो बिटिया, एक आधुनिक शिपयार्ड वास्तव में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय जैसा होता है, जहां हर दिन कुछ नया सीखा और बनाया जाता है।
1: दादू, इसका मतलब यही कारण है कि GSL अन्य कई शिपयार्डों से थोड़ा अलग दिखाई देता है।
0: तुमने बिल्कुल सही समझा बेटा। जहां अधिकांश लोग इसे केवल जहाज निर्माण से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रशिक्षण, सिमुलेशन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, ये सिमुलेशन क्या होता है?
0: मान लो कोई नौसैनिक पहली बार समुद्र में जा रहा है, क्या उसे सीधे तूफान के बीच भेज देना चाहिए?
1: ना ना बाबा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा दादाजी।
0: ठीक यही कारण है कि सिमुलेटर बनाए जाते हैं। सिमुलेटर ऐसी व्यवस्था होती है जहां वास्तविक परिस्थितियों जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें, आग लगने की स्थिति, पानी भरने की स्थिति और आपातकालीन बचाव अभियान, इन सब का अभ्यास पहले से ही कराया जाता है।
1: मतलब जैसे एरोप्लेन के पायलट पहले फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं?
0: बिल्कुल वैसा ही बेटा। और GSL ने ऐसे कई विशेष प्रशिक्षण सिमुलेटर विकसित किए हैं।
1: दादू, यदि समुद्र में जहाज को नुकसान पहुंच जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाता है?
0: उसके लिए नौसैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे, GSL द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर एशिया में अपनी तरह की अनूठी सुविधाओं में से एक माना जाता है।
1: और इसमें होता क्या है?
0: कल्पना करो कि किसी जहाज में आग लग गई है, ठीक है? अब उसके किसी हिस्से में पानी भरने लग गया है। नौ सैनिकों को तुरंत निर्णय लेना होता है, कहां जाना है, किस वाल्व को बंद करना है, किस उपकरण का उपयोग करना है। ये सब प्रशिक्षण इसी प्रकार के सिम्युलेटर में कराया जाता है।
1: समझ गए दादू। अच्छा, आपने एक बार ONGC के लिए भी किसी विशेष सुविधा का उल्लेख किया था।
0: हाँ हाँ बेटा, ये सुविधा समुद्र के बीच तेल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। समुद्र शांत हो तो काम आसान लगता है, लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा।
1: सही कहा दादू आपने, कभी तूफान आ जाता है, कभी ऊंची लहरें उठने लगती हैं और कभी अचानक आपात स्थिति पैदा हो जाती है।
0: और ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए GSL ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा विकसित की है।
1: समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा, ये क्या है दादू?
0: हाँ हाँ बेटा, यहाँ कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि संकट की स्थिति में स्वयं को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है, लाइफ जैकेट का उपयोग कैसे करना है, लाइफ राफ्ट तक कैसे पहुंचना है, समुद्र में गिर जाने पर क्या करना है और बचाव दल आने तक धैर्य कैसे बनाए रखना है।
2: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, ये GSL का संबंध विमानों से भला कैसे जुड़ गया?
0: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। गोवा में स्थित INS हंसा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक वायु स्टेशन है। यहाँ नौसेना के विमान और पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। GSL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से एक विशेष शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी के निर्माण में योगदान दिया।
2: शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी?
0: हाँ, विमान वाहक पोत पर विमान उतारना और उड़ाना दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक माना जाता है बेटा।
2: सो तो है।
0: इसलिए पहले जमीन पर ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो विमान वाहक पोत जैसा महसूस हो। यही पायलट अभ्यास करते हैं, फिर वास्तविक समुद्री अभियानों में भाग लेते हैं।
2: वाव दादू, मतलब GSL ने केवल जहाज ही नहीं बनाए बल्कि नौसैनिक पायलटों के प्रशिक्षण में भी बड़ा योगदान दिया है।
0: बिल्कुल।
2: अच्छा दादू, आपने बताया था कि गोवा शिपयार्ड में आधुनिक शिप लिफ्ट सुविधा भी है, ये क्या होती है?
0: ये बहुत रोचक तकनीक है बिटिया। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत में लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है ना, वैसे ही शिप लिफ्ट विशाल जहाजों को पानी से बाहर निकालने और वापस पानी में उतारने का काम करती है।
2: इतने बड़े जहाज को दादू लिफ्ट कैसे उठा सकती है?
0: अरे बुद्धू, शिपलिफ्ट साधारण लिफ्ट थोड़ी होती है। ये स्टील के विशाल प्लेटफॉर्म, शक्तिशाली मोटरों और कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से संचालित होती है। जब जहाज प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाता है तब कई सिंक्रोनाइज्ड विंच और केबल एक साथ काम करते हैं और पूरे जहाज को धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं।
2: लेकिन दादू, जहाज को पानी से बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
0: अरे बेटा, जहाज के निचले हिस्से की मरम्मत, पेंटिंग, निरीक्षण और रखरखाव पानी के भीतर नहीं किया जा सकता, इसलिए समय समय पर उसे बाहर निकालना पड़ता है।
2: अच्छा।
0: पहले इसके लिए मुख्यतः ड्राई डॉक का उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक इस प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाती है।
2: तो इससे भी समय की बचत होती होगी।
0: हाँ, जहाज को अपेक्षाकृत कम समय में उठाया जा सकता है। इसके बाद उसे विशेष रेल प्रणाली या ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरम्मत क्षेत्र तक ले जाया जाता है। इससे एक ही समय में कई जहाजों पर काम करना संभव हो जाता है।
2: अब समझ में आया दादू मुझे कि जहाज बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उन्हें वर्षों तक सुरक्षित और सक्षम बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
0: तभी तो बिटिया, और यही काम आधुनिक शिपलिफ्ट जैसी तकनीकें आसान बनाती हैं।
2: दादू, ये GSL और किस तरह के जहाज बनाता है?
0: इसने तेज गति वाली इंसेप्टर बोट्स भी बनाई है। इनका उपयोग तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कोई संदिग्ध नाव समुद्री सीमा में प्रवेश करे तो यही बोट्स तुरंत उसका पीछा कर सकती है।
2: मतलब ये समुद्र की पुलिस कार जैसी होती है।
0: बिल्कुल सही तुलना की तुमने बेटा।
2: दादू, इतने वर्षों की यात्रा के बाद GSL का भविष्य कैसा दिखता है?
0: बहुत उज्जवल बेटा। आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में GSL जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: हाँ दादाजी, सही कहा आपने। भविष्य में भारत को अधिक आधुनिक गश्ती पोतों, तेज इंटरसेप्टर नौकाओं, विशेष प्रशिक्षण प्रणालियों और नई समुद्री तकनीकों की जरूरत होगी, और इन सब के विकास में GSL महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
0: हाँ बेटा, भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्मार्ट सेंसर का उपयोग और बढ़ेगा। जहाज अपने कई कार्य स्वयं कर सकेंगे। ऊर्जा दक्षता बहुत बेहतर होगी। पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग बढ़ता जाएगा, और संभव है कि कुछ विशेष जहाजों में मानव हस्तक्षेप पहले की तुलना में बहुत कम रह जाए।
2: दादाजी, यानी समुद्र की दुनिया भी तेजी से बदल रही है।
0: हाँ बिटिया, और GSL जैसे संस्थान उसी भविष्य की तैयारी आज से कर रहे हैं। ज्वारी नदी के किनारे शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है बेटा। और शायद इसी कारण जीएसएल केवल एक शिपयार्ड नहीं बल्कि भारत की समुद्री भविष्य का निर्माता भी है।
2: चलिए दादाजी, अब अपन घर चलते हैं। आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ।
0: अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह वाह, चलो चलो चलो चलो।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज बात हो रही थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल की, एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
2: सुनते रहिए आपका अपना रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: आजादी के संघर्ष के पन्नों पर अंकित इतिहास के आख्यानों में रानी अवंतीबाई का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अवंतीबाई मध्य प्रदेश के मंडला जिले की रामगढ़ रियासत की महारानी थीं। उन्होंने अपनी रियासत से ब्रिटिश कोर्ट ऑफ वार्ड के अधिकारियों को निकालकर स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया और जुलाई 1857 में सुहागपुर को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद करके रामगढ़ रियासत का हिस्सा बना लिया। एक महिला से मिली करारी हार से अंग्रेज हुक्मरान तिलमिला उठे और उन्होंने कैप्टन वाशिंगटन के नेतृत्व में एक विशाल सेना को अवंतीबाई से युद्ध करने के लिए भेज दिया। अंग्रेजी सेना को एक बार फिर महारानी की तलवार की ताकत का अंदाजा हो गया। अपनी हार के कलंक को माथे से मिटाने के लिए अंग्रेज सेना ने महारानी पर कई हमले किए, मगर हर बार उन्हें शिकस्त ही मिली। रानी का अंग्रेजों के साथ आखिरी मुकाबला अप्रैल 1858 में देवागढ़ की पहाड़ियों में हुआ, जहां अंग्रेज सेना ने उन्हें तीन तरफ से घेर लिया। बहादुरी पूर्वक जूझते हुए रानी अंग्रेजों का मुकाबला कर ही रही थी कि पीछे से अंग्रेज समर्थक रीवा राज्य की सेना ने भी रानी पर हमला बोल दिया। चारों ओर से दुश्मनों से घिरी वीरांगना को जब जीत की कोई उम्मीद न दिखाई दी तो उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना रक्ताभिषेक करके प्राण त्याग दिए। रानी के शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने सुहागपुर रीवा महाराज को इनाम में दे दिया और इस तरह इस देश के उच्च कोटि के राष्ट्रभक्तों में एक नाम और जुड़ गया।

0: राम राम काका।
1: हाँ राम राम राम राम। आओ बेटा आओ आओ।
0: जिंदाबाद काका।
1: अरे हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद।
2: छोटू बेटा जरा यहाँ संभाल तो, और चाय लगा भैया लोगों के लिए, मैं उनके पास ही बैठता हूँ, जरा बात भी करनी है, खास लोग हैं मेरे।
3: हो काका हो, मैं देखता हूँ।
2: चल दिनेश चल, तू भी चल, तुझसे मिलवाता हूँ, अच्छे लड़के हैं, नाटक करते हैं, आजकल स्वतंत्रता संग्राम पर बड़े अच्छे नाटक कर रहे हैं।
4: अच्छा काका, तब तुम मिलना ही पड़ेगा, मैं तो समझता था कि इस नई नस्ल का मैं ही अकेला अगुवा हूँ।
0: आइए काका बैठिए।
2: अरे बैठो भाई, तुम लोग बैठो, खड़े क्यों होते हो, और सुनाओ कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो?
0: ठीक है काका, बस कॉलेज से छूटकर चले आ रहे हैं।
2: तो खूब पढ़ाई चल रही है आजकल?
0: खूब कहाँ काका, बस चल रही है, अपना मन तो आजकल नाटक की तरफ ही ज्यादा लगता है।
5: वैसे काका उस दिन का नाटक अच्छा लगा?
2: बहुत मजा आया। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, इससे मिलो, ये दिनेश है मेरा भतीजा, कॉलेज में पढ़ता है, दो कदम आगे है अपन से।
0: अच्छा वो कैसे?
2: अरे हम तुम तो स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखते हैं, पर इसका तो काम ही ये है, पूरा ग्रंथ लिख रहा है उन पर, तो क्या कहते हैं उसे, हाँ पीएचडी कर रहा है।
0: पीएचडी? अरे वाह दिनेश भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो अभी किसके ऊपर काम कर रहे हो दिनेश?
4: रानी अवंती बाई का चैप्टर चल रहा है।
0: नाम तो काफी सुना है, शायद रायपुर विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है ना?
4: हाँ ठीक कहा आपने
0: भाई, तो आज तो कुछ सुने बिना नहीं छोड़ेंगे हम तुमको।
4: अरे मैं क्या सुना पाऊंगा?
0: अरे अवंती बाई के बारे में ही सुनाओ ना यार।
6: अरे नहीं नहीं दिनेश भैया, कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा, ऐसे मामले में किसी को छोड़ते नहीं हम।
4: ठीक, पर मेरी भी एक छोटी सी शर्त है, आप लोग स्वतंत्रता संग्राम पर होने वाले नाटकों की खबर मुझे जरूर करेंगे।
0: हाँ क्यों नहीं, काका का शौक देख के ये तो हमारे परमानेंट दर्शक बन ही गए, तुम्हें भी काका ही बता दिया करेंगे, क्यों काका?
2: अरे भाई हमेशा ही कहता हूँ कि मैं तो ऐसे काम के लिए डेढ़ पांव से आगे रहता हूँ।
4: असल में रानी अवंतीबाई मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी, ये वो वीरांगना थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अवंतीबाई मनकेड़ी गांव में पैदा हुई थी, यहीं अपने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। वो झुझार सिंह और कृष्णाबाई की बेटी थी, ये लोग लोधी जाति के बहुत संपन्न परिवार से थे।
0: वो रामगढ़ क्या शादी के बाद आई थी?
4: हाँ बिल्कुल ठीक, खरमेर नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है रामगढ़, यही अपने मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। इसी गांव का राजा था विक्रमाजी, जिससे रानी अवंतीबाई का विवाह हुआ था। दुर्भाग्य से बहुत कम समय में ही राजा की मानसिक हालत कुछ खराब हो गई, उस वक्त उनके दोनों बेटे बहुत छोटे थे, इस हालत में रानी को ही राज्य का कामकाज संभालना पड़ा। उधर अंग्रेज ताक में ही थे, वो रामगढ़ पर अपनी मोहर लगाना चाहते थे।
7: सर द बॉल इज इन आवर कोर्ट, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी to snatch away Ramgarh.
8: Yes, yes, it is. We must take away the charge of Ramgarh as soon as possible.
7: But how, sir?
8: Declare the code of words. Cheers.
4: Ramgarh ko court of words ghoshit karke angrezon ne wahan apna rajya jamane ki koshish ki. उन्होंने वहां अपना एक मैनेजर नियुक्त किया और उसकी मदद के लिए कुछ सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए, पर रानी को यह सब रास नहीं आया। पहले भी गवर्नर जनरल डलहौजी और उसकी हड़प नीतियों के चलते बुंदेलखंड के जैतपुर और नागपुर पर कब्जा किया गया था। अब रानी ने मैनेजर को अपने राज्य से निकालने का पक्का फैसला कर लिया था।
9: हम अपने राज्य में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं चलने देंगे, इसलिए अच्छा होगा जो आप हमारा राज्य छोड़ दें।
8: पर सरकारी फरमान के हिसाब से ये राज्य
9: हमारा था और मरते तब तक हमारा ही रहेगा।
4: रानी ने एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। रानी ने बिना देरी किए हरकारों को अपना संदेश देकर आसपास के राज्यों में भेज दिया।

0: महाराज की जय हो। रामगढ़ से हरकारा आया है संदेश लेकर।
1: भेजो उसे।
2: महाराज को प्रणाम। मैं रामगढ़ से बाईजू रानी का पत्र लाया हूँ और साथ में ये
1: क्या है? पत्र पत्र लाओ यहाँ। यदि बंदिनी भारत माता के प्रति आप अपना कुछ कर्तव्य समझते हैं,
3: तो अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाकर युद्ध में कूद पड़िए, अन्यथा ये चूड़ियां पहनकर अपने घरों में छिपे रहिए।
4: अरे वाह,
5: फिर क्या था? चूड़ी वाले हाथों ने तलवारों को ललकारा था। जिन जिन राजाओं को रानी की चूड़ियां पहुंची, उनके हाथों में तलवारों की मुट्ठें आ गईं। रानी अवंतीबाई के आह्वान पर मध्य प्रांत में क्रांति की लहर दौड़ गई।

0: शाहपुर के शासक जगत सिंह ने नारायणगंज पर आक्रमण कर दिया। बहादुर सिंह लोधी ने शहरपुरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया और सलीमनाबाद में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इधर नर्मदा नदी के पूरे उत्तरी प्रदेश विद्रोह के लिए इकट्ठा हो गए और इनके अगुवाई खुद रानी अवंतीबाई और विजय राघवगढ़ के शासक सूरज प्रसाद कर रहे थे। रानी ने मंडला पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेज सेनापति वॉर्डिंगटन खुद ही रानी से लड़ने आ पहुंचा।
1: ये तुम्हारा काम नहीं है रानी, तुम नहीं बचेगा हमसे।
2: बचेगा तो आज तू नहीं।

0: तो मर गया ना सेनापति वॉर्डिंगटन।
1: अरे किस्मत अच्छी थी उसकी, जैसे ही रानी ने तलवार चलाई उसका घोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया और तलवार घोड़े को लगी। वार इतना जबरदस्त था कि घोड़े की गर्दन जमीन पर आ गिरी। उसे देखकर वॉर्डिंगटन डर के मारे पीठ दिखाकर सैनिकों की भीड़ में गायब हो गया।
0: वाह क्या ताकत रही होगी रानी में।
2: फिर तो पलट कर नहीं आया होगा वो।
1: नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, रानी का वो हमला उसे बहुत खटक रहा था और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था।
3: इस बार रानी का घर पर हमला करेगा हम लोग, रामगढ़ को घेर लो पूरा।
0: बाईजू महाराज एक बुरी खबर है।
4: क्या हुआ गुप्तचर बोलो।
0: वॉर्डिंगटन अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ रामगढ़ की ओर बढ़ रहा है बाईजू महाराज।
5: रानी बहन हम लोगों को जल्दी ही यहाँ से कहीं और निकल जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास लड़ने की तैयारी और वक्त दोनों ही नहीं है और लड़ाई अभी बहुत बाकी है।
4: ठीक कहते हो उमराव सिंह, हम यहाँ से निकल के देवहारगढ़ की पहाड़ियों में छिप सकते हैं। चलो
3: कहाँ है रानी?
6: हुजूर लगता है उन्हें पहले ही हमारे आने की खबर लग गई थी, वो अपने महल में नहीं है।
3: ओह डैम इट, पूरा रामगढ़ में आग लगा दो। डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग। मूव मूव ऑल ऑफ यू।

0: रानी के नहीं मिलने पर वॉर्डिंगटन बुरी तरह बौखला गया था। उसने आसपास के रियासतों पर हमला कर उन पर अपना कब्जा कर लिया।
1: May I come in, sir?
2: Oh, yes, Mr. Waddington. What's the news?
1: Sir, we have captured Patton, Sangrampur, Salimnabad, and Ghugri.
2: But what? We must celebrate the success.
1: Sorry, sir. But my fight is not over till Rani Avanti Bai is alive.
0: और बस वॉर्डिंगटन अपनी सेना लेकर रानी की तलाश में निकल पड़ा।
3: रानी बहन, वो अंग्रेज हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया है। लगता है हम गिर जाएंगे।
4: कोई बात नहीं भैया, हम लड़ेंगे, तुम तैयारी करो।
3: लेकिन बहन, उनकी विशाल सेना और हम।
4: इसीलिए तो पहले हम ही हमला करेंगे। रात में हम छापामार युद्ध करेंगे, हमला करके गुम हो जाएंगे। और पहला हमला हम कल रात ही पहाड़ी के उस पार अंग्रेजों के शिविर पर करेंगे।

0: इस बार एक विशाल सेना के साथ अंग्रेजों ने रानी को देहारगढ़ की पहाड़ी पर घेर लिया।
1: रानी बहन,
2: हम घेर लिए गए हैं। यही ना, तो क्या हुआ? हम फिर भी लड़ेंगे, मरते दम तक, अपनी आन के लिए, देश की शान के लिए। आगे बढ़ो।
1: रानी बहन, हमारे सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
2: नहीं नहीं भैया, एक तो हम पूरी तरह से घिर गए, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं, और शत्रु मुझे शायद जीवित पकड़ना चाहते हैं। उचित यही होगा कि मैं शत्रु के अपवित्र हाथों में पड़ने के बजाय स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं।
1: नहीं बहन, नहीं, रुक जाओ, पहले अपने इस भाई को तलवार के जौहर तो दिखा लेने दो, मेरे बाद आप जो उचित समझे वो करें।
3: क्या हुआ दिनेश भाई?
0: सचमुच ही उमराव ने प्रलय रूप धारण कर लिया, शत्रु की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया, लेकिन लड़ते लड़ते वो काफी आगे निकल गए और दूसरी तरफ रानी अकेली पड़ गई।
1: रानी बहन रुकिए, सुनिए, आप फिरने वाली है। नहीं, मैं क्या करूं, मैं आता हूं।
4: अब तुम किधर छुपेगा रानी, अब तुम हमसे नहीं बच सकता। डोंट वरी, तुमको जिंदा पकड़ेगा।
2: तेरे अपवित्र हाथों से मरूंगी? तूने सोचा भी कैसे वॉर्डिंगटन।

0: सब लड़ाई रोक दो। रानी उठो, रानी वेक अप रानी। ओह माय गॉड, वॉरिंगटन का सलाम कबूल रानी। आई सल्यूट यू। अपना साथियों का नाम बताओ रानी, प्लीज टेल मी द नेम। बोलो रानी, बोलो।
1: इस युद्ध के लिए अकेली मैं ही जिम्मेदार हूँ वॉरिंगटन।

0: 20 मार्च 1858 का दिन था वो। एक और वीरांगना ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया।
1: सच में क्या जज्बा था, मजा आ गया दिनेश भाई, धन्यवाद नारी शक्ति की ऐसी मिसाल बताने के लिए।
2: बस अब जल्दी ही रानी अवंती बाई के ऊपर नाटक करना पड़ेगा यार।
1: अरे अब निकलना पड़ेगा, घर पे मम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर भी हो गई है।
2: अरे चल चल यार, जल्दी उठ, जल्दी चल। ओके दिनेश भाई। अच्छा काका चलते हैं।
3: हाँ बेटा जल्दी निकल लो, वरना नारी शक्ति की एक मिसाल तुमको घर जाकर भी मिल जाएगी।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस बैंड प्लाटून द्वारा 80वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वंदे मातरम एवं अन्य देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी गई। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में।

यह प्रस्तुति निसंदेह भावुक कर देने वाली थी। हमारे शहीदों को यह सच्ची श्रद्धांजलि थी। बैंड टीम का हृदय से आभार और अभिनंदन। अब आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है कर्तव्य पथ और इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति के शौर्य और सेना के अनुशासन को दर्शाती यह ओजस्वी धुन भारतीय सेना की पारंपरिक मिलिट्री पाइप बैंड ड्रम परंपरा से आती है। जब पाइप बैंड की पारंपरिक वाद्य यंत्रों से यह धुन फूटती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वीरों के कदम से कदम मिलकर चलने की ताल और देशभक्ति की गूंज इस प्रेक्षागृह के कोने कोने में सजीव होती हो। सुनते हैं इंडिया गेट धुन।

क्या अनुशासन, क्या तालमेल या प्रस्तुति सेना के गौरव और मर्यादा को साकार करती है? बैंड टीम की इस पेशेवर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। अगली प्रस्तुति है अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है यह गीत। 1965 की फिल्म शहीद से है। इसके बोल और संगीत दोनों प्रेम धवन जी ने रचे थे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे।

यह प्रस्तुति हमारे क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान को सच्चे मन से नमन थी। बैंड टीम को इस भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए बधाई। अब प्रस्तुत है वह धुन जो बच्चों और युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करती है। इसके बोल शकील बदायूं जी ने लिखे थे और संगीत दिया था महान संगीतकार नौशाद साहब ने। फिल्म सन ऑफ इंडिया से नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
2: तृतीय सर्ग में हमने देखा, एक पुरुष ने राज्य को ठुकरा कर वचन को अपना राजमुकुट बना लिया। कर्ण ने दिखा दिया कि मनुष्य का कद उसके जन्म से नहीं, उसके निर्णय से मापा जाता है। वहां कथा नहीं, चरित्र बोल रहा था। वहां संवाद नहीं, संकल्प गूंज रहा था। वृक्ष फल देकर रिक्त नहीं होता, वह और हरित होता है। सरिता जल देकर सूखती नहीं, वह पुनः मेघों में भरती है। यही आत्मदान का अशाश्वत नियम है। जो देता है वही सचमुच पाता है। जो अंतिम मूल्य हंसकर चुका दे वही अमरता का अधिकारी होता है। श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिनकर जी को यूं ही राष्ट्रकवि नहीं कहा गया। उनकी वाणी सोई हुई चेतना को झकझोरती है, मनुष्य को उसके आत्मबल का बोध कराती है।
1: बिल्कुल, रश्मि रथी में मानवीय मूल्यों का ऐसा ही समन्वय है, जहां दर्शन भी है, सिद्धांत भी, इच्छा भी है, संयम भी, छल और द्वेष की छाया भी है, तो प्रेम, दान और तपस्या की उज्जवल आभा भी। ये काव्य केवल घटनाओं का अनुक्रम नहीं, मानव हृदय का महागान है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग एक का काव्य पाठ। प्रेम यज्ञ अति कठिन, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय बंधुता की अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी। हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो और मूल्य क्या देना। करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे ये मूल्य ना मिलता वो मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। ये ना सत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं?
2: ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वास्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए रहें, डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने तीन गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मनसूर नियति की सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में सौ बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना ही पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं।
1: श्रोताओं, अभी जो पंक्तियां हमने सुनी वे केवल कविता नहीं थी, वे एक अग्निकुंड थी। प्रेम यज्ञ अति कठिन से आरंभ होकर यह भाग हमें भीतर तक टटोलता है। कितनी सहजता से कवि पूछते हैं, प्रण लेना आसान है पर क्या हम उसका अंतिम मूल्य चुकाने को तैयार हैं? त्याग की बातें सब करते हैं पर जब सर्वस्व अर्पण की घड़ी आती है तभी सच्चा मनुष्य पहचाना जाता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सुविधा के युग में हैं, जहां हर चीज हमें तुरंत चाहिए, पर तपस्या का धैर्य नहीं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं, व्रत का अंतिम मोल चुकाना ही असली परीक्षा है। और हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे, लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, किंतु मूल्य चुकाने का साहस कम ही दिखता है।
1: और दान, आज दान भी प्रदर्शन बनता जा रहा है, पर यहां दान को जीवन का झरना कहा गया। जैसे वृक्ष फल देकर स्वयं को बचाता है, जैसे सरिता बहकर निर्मल रहती है, यदि हम रोक लें, सहेज लें, केवल अपने लिए जी लें, तो क्या हम सचमुच जीवित रह पाते हैं या भीतर ही भीतर सूखने लगते हैं?
2: यही तो इस भाग की प्रासंगिकता है। आज दुनिया में स्पर्धा है, स्वार्थ है, आगे निकल जाने की होड़ है, किंतु इतिहास उन्हीं का स्मरण करता है जिन्होंने अंतिम मोल हंसकर चुकाया, चाहे वह त्याग हो, सत्य हो या मानवता। ये काव्य हमें याद दिलाता है कि अमरता सुविधा से नहीं, साहस से मिलती है। ये केवल कर्ण की भूमिका नहीं, ये हमारे समय का दर्पण है। क्या हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं? चतुर्थ सर्ग का ये प्रथम भाग हमें भीतर की अग्नि से परिचित कराता है। आगे कथा और भी गहन होगी और हम उस अग्नि में कर्ण के चरित्र को और तपता देखेंगे। आइए अब सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग दो का काव्य पाठ।
1: वीर कर्ण, विक्रमी, दान का अति अमोघ व्रतधारी पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणभारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर, छिपकर पुण्य विवर से, व्रत का निकष दान था। अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मिया रजत से भरकर वार विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने,
3: कौन उधर है बंधु, सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है, ये विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण में ही अपना सुख माना, भयहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरण बनू तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए।
2: श्रोताओं, दान देने से जो घटता है वह वस्तु होती है, पर जो बढ़ता है वह मनुष्य होता है। और आज के इस प्रसंग में हम ऐसे ही एक पुरुष के सामने खड़े हैं जिसके लिए दान प्रदर्शन नहीं स्वभाव है। हाँ, गंगा तट पर खड़ा वह सूर्य पुत्र जल में निमग्न पर तेज से दिप दिपाता हुआ, जैसे स्वर्णिम पर्वत स्वयं तपस्या में लीन हो। ये दृश्य केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की निर्मलता का संकेत है।
1: श्रोताओं, दिनकर जी ने जिस कोमलता से इस प्रसंग को रचा है उसमें दान कोई घटना नहीं साधना बन जाता है। यह भाव बहुत स्पर्श करता है, दाता और भिक्षु का भेद मिटा देना। कितनी सरलता से वे कहते हैं कि लेने वाला भी कुछ देता है, संतोष, कृतज्ञता, आशीर्वाद। ये सोच आज के समय में कितनी दुर्लभ हो गई है, जहां देने में भी अहंकार छिपा रहता है।
2: दिनकर जी ने इस दृश्य का कितना अद्भुत, कितना दैदीप्यमान चित्र खींचा है। गंगा का पावन तट, मध्याह्न का प्रखर सूर्य और उस जल के मध्य अचल खड़ा कर्ण, मानो स्वयं तेज से मनुष्य का रूप ही धर लिया हो और तप की मुद्रा में स्थिर हो गया हो। गंगा की लहरें जैसे उसके चरणों का अभिषेक कर रही हो। सूर्य की किरणें उसके कवच कुंडलों पर स्वर्ण रेखाएं उकेरती हुई मानो आकाश से आशीष बरसा रही हो। जल में झील मिलाती आभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे नियति ने इस क्षण को रत्न की तरह अपनी हथेली पर संभाल लिया हो।
1: वातावरण में एक गहन निस्तब्धता है, पर यह साधारण मौन नहीं, ये उस तूफान से पहले की शांति है जो चरित्र की पराकाष्ठा को परखने आता है। कर्ण स्थिर हैं, मन से भी, वचन से भी, और जैसे अपने तन को भी अर्पित करने की तैयारी में। और यहीं इस प्रसंग की असली सुंदरता प्रकट होती है। ये केवल एक दृश्य नहीं, ये मानवीय ऊंचाई का आलोक है, जहां मनुष्य अपने संकल्प से सूर्य के समकक्ष खड़ा दिखाई देता है। आगे नियति स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देने को है, यही इस प्रसंग की मार्मिकता है। दान अभी तक व्रत था, पर अब वो जीवन बनने जा रहा है।
2: श्रोताओं, आज गंगा के तट पर हमने केवल कर्ण को नहीं देखा, हमने उस दुर्लभ मनुष्यत्व की झलक देखी है जो स्वयं तप कर भी दूसरों को प्रकाश देता है। जल में खड़ा वह सूर्य पुत्र मानो ये कह रहा हो कि दान हाथों से पहले हृदय में जन्म लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग में कर्ण को किसी राजपुरुष की भांति नहीं बल्कि ऐसे महातपस्वी की तरह उकेरा है जिसकी आभा भीतर से फूटती है। सच ही तो है श्रोताओं, समय अक्सर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनके भीतर असाधारण तेज छिपा होता है। साधारण दीपकों की आंधी नहीं उतरती, तूफान हमेशा सूर्यों की ओर बढ़ते हैं।
1: दोस्तों, अब कथा उस दहलीज पर आ पहुंची है जहां मौन के भीतर नियति की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा अब भी बह रही है, सूर्य अब भी आकाश में प्रज्वलित है, पर समय की चाल बदल चुकी है। कर्ण का तप, उसका व्रत और उसका भाग्य अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां त्याग केवल गुण नहीं रहेगा, इतिहास बन जाएगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ, जहां इस शांत जलधारा के बीच नियति स्वयं एक याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आएगी। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा। इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
2: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
4: और मैंने यानी दीपक नेमा ने।
1: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है, फिर मिलेंगे एक नए अंक में। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।